91 दशमलव 2 मेगाहर्ट्ज पर ए तुहां सारियां दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने श्रोताओ, मैं आ तुहां दी अपनी रेडियो दोस्त रुचिका हाजिर होई हूँ कार्यक्रम लेकर ही माटी दी महक। ता श्रोताओ कर देन अज दे कार्यक्रम दी शुरुआत इस प्यारे दे गीते कने। तुहां सारे इयां बनी रिया रेडियो गुंजन धर्मशाला ने गूंज अपने पंडी।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर ए तोहंदा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने तोहा सारी कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक।

धर्मशाला गणेश श्रोताओं, तो हाँ कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक अपनी रेडियो दोस्त रुचिका कन्ने। तो हाँ सारे इं बनी रहा रेडियो गुंजन धर्मशाला ने गूंज अपने पंदी।

91.2 MHz पर ए तोहंदा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने तोहा सारी कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक।

चतुर्थी गणेश चौथ तो हाँ सारे ही इस वक्त कार्यक्रम सुना देने माटी दी महक जी श्रोताओ ता बढ़ते न कार्यक्रम च अगे कने सुन देने कार्यक्रम दा प्यारा दिया अगला गीत तो हाँ सारे इये बनी दिया रेडियो गुंजन धर्मशाला ने गूंज अपने बंदी।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के।
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
3: कल शहर जा रहे हो भाई? भाई लोगों को याद रखना।
4: बेटा तुम याद रखना,
3: तुम्हारी याद में आंसू पानी की तरह बहा देंगे।
4: तुम्हारी याद में भरी धूप में बैठे रहेंगे और पसीना पानी की तरह बहाते रहेंगे। अरे भाई पीने का पानी और ले आ।
5: ये लो भैया पानी।
4: छोटू मजाक कर रहा है क्या, पानी कहाँ है?
6: भैया अब जब बाद में पानी बहेगा तो पीने के लिए पानी कहाँ से बचेगा है?
7: हमें अपनी सोच बदलनी होगी, पानी का जरूरत अनुसार प्रयोग करना होगा, पानी के व्यर्थ इस्तेमाल से बचना होगा, क्योंकि पानी की हर एक बूंद कीमती है।
8: आज से पानी नहीं समझदारी बढ़ेगी,
7: जल है तो कल है।
9: आजादी के अमृत पर्व की ओर बढ़ते कदम, सुंदर है जग में सबसे नाम भी न्यारा है, सुंदर है जग में सबसे नाम भी न्यारा है, जहाँ जाति भाषा से बढ़कर देश प्रेम की धारा है, जहाँ हर जुबा पर सर्व धर्म संभाव और जय हिंद का नारा है, जहाँ हर जुबा पर सर्व धर्म संभाव और जय हिंद का नारा है, निश्चल पावन प्रेम से भरा वो भारत।

स्वतंत्रता दिवस का पावन पर्व निकट आ रहा है। आइए तिरंगे के सम्मान, राष्ट्र की एकता, अखंडता और गौरव को बनाए रखने का संकल्प लें। अपने घर, अपने दिल और अपने कर्म, हर जगह देशभक्ति की भावना को प्रज्वलित करें।

0: किसी ने खूब कहा कि जब जल गंदा हो जाता है तो उसे हिलाते नहीं है, मिलाते नहीं है, छोड़ देते हैं, शांत छोड़ देते हैं ताकि गंदगी जो है वो नीचे बैठ जाए। इसी तरह जीवन में भी जब परेशानियां आए तो बेचैन होने की जगह शांत रहकर विचार करें, यकीन माने सही समाधान मिलेगा।
1: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
2: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बनें। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: मस्त मास्क पहना है तूने।
5: थैंक यू सर। वो जान बचाने के लिए पहनना पड़ता है ना सर।
4: रेडीमेड है या टेलर मेड है?
5: ऑनलाइन ऑर्डर किया है सर।
4: निकल रहे हैं?
5: है ना सर।
4: देना।
5: बहुत मस्त लगे आपको।
4: ये ना सर।
6: सर सर सर।
4: ना भाई, जान बचाने के लिए बाइक चलाते वक्त सिर्फ खोपड़े पे मास्क पहनेगा तो खोपड़े को कौन बचाएगा?
5: समझ गया सर।
4: हेलमेट ऑनलाइन ऑर्डर कर वरना हमेशा के लिए ऑफलाइन हो सकता है।
5: सलाम।
4: ये भी ऑनलाइन भर दे। हेलमेट पहने, ट्रैफिक नियमों का पालन करे, जिंदगी के सफर को सुरक्षित रखे।
7: क्या हुआ मृणाल, आज वॉक नहीं कर रहे?
8: मुझे कुछ कहना है यार। कल रात मैं अपने बेटे रोहन की कबर्ड में कुछ ढूंढ रहा था तो मुझे एक पैकेट मिला जिसकी मुझे उम्मीद ही नहीं थी। मुझे लगता था रोहन को अकेले रहना पसंद है, पर मुझे नहीं पता था कि पिछले कुछ महीने से रोहन ड्रग्स ले रहा है।
9: तुझे पूरा यकीन है?
8: मैं चाहता तो आप लोगों को ये बात नहीं भी बता सकता था, पर अगर मेरे दोस्त ही मदद नहीं करेंगे तो मैं अपने रोहन को इस नशे की बीमारी से कैसे बचा पाऊंगा? मुझे अपने बेटे की जिंदगी बचाने के लिए आप सबकी मदद चाहिए यार।
10: नशे की इस जंग को अगर साथ लड़ेंगे तो जरूर जीतेंगे।
7: अच्छा हुआ तूने कह दिया, हम है ना।
11: मेरा एक दोस्त नशा मुक्ति केंद्र में डॉक्टर है, मैं उससे बात करता हूँ।
10: आइए बनाए नया भारत, नशा मुक्त भारत। हर एक काम देश के नाम।
12: बेबी ये देखो, एक आदमी की 5 करोड़ की लॉटरी लगी है।
13: सही है यार।
12: अच्छा सुनो, अगर आपकी 5 करोड़ की लॉटरी लगती तो आप इतने पैसों का क्या करते?
13: मैं सबसे पहले जो तुम्हें सी फेसिंग फ्लैट पसंद है 3 करोड़ वाला, हाँ? वो दिला। उसके बाद तुम्हारी फेवरेट गाड़ी 1 करोड़ वाली, वो तुम्हें दिलाता। और फिर मैं तुम्हें 50 लाख रुपए शॉपिंग के लिए देता। और उसके बाद जो तुम्हारा ड्रीम है वर्ल्ड टूर का 49 लाख वाला पैकेज, वो दिलवाता। 1 लाख रुपए वो मैं रख लेता।
12: तुम इतने पैसों का क्या करोगे?

सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने अपने होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो श्रोताओं, करते हैं अपने कार्यक्रम की शुरुआत इस प्यारे से गीत के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

91.2 MHz पर ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत अपनी रेडी दो शशि के साथ। तो श्रोताओं, कार्यक्रम का नाम है गीत सुहाने नए पुराने। तो फिर से बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी ने फोन किया है अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और इस वक्त आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपने होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। यह आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत अपनी रेडियो शशि के साथ। तो श्रोताओं, कार्यक्रम का नाम है गीत सुहाने नए पुराने। तो फिर से बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी ने फोन किया है अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और इस वक्त आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपने होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत अपनी रेडियो शशि के साथ। तो श्रोताओं, कार्यक्रम का नाम है गीत सुहाने नए पुराने। तो फिर से बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत अपनी रेडियो शशि के साथ। तो श्रोताओं, कार्यक्रम का नाम है गीत सुहाने नए पुराने। तो फिर से बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

समझे।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी ने फोन किया है अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और इस वक्त आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपने होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत अपने रेडियो शशि के साथ। तो श्रोताओं, कार्यक्रम का नाम है गीत सुहाने नए पुराने। तो फिर से बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 MHz पर। यह आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत अपने रेडियो शशि के साथ। तो श्रोताओं, कार्यक्रम का नाम है गीत सुहाने नए पुराने। तो फिर से बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

वर्ष। ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और इस वक्त आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपने होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 MHz पर। यह है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत अपनी रेडियो दो शशि के साथ। तो श्रोताओं, कार्यक्रम का नाम है गीत सुहाने नए पुराने। तो फिर से बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी ने फोन किया है अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और इस वक्त आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपने होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 MHz पर। यह है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों की हेडलाइंस पर। 11 और 12 अगस्त को धर्मशाला के विभिन्न क्षेत्रों में बिजली बंद। पालमपुर में 10 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना।

नशे से दूर रहे युवा अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा लगाने का करें प्रयास। मुख्यमंत्री ने अग्निशमन चौकी नेरवा का किया वर्चुअल लोकार्पण। सुबह सुबह जन समस्याओं के समाधान को मैदान में उतरे केवल सिंह पठानिया। दिल्ली रवाना होने से पहले सिविल अस्पताल पहुंचकर मरीजों का जाना कुशलक्षेम। अब समाचार विस्तार।

हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा के ज्वाली उपमंडल के भरमाड़ गांव में स्थित त्रिभुवन धाम प्रदेश के प्रमुख धार्मिक एवं आस्था स्थलों में से एक है। प्राकृतिक सौंदर्य से घिरा ये प्राचीन धाम वर्षों से लाखों श्रद्धालुओं की अटूट श्रद्धा और विश्वास का केंद्र बना हुआ है। यहाँ पहुँचने वाला हर श्रद्धालु आध्यात्मिक शांति, सकारात्मक ऊर्जा और दिव्य अनुभूति का अनुभव करता है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार त्रिभुवन धाम एक प्राचीन सिद्धपीठ है। कहा जाता है कि इस पावन स्थल पर ऋषि मुनियों और साधु संतों ने कठोर तपस्या की थी, जिससे ये स्थान विशेष आध्यात्मिक शक्ति से संपन्न माना जाता है। भगवान शिव की कृपा से जुड़े इस धाम में श्रद्धालु अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए श्रद्धा पूर्वक पूजा अर्चना करते हैं। इस धाम की सबसे प्रसिद्ध लोक मान्यता सर्पदंश से जुड़ी है। वर्षों से आसपास के क्षेत्रों के लोग सर्पदंश से पीड़ित व्यक्तियों को यहाँ लेकर आते रहे हैं और मंदिर की परंपराओं के अनुसार पूजा अर्चना कराते हैं। ये मान्यता स्थानीय लोक आस्था का विषय है। साथ ही सर्पदंश की स्थिति में आधुनिक चिकित्सा उपचार लेना अत्यंत आवश्यक है। त्रिभुवन धाम का शांत वातावरण, घने वृक्षों की हरियाली और धार्मिक महत्व इसे आध्यात्मिक पर्यटन का भी एक प्रमुख केंद्र बनाते हैं। शाहपुर के विधायक एवं उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया सोमवार यानी कि सुबह सुबह जन समस्याओं और विकास कार्यों का जायजा लेने के लिए मैदान में उतरे। सुबह करीब 6:30 बजे उन्होंने सारनू पहुंचकर श्री रविदास मंदिर के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया तथा निर्माण कार्य की प्रगति की जानकारी दी। इसके पश्चात करीब 7:45 बजे विधायक अचानक सिविल अस्पताल शाहपुर पहुंचे। विशेष बात ये रही कि उन्हें सुबह 8:50 से गग्गल से दिल्ली के लिए फ्लाइट लेनी थी। इसके बावजूद उन्होंने अस्पताल पहुंचकर मरीजों से मुलाकात करना और उनका कुशलक्षेम जानना प्राथमिकता समझा। विधायक ने अस्पताल में भर्ती मरीजों एवं उनके तीमारदारों से बातचीत कर अस्पताल में मिल रही स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। उन्होंने मरीजों की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। विद्युत उपमंडल नंबर 2 के सहायक अभियंता लोकेश चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि विद्युत लाइनों के सामान्य रखरखाव कार्य के चलते 11 अगस्त को मनेर, चैतड़ू व अन्य साथ लगते क्षेत्रों में तथा 12 अगस्त को दाढ़ी बाजार, कबली दाढ़ी व अन्य साथ लगते क्षेत्रों में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक या कार्य पूर्ण होने तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। मौसम खराब होने पर शटडाउन अगले दिन किया जाएगा। उन्होंने लोगों से सहयोग की अपील की है। मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ओपीएस में किसी भी स्तर पर कोई बदलाव नहीं करेगी। कांग्रेस सरकार ने कर्मचारियों के हित में पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल की है और सरकार अपने इस फैसले पर पूरी तरह से कायम है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार विकास के एजेंडे को पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ा रही है। उनका कहना है कि सरकार का प्रयास है कि आम लोगों को बेहतर सुविधाएं मिले और विकास कार्यों का लाभ प्रदेश के हर क्षेत्र तक। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने पालमपुर में 10 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने इलेक्ट्रिक बस में सफर भी किया। उनका कहना है कि प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए इलेक्ट्रिक बसों को बड़े स्तर पर बढ़ावा दिया जा रहा है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि इलेक्ट्रिक बसों के संचालन के लिए पूरे प्रदेश में चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं। कांगड़ा जिला में धर्मशाला, नगरोटा, जसूर, देहरा, पालमपुर और पठानकोट में चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा चुके हैं, जबकि जैसिमपुर में चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया जाएगा। धर्मशाला, देहरा और नगरोटा को इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध करवाई जा चुकी है। मेरा युवा भारत, मैं भारत हिमाचल प्रदेश द्वारा युवा स्वयं सेवकों के लिए आयोजित 6 दिवसीय आवासीय इंडक्शन प्रशिक्षण कार्यक्रम का कांगड़ा में शुभारम्भ हुआ। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को नेतृत्व, स्वयं सेवा एवं राष्ट्र निर्माण की भावना से जोड़ते हुए उन्हें समाज में सकारात्मक परिवर्तन के लिए तैयार करना है। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में पुलिस अधीक्षक कांगड़ा कुलभूषण वर्मा ने युवा स्वयं सेवकों के साथ विशेष संवाद किया। उन्होंने युवाओं का आह्वान किया कि वे अपनी ऊर्जा, प्रतिभा और समय को सकारात्मक एवं रचनात्मक गतिविधियों में लगाएं, ताकि उनकी क्षमता का उपयोग समाज और राष्ट्र के निर्माण में हो सके। उन्होंने युवाओं को नशे के बढ़ते दुष्प्रभावों के प्रति विशेष रूप से जागरूक करते हुए कहा कि नशा मुक्त युवा ही स्वस्थ, सशक्त और विकसित भारत की मजबूत नींव रख सकते हैं। युवाओं से स्वयं नशे से दूर रहने के साथ साथ अपने आसपास के युवाओं को भी नशे के विरुद्ध जागरूक करने और
नशा मुक्त भारत अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया। युवाओं को अपनी जड़ों, संस्कृति और परंपराओं से जुड़े रहने का संदेश देते हुए कहा कि आधुनिक शिक्षा एवं नए अवसरों के साथ अपनी ग्रामीण पृष्ठभूमि और कृषि से जुड़े गौरव को कभी नहीं भूलना चाहिए। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में वर्चुअल माध्यम द्वारा जिला शिमला के नेरवा में नवस्थापित अग्निशमन चौकी का लोकार्पण किया। इस अवसर पर क्षेत्रवासियों को बधाई देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ये अग्निशमन चौकी केवल आग लगने की घटनाओं से निपटने तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि भारी बारिश, भूस्खलन और अन्य आपातकालीन परिस्थितियों में राहत एवं बचाव कार्य में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। मुख्यमंत्री का कहना है कि अग्निशमन चौकी से नेरवा क्षेत्र के लगभग 55,000 लोगों को लाभ मिलेगा और यहाँ पर 2 गाड़ियां जल्द ही उपलब्ध करवाई जाएंगी। उनका कहना है कि आग लगने की घटना के क्षेत्र के पारंपरिक लकड़ी के मकानों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और बहुमूल्य सेब बगीचों को समय रहते सुरक्षित किया जा सके। इसी के साथ आज का ये खास समाचार बुलेटिन यही समाप्त होता है। धन्यवाद।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
2: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: कल शहर जा रहे हो भाई? भाई लोगों को याद रखना।
6: बेटा तुम याद रखना,
5: तुम्हारी याद में आंसू पानी की तरह बहा देंगे।

0: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर सूर्य घर।
2: कल शहर जा रहे हो भाई? भाई लोगों को याद रखना।
3: बेटा तुम याद रखना,
2: तुम्हारी याद में आंसू पानी की तरह बहा देंगे।
3: तुम्हारी याद में भरी धूप में बैठे रहेंगे और पसीना पानी की तरह बहाते रहेंगे। अरे भाई पीने का पानी और ले आ।
4: ले लो भैया पानी।
3: छोटू मजाक कर रहा है क्या? पानी कहाँ है
5: भैया? अब जब बाद बाद में पानी बहेगा तो पीने के लिए पानी कहाँ से बचेगा है?
6: हमें अपनी सोच बदलनी होगी। पानी का जरूरत अनुसार प्रयोग करना होगा। पानी के व्यर्थ इस्तेमाल से बचना होगा, क्योंकि पानी की हर एक बूंद कीमती है।
7: आज से पानी नहीं समझदारी बहेगी।
6: जल है तो कल है।
8: आजादी के अमृत पर्व की ओर बढ़ते कदम। सुंदर है जग में सबसे नाम भी न्यारा है। सुंदर है जग में सबसे नाम भी न्यारा है। जहाँ जाति भाषा से बढ़कर देश प्रेम की धारा है। जहाँ हर जुबा पर सर्व धर्म संभाव और जय हिंद का नारा है। जहाँ हर जुबा पर सर्व धर्म संभाव और जय हिंद का नारा है। निश्चल पावन प्रेम से भरा वो भारत।

स्वतंत्रता दिवस का पावन पर्व निकट आ रहा है। आइए तिरंगे के सम्मान, राष्ट्र की एकता, अखंडता और गौरव को बनाए रखने का संकल्प लें। अपने घर, अपने दिल और अपने कर्म, हर जगह देशभक्ति की भावना को प्रज्वलित करें।

0: किसी ने खूब कहा कि जब जल गंदा हो जाता है तो उसे हिलाते नहीं है, मिलाते नहीं है, छोड़ देते हैं, शांत छोड़ देते हैं ताकि गंदगी जो है वो नीचे बैठ जाए। इसी तरह जीवन में भी जब परेशानियां आए तो बेचैन होने की जगह शांत रहकर विचार करें, यकीन माने सही समाधान मिलेगा।
1: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।

0: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
1: मस्त मास्क पहना रहे तूने।
2: थैंक यू सर। वो जान बचाने के लिए पहनना पड़ता है ना सर।
1: रेडीमेड है या टेलर मेड है?
2: ऑनलाइन ऑर्डर किया है सर।
1: एक और एक
2: है ना सर।
1: देना
2: बहुत मस्त लगे आपको। लेना सर। सर सर सर
1: ना भाई, जान बचाने के लिए बाइक चलाते वक्त सिर्फ खोपड़े पे मास्क पहनेगा तो खोपड़े को कौन बचाएगा?
2: समझ गया सर।
1: हेलमेट ऑनलाइन ऑर्डर कर वरना हमेशा के लिए ऑफलाइन हो सकता है।
2: चल हम
1: ये भी ऑनलाइन भर दे। हेलमेट पहने, ट्रैफिक नियमों का पालन करे, जिंदगी के सफर को सुरक्षित रखे।
3: क्या हुआ मृणाल, आज वॉक नहीं कर रहे?
4: मुझे कुछ कहना है यार। कल रात में अपने बेटे रोहन की कबर्ड में कुछ ढूंढ रहा था तो मुझे एक पैकेट मिला जिसकी मुझे उम्मीद ही नहीं थी। मुझे लगता था रोहन को अकेले रहना पसंद है, पर मुझे नहीं पता था कि पिछले कुछ महीने से रोहन ड्रग्स ले रहा है।
5: तुझे पूरा यकीन है?
4: चाहता तो आप लोगों को ये बात नहीं भी बता सकता था, पर अगर मेरे दोस्त ही मदद नहीं करेंगे तो मैं अपने रोहन को इस नशे की बीमारी से कैसे बचा पाऊंगा? मुझे अपने बेटे की जिंदगी बचाने के लिए आप सबकी मदद चाहिए यार।
6: नशे की इस जंग को अगर साथ लड़ेंगे तो जरूर जीतेंगे।
3: अच्छा हुआ तूने कह दिया, हम है ना।
7: मेरा एक दोस्त नशा मुक्ति केंद्र में डॉक्टर है, मैं उससे बात करता हूँ।
6: आइए बनाए नया भारत, नशा मुक्त भारत। हर एक काम देश के नाम।
8: बेबी ये देखो, एक आदमी की 5 करोड़ की लॉटरी लगी है।
9: सही है यार।
8: अच्छा सुनो, अगर आपकी 5 करोड़ की लॉटरी लगती तो आप इतने पैसों का क्या करते?
9: मैं सबसे पहले जो तुम्हें सी फेसिंग फ्लैट पसंद है 3 करोड़ वाला, हा? वो दिला। उसके बाद तुम्हारी फेवरेट गाड़ी 1 करोड़ वाली, वो तुम्हें दिलाता। और फिर मैं तुम्हें 50 लाख रुपए शॉपिंग के लिए दे देता। और उसके बाद जो तुम्हारा ड्रीम है

0: फ्रीक्वेंसी 91.2 पर श्रोता इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम आप सभी के रेडियो सेट पर इस वक्त सुनाई दे रहा है गुड मॉर्निंग धर्मशाला। श्रोता आज का गुड मॉर्निंग धर्मशाला कार्यक्रम लेकर हाजिर हुई है आपकी होस्ट एंड दोस्त सुमन। तो कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारी ओर से प्यार भरी नमस्ते। जी हाँ श्रोता, पहुँच चुके हैं हम रेडियो गुंजन के स्टूडियो में लेकर ढेर सारी जानकारियाँ, आज प्यारे प्यारे गीत। तो श्रोताओं कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ। तो आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिएगा रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।
1: From Sarigama.

श्रोताओं, इस प्यारे से गीत के बाद कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला। श्रोताओं, कहते हैं कागज की किश्ती थी, बारिश का जोर था, पानी का दरिया था और मिलना जरूर था। जी हाँ श्रोताओं, बारिश तो पूरे जोरों पर है आज, लेकिन हमें अपने श्रोताओं से मिलना भी तो ज़रूरी था, क्योंकि एक आपका प्यार है श्रोताओं कि हम हर दिन चले आते हैं आपसे मिलने के लिए। मौसम ने तो हमारा खैर रुख बदलना चाहा, हमें रोकना भी चाहा, लेकिन एक आपका प्यार था और हमें मिलना था आपसे, इसलिए हम बारिश से जूझते हुए आपसे मिलने आप पहुँचे हैं, क्योंकि हमें बहुत सारी बातें, बहुत सारी जानकारियां आप तक पहुँचानी होती है। और श्रोताओं, कहते हैं एक अपने जो होते हैं, अपनों के लिए इंसान हर परिस्थिति से जूझता है, चाहे कहीं भी कोई मुश्किल आ जाए, उन मुश्किलों से जूझते हुए अपनों से मिलने के लिए पहुँच ही जाते हैं। तो श्रोताओं, हम तो चाहते हैं हमारा और आपका प्यार यूँ ही बना रहे, तो आइए इस प्यार को और मजबूत करते हैं और आप तक पहुँचाते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। तो आप सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

तो इस समय आप जुड़े हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला। श्रोताओं, गुड मॉर्निंग धर्मशाला कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है। तो मौसम की बात थोड़ी सी करें, क्योंकि मौसम आज झमाझम बरस रहा है और मौसम के हालात आज कुछ अच्छे नज़र नहीं आ रहे हैं। तो आज के वेदर की बात करें तो आज का श्रोताओं वेदर है 17 डिग्री सेल्सियस और मौसम में ह्यूमिडिटी बनी हुई है 100%। तो जी हाँ श्रोताओं, इस मौसम में हम सभी को अपना ध्यान रखना है, ख्याल रखना है। खासकर अगर दो पहिया वाहन चलाने वालों की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि ऐसे मौसम में स्किड होने का भी खतरा बना रहता है। तो जब भी स्कूटी बाइक चलाएं, थोड़ा सा सावधानी पूर्वक चलाएं, धीरे चलाएं, क्योंकि ज़्यादा तेज़ी से चलाना हमारे खुद के लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। और जब भी बाहर निकले अपना छाता और बरसाती ज़रूर लेकर निकले, क्योंकि ऐसी बरसात में भीगने से हम बीमार भी पड़ सकते हैं। क्योंकि ठंडा मौसम है और गर्म शरीर पर जब बारिश की बूंदें पड़ती हैं तो हम कहीं ना कहीं बीमार भी हो जाते हैं। तो श्रोताओ, आप रखिए अपना ख्याल और फिलहाल हमें रखना है आपका ख्याल और आप तक पहुंचाना है कार्यक्रम का यह अगला प्यारा सा गीत।

0: श्रोताओं, इस प्यारे से गीत के बाद कार्यक्रम में समय हो गया है 9:20, तो आइए सुनते हैं समाचार।
1: राशि प्रदान करने के दिए निर्देश। राज्य सरकार ने पुलिस विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 3 आईपीएस और 54 एचपीएस अधिकारियों के किए तबादले। अधिकतर भागों में रुक रुक कर वर्षा का क्रम जारी, आज 9 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि सरकारी स्कूलों में सीबीएसई पाठ्यक्रम शुरू करने के उत्साहजनक परिणाम सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में आधुनिक सुविधाओं के दृष्टिगत निजी स्कूलों से करीब 24,000 विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूलों में प्रवेश लिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 6 स्कूल राजीव गांधी राजकीय मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल के रूप में स्तरोन्नत किए जाएंगे। चयनित स्कूलों में मंडी जिले के करसोग विधानसभा क्षेत्र में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय करसोग, शिमला जिला में राजकीय बाल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रामपुर, राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रोहडू, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय चौपाल और सिरमौर जिले में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय नोहराधार, जबकि ऊना जिले में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बहडाला शामिल है। इन स्कूलों में हाईटेक स्मार्ट कक्षाओं, खेल मैदानों, इंडोर स्टेडियम, पौष्टिक भोजन व स्विमिंग पूल सहित आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। प्रदेश में अग्निशमन और आपदा प्रबंधन सेवाओं को और मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज फायर सर्विस के नए वाहनों को शिमला के चौड़ा मैदान से हरी झंडी दिखाएंगे। नए वाहनों के बेड़े में शामिल होने से प्रदेश भर में आगजनी और आपातकालीन स्थितियों में आम जनता को त्वरित सहायता मिल सकेगी। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सहारा योजना की आवेदन से भुगतान तक की प्रक्रिया का आधुनिकीकरण करने के लिए नया ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया है। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि इससे आवेदकों को सभी योजनाओं का लाभ सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के ऐसे गंभीर व दीर्घकालिक बीमारियों से ग्रसित मरीजों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जिन्हें लंबे समय तक उपचार की जरूरत होती है। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कल शिमला में आयोजित एक बैठक में वर्ष 2023-24 और 2025 के विशेष राहत पैकेज की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने सभी जिला उपायुक्तों को पूर्ण और आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकानों, गौशालाओं और दुकानों का विस्तृत ब्यौरा तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कुछ क्षेत्रों में लोगों को पैकेज न मिलने की शिकायतें सामने आ रही हैं। जगत सिंह नेगी ने उपायुक्तों को विशेष राहत पैकेज से छूट गए परिवारों का विवरण शीघ्र तैयार कर उन्हें राहत राशि प्रदान करने के निर्देश भी दिए। पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा है कि राज्य की सभी पंचायतों के सुदृढ़ीकरण की प्रक्रिया जारी है और आवश्यकता अनुसार पुरानी पंचायत भवनों के स्थान पर आधुनिक सुविधाओं से लैस नए पंचायत भवन बनाए जा रहे हैं। कसुमटी विधानसभा क्षेत्र के तहत ग्राम पंचायत देहना के नवनिर्मित भवन के लोकार्पण अवसर पर उन्होंने कहा कि नए भवनों के निर्माण के लिए एकमुश्त राशि मंजूर की जा रही है। अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि कसुमटी विधानसभा क्षेत्र में 19 करोड़ रुपए की राशि पंचायतों के नए भवनों को बनाने के लिए स्वीकृत की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा को सुदृढ़ करने के लिए तकनीकी व वित्तीय सहयोग दे रही है। लोकसभा में सांसद सुरेश कश्यप के सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि मौजूदा समय में हिमाचल के सभी मेडिकल कॉलेजों में MBBS की कुल 996 सीटें उपलब्ध हैं। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि केंद्र प्रायोजित योजना के तहत हिमाचल के 6 मेडिकल कॉलेजों में 120 अतिरिक्त MBBS की सीटें बढ़ाने के लिए 144 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। सांसद अनुराग ठाकुर ने राज्य सरकार पर प्रदेश को कर्ज और बदहाल वित्तीय प्रबंधन की ओर धकेलने का आरोप लगाया है। एक बयान में उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने प्रदेश को ऐसी वित्तीय स्थिति में पहुंचा दिया है जहां पुराना कर्ज चुकाने और मौजूदा खर्च चलाने के लिए नए कर्ज का सहारा लेना पड़ रहा है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि 2018 में प्रदेश की कुल बकाया देनदारियां 51,030 करोड़ रुपए थीं, जो 2026 के बजट अनुमान में बढ़कर 1,10,010 करोड़ रुपए हो गई है। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्य सरकार ने पुलिस विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 3 आईपीएस और 54 एचपीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। गृह विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार डॉक्टर शिव कुमार को मुख्यमंत्री सुरक्षा से हटाकर एसपी सिक्योरिटी व इंटेलिजेंस शिमला नियुक्त किया गया है। डीआईजी ट्रैफिक टूरिस्ट एंड रेलवे पुलिस संजीव कुमार गांधी को कार्मिक विभाग में तैनात किया गया है। भूपेंद्र सिंह नेगी को कमांडेंट प्रथम हिमाचल प्रदेश सशस्त्र पुलिस बटालियन जुन्गा की जिम्मेदारी दी गई है। मनमोहन सिंह को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कुल्लू नियुक्त किया गया है। अधिसूचना के मुताबिक कई जिलों के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकों और उपमंडलीय पुलिस अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई है। केंद्र सरकार के राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के तहत मंडी जिला प्राकृतिक और रसायन मुक्त खेती की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। जिले में अब तक 48,380 किसान प्राकृतिक खेती से जुड़ चुके हैं और करीब 8,400 हेक्टेयर भूमि इसके दायरे में आ गई है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे मंडी जिला संवाददाता।
2: 2026-27 में 1000 हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र और 2500 नए किसानों को मिशन से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। किसानों को बेहतर मूल्य दिलाने के लिए प्राकृतिक खेती की उपज की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद भी की जा रही है। उप परियोजना निदेशक आत्मा मंडी हितेंद्र कुमार ने बताया कि प्राकृतिक खेती अपनाने वाले किसानों को स्वदेशी गाय खरीदने पर 25,000 रुपए, गौमूत्र संग्रहण के लिए 8,000 रुपए तथा जीवामृत और घन जीवामृत तैयार करने के लिए अनुदान दिया जा रहा है। किसानों को निःशुल्क प्रशिक्षण किट और तकनीकी मार्गदर्शन भी उपलब्ध करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि खेती से किसानों की लागत कम करने के साथ उनकी आय बढ़ाने और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने में मदद मिल रही है। आकाशवाणी समाचारों के लिए मंडी से मैं मुनीश सूद।
1: प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में वर्षा का क्रम रुक रुक कर जारी है। मौसम विभाग ने आज 9 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। अधिक जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता।
3: हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश से सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। कई स्थानों पर भूस्खलन के कारण 106 सड़कें अभी भी अवरुद्ध हैं, जबकि 66 बिजली ट्रांसफार्मर और 19 पेयजल योजनाएं प्रभावित हैं। हालांकि संबंधित विभागों के कर्मचारी इन व्यवस्थाओं को बहाल करने में जुटे हैं। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आगामी 24 घंटों के दौरान 3 जिलों कांगड़ा, सिरमौर व मंडी में भारी से बहुत भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट, जबकि 6 अन्य जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, शिमला व सोलन में भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। प्रशासन ने भारी वर्षा की आशंका के चलते लोगों से एहतियात बरतने, नदी नालों व भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहने और अनावश्यक यात्रा न करने की अपील की है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: इस बीच भारी बारिश के मद्देनजर कुल्लू उपमंडल के सभी शिक्षण संस्थान आज बंद रहेंगे। और अब एक नजर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। हिमाचल दस्तक की खबर है, शिमला जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनाव में देरी का मामला हाईकोर्ट पहुंचा। दिव्य हिमाचल ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के बयान को शीर्षक दिया है, जब चुनाव की तारीख दी तब पार्षदों को पंचकुला क्यों ले गई थी भाजपा। इसी अखबार ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के बयान को सुर्खी दी है, 6 जून को सभी पार्षद थे तब चुनाव क्यों नहीं करवाए। दैनिक जागरण ने प्रदेश उच्च न्यायालय के हवाले से खबर दी है, नियमित करने में देरी शिक्षकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन। अमर उजाला की सुर्खी है, हिमाचल में कई निजी क्लिनिक भी नशे के खेल में शामिल। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, CBSE पाठ्यक्रम शुरू करने के आ रहे उत्साहजनक परिणाम। निजी स्कूलों से करीब 24,000 विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूलों में लिया प्रवेश। सहारा योजना के लिए आवेदन करना हुआ सुविधाजनक, राज्य सरकार ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म किया तैयार। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने उपायुक्तों को विशेष राहत पैकेज से छूटे परिवारों का विवरण शीघ्र तैयार कर उन्हें राहत राशि प्रदान करने के दिए निर्देश। राज्य सरकार ने पुलिस विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 3 आईपीएस और 54 एचपीएस अधिकारियों के किए तबादले। और प्रदेश के अधिकतर भागों में रुक रुक कर वर्षा का क्रम जारी, आज 9 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।
4: FM बैंड 103.5।

इस अंतराल के बाद कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला, अपनी दोस्त सुमन के साथ। तो श्रोताओ, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के दिन की, यानी 11 अगस्त की। और 11 अगस्त की कुछ घटनाओं की और रुख करें तो 1908 की बात करें तो 1908 में महान भारतीय क्रांतिकारी खुदीराम बोस को मात्र 18 साल की उम्र में अंग्रेज़ों ने फांसी दे दी थी। और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के द्वारा पटना सचिवालय पर तिरंगा फहराने की कोशिश में कई युवा छात्र भी शहीद हुए थे। थोड़ा सा आगे बढ़े 1961 की ओर तो दादरा और नगर हवेली को भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना दिया था। इसके साथ साथ श्रोताओ, 1999 में यूरोप में सदी का अंतिम पूर्ण सूर्य ग्रहण देखा गया था। तो श्रोताओ, ये तो थी हमारी कुछ घटनाओं की जानकारी। जानकारियाँ भी और भी हम आपके लिए ले

भी आपके साथ साझा करेंगे। फिलहाल कार्यक्रम में रुकते हैं और आप सभी तक पहुंचाते हैं कार्यक्रम का ये अगला प्यारा सा गीत। तो आप सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

श्रोता, इस वक्त आप जुड़े हुए हैं रेडियो उंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला। गुड मॉर्निंग धर्मशाला कार्यक्रम में बात करें हम 11 अगस्त की, तो आज के दिन को हम मना रहे हैं राष्ट्रीय पुत्र और पुत्री दिवस के बारे में। तो श्रोताओं, ये दिन माता पिता को उनके बच्चों के प्रति प्यार जताने, उसके साथ साथ समय बिताने और परिवार में उनकी मौजूदगी की खुशी का जश्न मनाने का अवसर देता है। इसके साथ साथ श्रोताओं, माता पिता और बच्चों के बीच का रिश्ता मजबूत भी होता है और बच्चों को ये एहसास कराया जाता है कि परिवार उनके लिए कितना खास होता है। व्यस्त जीवन से समय निकालकर हमें भी अपने बच्चों के साथ अच्छा समय बिताना है ताकि बच्चों को भी समय मिल सके। और मिलते मिलाते जब हम जीवन काटते हैं तो जीवन का भी पता नहीं चलता है कि जीवन कब व्यतीत हो जाता है। तो श्रोता, अपने परिवार को ज़रूर समय दें और परिवार के साथ मिले बैठे बातचीत करें तो कहीं ना कहीं अच्छा और बढ़िया लगता है। तो श्रोता, इन्हीं बातों और जानकारियों के साथ साथ कार्यक्रम में हम आगे बढ़ते हैं और आप सभी तक पहुंचाते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, इस प्यारे से गीत के बाद कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी दोस्त सुमन के साथ है। तो श्रोताओं, कार्यक्रम में हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी बात हम सावन की करते हैं, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है ये हम सभी जानते हैं। और इस महीने में भगवान शिव की पूजा अर्चना ज़्यादा की जाती है। वैसे तो हम हर दिन करते हैं, लेकिन कुछ खास दिन और खास महीने होते हैं जब ये भगवान शिव को अति प्रिय महीना माना जाता है। और साथ ही साथ सावन में भगवान शिव की पूजा, जल अभिषेक, व्रत दान और जप करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है तथा मनोकामना भी पूर्ण होती है। श्रोताओं, ये महीना वर्षा ऋतु के मध्य आता है और प्रकृति हरियाली से भर जाती है। हम सभी जानते हैं कि चारों तरफ इस मौसम में हरियाली ही हरियाली हो जाती है। और सावन का महीना चल रहा है, तो सावन के महीने यानी सोमवार के दिन का बड़ा महत्व इस महीने में रहता है। सावन के प्रत्येक सोमवार को हम में से बहुत सारे जो श्रोता हैं वो व्रत रखते हैं और शिव मंदिर में जाके पूजा करते हैं। मान्यता ये है कि सावन सोमवार व्रत करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और दाम्पत्य जीवन सुखी रहता है। साथ ही साथ विवाह में आने वाली बाधाएं भी दूर होती है, स्वास्थ्य धन और मानसिक शांति भी मिलती है। तो श्रोताओं, ये तो थी हमारी जानकारियाँ भी और भी हम आपके साथ साझा करेंगे। फिलहाल कार्यक्रम में रुकते हैं और आप सभी तक पहुंचाते हैं कार्यक्रम का ये अगला प्यारा सा गीत। तो आप सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

शुद्ध समय आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला। गुड मॉर्निंग धर्मशाला कार्यक्रम में श्रोता हम बात कर रहे थे सावन के बारे में। सावन का महीना चल रहा है और हम सभी जानते हैं कि सावन महीने में शिव की पूजा की जाती है और बहुत सारे श्रोता जो है उन्होंने व्रत भी रखे होंगे और सावन में ख़ास जो है शिवलिंग पर जल अभिषेक किया जाता है, गंगा जल से भी अभिषेक किया जाता है, दूध दही घी शहद और शक्कर से रुद्राभिषेक होता है और बेलपत्र अर्पित किया जाता है। इसके साथ दूरा आक और भांग चढ़ाए जाते हैं और साथ ही साथ बेलपत्र की बात करें श्रोताओं तो इस दिन यानी सोमवार के दिन बेलपत्र भगवान शिव को चढ़ाया जाता है क्योंकि उन्हें ये अत्यंत प्रिय माना जाता है। पूजा में 3 पत्तियों वाला बेलपत्र चढ़ाया जाता है जो शिव के त्रिनेत्र त्रिशूल और त्रिगुण का प्रतीक माना जाता है। व्रत के श्रोताओं कुछ नियम होते हैं और सावन व्रत में सात्विक भोजन किया जाता है और सत्य बोलने और क्रोध से बचने का भी प्रयास किया जाता है। शिव मंत्रों का जाप किया जाता है और तामसिक भोजन से परहेज किया जाता है। तो श्रोताओं ये छोटी छोटी बातें हैं जिनका हमें परहेज रखना है और अपने सावन को बढ़िया से बनाना है क्योंकि जब व्रत रखे जाते हैं तो पूरे विधि विधान से ये काम किया जाए तो कहीं ना कहीं हम सबको अच्छा लगता है और साथ ही साथ भगवान शिव को भी ये बहुत ही अच्छा लगता है। तो श्रोताओं इन्हीं जानकारियों के साथ साथ कार्यक्रम में फिर से आगे बढ़ते हैं और आप सभी तक पहुंचाते हैं कार्यक्रम का ये अगला प्यारा सा गीत। तो आप सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला। श्रोताओं गीत से पहले आपको सुनवाते हैं एक अंतराल। अंतराल के ठीक बाद आपको सुनवाएंगे ये गीत।

श्रोताओं, इस समय आप जुड़े हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला। और गीत से पहले हम बात कर रहे थे सावन की, तो सावन में प्रकृति भी पूरी तरह से खिली हुई होती है। सावन केवल धार्मिक दृष्टि से नहीं बल्कि प्राकृतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होता है। इस महीने में वर्षा अधिक होती है और खेतों में हरियाली आती है, नदियां और जल स्रोत भरे होते हैं और पेड़ पौधों की बात करें तो पेड़ पौधों का विकास बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि बारिश की बूंदें पड़ती हैं और हमारी प्रकृति जो है हरियाली से भर जाती है, वातावरण शुद्ध होता है और बारिश पड़ने की वजह से थोड़ा सा ठंडा भी होता है। भारतीय संस्कृति में श्रोताओ सावन को हरियाली, प्रेम और आनंद का महीना भी कहा जाता है और ढेर सारे त्यौहार इस सावन में आते हैं, जैसे कि सावन सोमवार, हरियाली तीज, नाग पंचमी, रक्षाबंधन और साथ ही साथ झूला उत्सव भी इसी महीने में आता है। और महिलाओं की बात करें श्रोताओ थोड़ा सा, क्योंकि सावन जो है महिलाओं के लिए विशेष महत्व रखता है। सावन में विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं और अविवाहित कन्याएं मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं। आप सभी ने देखा होगा श्रोताओं की हरियाली तीज के अवसर पर मेहंदी लगाई जाती है और झूले झूले जाते हैं। अगर हम पहले के समय की यानी पुराने समय की बात करें तो किसी गांव के बड़े पेड़ पर जो है झूला लगा दिया जाता था, रस्सी, मोटी रस्सी किसी लंबी सी मजबूत टहनी के साथ बांध दी जाती थी और उस पर गांव की सभी जो लड़कियां हैं इकट्ठी होकर झूला झूलती थी और बहुत ही खुशी भी मनाई जाती थी। उन दिनों में झूला झूलना भी शुभ माना जाता था, बढ़िया लगता था जब अपने गांव की सभी लोग जो हैं झूला झूलते थे। उसमें ज़रूरी नहीं है कि महिलाएं ही झूला झूलती थी, हमारे पुरुष भाई भी झूला झूलते थे और खास बात ये थी कि श्रोताओं की लोकगीत भी गाए जाते थे। पारंपरिक वेशभूषा धारण की जाती थी और अपनी खुशियों को व्यक्त किया जाता था। और आजकल श्रोताओं बाज़ार की बात करें तो बाज़ार में भी खूब सारी हरे रंग की चूड़ियां जो है दिखने को मिलती हैं और हमारे बहुत सारी बहनों ने भी अपने हाथों में हरे रंग की चूड़ियाँ पहनी हुई हैं क्योंकि ये हरियाली के प्रतीक होती है और साथ ही साथ सावन में इन चूड़ियों को पहनना जो है शुभ माना जाता है। तो श्रोताओं, इस तरह से हम हरियाली और साथ ही साथ सावन के महीने को मनाते हैं। सावन के महीने का बहुत सारा महत्व हमारे जीवन में रहता है। सावन हमें संयम, भक्ति, प्राकृतिक प्रेम, सेवा और आत्मशुद्धि का संदेश देता है। तो श्रोताओं, ये तो थी हमारी जानकारी। अपनी जानकारियों के साथ साथ कार्यक्रम में फिर से आगे बढ़ते हैं और आप सभी तक पहुँचाते हैं कार्यक्रम का ये अगला प्यार सगीत। तो आप सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

तो इस प्यारे से गीत के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और थोड़ा सा कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और कुछ स्थानीय जानकारियां आपके साथ साझा करते हैं। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने ये बताया है कि प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री सहारा योजना के आवेदन से भुगतान तक की प्रक्रिया का डिजिटाइजेशन कर संपूर्ण प्रक्रिया के संचालन का आधुनिकीकरण करने के लिए एक नया ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया है ताकि आवेदकों को सभी योजना का लाभ सिंगलो विंडो प्लेटफॉर्म के माध्यम से मिल सके। इससे उन्होंने समय तथा खर्च की बचत सुनिश्चित की है। अभी तक सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता विभाग को 1562 आवेदन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर प्राप्त हो चुके हैं और प्रवक्ता ने इच्छुक तथा लंबित आवेदकों से आग्रह किया है कि अपना आवेदन https://himparivar-hp.gov.in/ekalyan से या नज़दीकी लोक मित्र केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। तो श्रोताओं, ये तो थी हमारी जानकारियाँ। अपनी जानकारियों के साथ कार्यक्रम में फिर से आगे बढ़ते हैं और आप सभी तक पहुँचाते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। तो ये सुनते हैं इस गीत को।

श्रोताओं, इस समय आप जुड़े हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला। गुड मॉर्निंग धर्मशाला कार्यक्रम में फिर से हम वापस आते हैं और थोड़ा सा हम सावन की बात कर रहे थे श्रोताओं। तो सावन हमें संयम, भक्ति, प्राकृतिक प्रेम, सेवा और आत्मशुद्धि का संदेश देता है। भगवान शिव त्याग, करुणा, धैर्य और सम्मान के प्रतीक है और सावन का महीना हमें सादगी पूर्ण जीवन, ईश्वर के प्रति श्रद्धा और प्रकृति के संरक्षण की भी प्रेरणा देता है। इसके साथ साथ सावन केवल एक धार्मिक महीना नहीं है बल्कि भारतीय संस्कृति, प्राकृतिक लोक परंपरा और आध्यात्मिक जीवन का सुंदर संगम है। इस पावन महीने में भगवान शिव की आराधना के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण और मानवीय मूल्यों को अपनाना भी सावन का वास्तविक महत्व है। तो सावन के महीने की ढेर सारी जानकारियां श्रोता हमने आपके साथ साझा की है और अब एक और बात दिमाग में या जहन में यूँ कह सकते हैं कि आ गई, क्योंकि हमारे बुज़ुर्ग कुछ एक बातों को हमें बताते हैं, वो बातें जो हैं दिमाग में रह जाती हैं या याद आती हैं, या खाते पीते कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात दिमाग में चलती ही रहती है। खाने पीने से श्रोता मुझे याद आ गया कि कहते हैं कि जो सावन का महीना होता है इसमें मालपुड़े खाने की भी परंपरा है और साथ ही साथ खीर के साथ इसे खाया जाता है। ये बहुत ही शुभ और अच्छा माना जाता है। तो सावन का महीना चल रहा है, आप भी खीर और मालपुड़े का आनंद लें। और अब हम कार्यक्रम में फिर से आगे बढ़ते हैं और आप सबको फिर से सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। तो सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

तो इस समय आप जुड़े हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला। गुड मॉर्निंग धर्मशाला कार्यक्रम में थोड़ी सी हम श्रोताओं कांवड़ यात्रा की बात करेंगे। आपने नाम तो सुना होगा, कांवड़ यात्रा होती है और कांवड़ यात्रा भगवान शिव के भक्तों द्वारा की जाने वाली एक धार्मिक यात्रा है। ये यात्रा मुख्य रूप से श्रावण महीने में की जाती है और श्रद्धालु गंगा यमुना या अन्य पवित्र नदियों से जल भरकर कांवड़ में लेकर अपने स्थानीय शिव मंदिर या ज्योतिलिंग में भगवान शिव को जल अभिषेक करते हैं। और बात करें कि ये कांवड़ यात्रा कब होती है, तो कांवड़ यात्रा हर वर्ष सावन महीने में होती है। इसका समापन सावन शिवरात्रि के दिन जल अभिषेक के साथ होता है। अब बात करें, बहुत सारे श्रोताओं के दिमाग में ये बात आ रही होगी कि कांवड़ होता क्या है। बहुत सारे श्रोताओं ने तो सुन रखा होगा, लेकिन कुछ एक ऐसे भी होंगे या फिर कई बार बच्चे भी सुनते हैं, बच्चों को भी नहीं पता होता है कि कांवड़ क्या होता है। श्रोताओं, कांवड़ बांस या लकड़ी का एक संतुलित डंडा होता है जिसके दोनों सिरों पर जल के पात्र लटकाए जाते हैं। भक्त इसे कंधे पर रखकर पैदल यात्रा करते हैं। और इस यात्रा के महत्व की बात करें तो भगवान शिव की भक्ति और आराधना का इसमें विशेष महत्व रहता है। आत्मसंयम, सेवा और अनुशासन का अभ्यास भी होता है। कठिन यात्रा के माध्यम से श्रद्धा और संकल्प की अभिव्यक्ति होती है और समाज में सहयोग, सेवा और धार्मिक एकता की भावना को बढ़ावा दिया जाता है। और साथ ही साथ मुख्य मार्गों की बात करें श्रोताओं कांवड़ यात्रा के लिए, तो उत्तर भारत में हरिद्वार, गंगोत्री, गोमुख, ऋषिकेश में बड़ी संख्या में कांवड़ियों जल लेकर विभिन्न शिव मंदिरों तक पहुँचते हैं। और कांवड़ यात्रा के प्रकार की बात करें तो साधारण कांवड़ सामान्य गति से पैदल यात्रा होती है और डाक कांवड़ बिना रुके तेज गति से यात्रा होती है। खड़ी कांवड़ की बात करें तो कांवड़ को जमीन पर ना रखने का नियम होता है। श्रोता, कांवड़ यात्रा श्रद्धा, अनुशासन, सेवा और भगवान शिव के प्रति समर्पण का प्रतीक मानी जाती है। तो श्रोता, ये तो थी बातचीत कांवड़ यात्रा की। कांवड़ यात्रा के साथ साथ हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। तो आप सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

श्रोताओं, इस प्यारे से गीत के बाद कार्यक्रम में फिर से हम वापस आते हैं और थोड़ी सी बात हम करेंगे श्रोताओं हर घर तिरंगा अभियान के बारे में। हर घर तिरंगा अभियान भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक राष्ट्रीय जन जागरूकता अभियान है। इसका उद्देश्य देश के प्रत्येक नागरिक को राष्ट्रीय ध्वज, तिरंगे का सम्मान, गौरव और राष्ट्रभक्ति की भावना से जोड़ता है और इस अभियान के तहत नागरिकों से अपने घरों, कार्यालय, दुकानों और संस्थानों पर तिरंगा फहराने का आह्वान भी किया जाता है। इस अभियान की शुरुआत की बात श्रोता करें तो इस अभियान की शुरुआत आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत 2022 में की गई थी। इसका उद्देश्य भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर लोगों की भागीदारी बढ़ाना और राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान की भावना को मजबूत करना था। तो श्रोताओं, ये तो थी हमारी जानकारियाँ। जानकारियों के साथ साथ कार्यक्रम में हम आप सभी का मनोरंजन करवाना बिल्कुल नहीं भूलते हैं। हमें पता होता है कि हमारे श्रोताओं को इंतज़ार रहता है गीतों का, तो श्रोताओं एक पंथ दो काज आपके हो जाते हैं, साथ ही साथ आपको जानकारियाँ भी मिल जाती हैं और साथ ही मनोरंजन भी हो जाता है। तो आइए फिर से कार्यक्रम में मिलजुल कर सुनते हैं कार्यक्रम के अगला प्यारा सा गीत। तो आप सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

श्रोताओ, इस प्यारे से गीत के बाद फिर से हम कार्यक्रम में वापस आ गए हैं क्योंकि अभी जानकारियां और आपके साथ साझा करनी है। श्रोताओ, हर घर तिरंगा अभियान के उद्देश्य की थोड़ी सी हम बात आपके साथ करेंगे क्योंकि प्रत्येक नागरिक को राष्ट्रीय ध्वज से ये दिन जोड़ता है और देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता की भावना को भी मजबूत करता है। साथ ही साथ स्वतंत्र संग्राम में वीरों को श्रद्धांजलि भी दी जाती है और युवाओं में राष्ट्र के प्रति गर्व और जिम्मेदारी की भावना विकसित की जाती है। तिरंगे के महत्व और सम्मान के बारे में भी जागरूकता बढ़ाई जाती है। श्रोताओ, तिरंगे के महत्व थोड़ा सा और बढ़ जाता है और भारत का राष्ट्रीय ध्वज तीन रंगों से मिलकर बना होता है, जैसे केसरिया रंग साहस, त्याग और बलिदान का प्रतीक है, सफ़ेद रंग शांति, सत्य और ईमानदारी का प्रतीक है, हरा रंग समृद्धि, विकास और प्रकृति का प्रतीक है और साथ ही साथ अशोक चक्र नीले रंग का चक्र न्याय, प्रगति, निरंतर गतिशीलता का प्रतीक है। इसमें 24 तीलियाँ होती हैं। और श्रोताओ, थोड़ा सा हमें लग रहा है कि हमारी बातचीत ज़्यादा हो रही है और गीत को थोड़ा समय हो रहा है क्योंकि गीत कार्यक्रम में ना हो तो हमारा कार्यक्रम थोड़ा सा अधूरा लगता है और गीतों से कार्यक्रम होता है पूरा। तो आइए बिल्कुल देरी ना करते हुए कार्यक्रम का अगला गीत आप तक पहुंचाते हैं। सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्म।

श्रोताओ, इस समय आप जुड़े हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला। गुड मॉर्निंग धर्मशाला कार्यक्रम में हम हर घर तिरंगा अभियान की बात कर रहे थे। श्रोताओ, तो भारत सरकार के नागरिकों को सम्मान पूर्वक तिरंगा फहराने की अनुमति दी गई है और तिरंगा फहराते समय कुछ हमें महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना है। तिरंगा हमेशा सम्मानपूर्वक फहराया जाए, ध्वज जमीन या पानी को स्पर्श ना करे, साथ ही साथ फटा गंदा या क्षतिग्रस्त तिरंगा ना फहराएं, ध्वज का उपयोग किसी वस्त्र सजावट या अनुचित उद्देश्य के लिए ना करें, ध्वज को निर्धारित नियमों के अनुसार सुरक्षित रखना और सम्मानपूर्वक हटाया जाना चाहिए। हर घर तिरंगा अभियान केवल तिरंगा फहराने का कार्यक्रम नहीं है बल्कि एक राष्ट्रीय एकता, देशभक्ति और नागरिक जिम्मेदारियों का उत्सव है। यह अभियान हमें स्वतंत्र सेनानियों के बलिदान की याद दिलाता है और देश के प्रति अपनेपन का बोध भी करवाता है। तो श्रोताओं, अपनी जानकारियों को थोड़ा सा हम फिर से यहीं पर रोकते हैं और एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। तो आप सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

श्रोताओ, इस समय आप जुड़े हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला। तो श्रोताओ, आपको एक बात बताना चाहते हैं कि 12 बजे से लेकर 1 बजे तक आप सुन सकेंगे दिव्यांगजनों से जुड़ा कार्यक्रम, जिसे लेकर आ रही हैं आरजे ज्योति बठानिया। तो सुनना ना भूलिए। एक बार टाइम आपको फिर से बता देते हैं, 12 बजे से लेकर 1 बजे तक, पूरा एक घंटा। तो श्रोताओं, अपनी जानकारी के साथ फिर से हम कार्यक्रम में वापिस आते हैं कि आज के कार्यक्रम में हमने आपके साथ ढेर सारी जानकारियाँ साझा की हैं, उम्मीद है आपको पसंद भी आई होंगी। तो अब कार्यक्रम का समय ज़्यादा बातें करने के लिए हमें मना कर रहा है, या यूँ कह सकते हैं कि समय हमें अब इजाज़त नहीं दे रहा है कि आपसे ज़्यादा बातचीत हो। तो थोड़ा सा अपनी बातचीत को देते हैं विराम और चलते चलते आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अंतिम प्यारा सा।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: कल शहर जा रहे हो भाई, भाई लोगों को याद रखना।
5: बेटा तुम याद रखना,
4: तुम्हारी याद में आंसू पानी की तरह बहा देंगे।
5: तुम्हारी याद में भरी धूप में बैठे रहेंगे और पसीना पानी की तरह बहाते रहेंगे। अरे भाई पीने का पानी और ले आ।
6: ये लो भैया पानी।
5: छोटू मजाक कर रहा है क्या, पानी कहाँ है?
7: भैया अब जब बाद बाद में पानी बहेगा तो पीने के लिए पानी कहाँ से बचेगा है?
8: हमें अपनी सोच बदलनी होगी, पानी का जरूरत अनुसार प्रयोग करना होगा, पानी के व्यर्थ इस्तेमाल से बचना होगा, क्योंकि पानी की हर एक बूंद कीमती है।
9: आज से पानी नहीं समझदारी बहेगी,
8: जल है तो कल है।
10: आजादी के अमृत पर्व की ओर बढ़ते कदम, सुंदर है जग में सबसे नाम भी न्यारा है, सुंदर है जग में सबसे नाम भी न्यारा है, जहाँ जाति भाषा से बढ़कर देश प्रेम की धारा है, जहाँ हर युवा पर सर्व धर्म संभाव और जय हिंद का नारा है, जहाँ हर युवा पर सर्व धर्म संभाव और जय हिंद का नारा है, निश्चल पावन प्रेम से भरा वो भारत।

स्वतंत्रता दिवस का पावन पर्व निकट आ रहा है, आइए तिरंगे के सम्मान, राष्ट्र की एकता, अखंडता और गौरव को बनाए रखने का संकल्प लें। अपने घर, अपने दिल और अपने कर्म, हर जगह देशभक्ति की भावना को प्रज्वलित करें।

0: किसी ने खूब कहा कि जब जल गंदा हो जाता है तो उसे हिलाते नहीं है, मिलाते नहीं है, छोड़ देते हैं, शांत छोड़ देते हैं ताकि गंदगी जो है वो नीचे बैठ जाए। इसी तरह जीवन में भी जब परेशानियां आए तो बेचैन होने की जगह शांत रहकर विचार करें, यकीन माने सही समाधान मिलेगा।
1: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
2: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: मस्त मास्क पहना रहे तूने।
5: थैंक यू सर। ओ, जान बचाने के लिए पहनना पड़ता है ना सर।
4: रेडीमेड है या आर्टिजन मेड है?
5: ऑनलाइन ऑर्डर किया है सर।
4: एक और एक
5: है ना सर।
4: देना,
5: बहुत मस्त लगेगा आपको। देना सर। सर सर सर,
4: ये ना भाई, जान बचाने के लिए बाइक चलाते वक्त सिर्फ खोपड़े पे मास्क पहनेगा तो खोपड़े को कौन बचाएगा?
5: समझ गया सर।
4: हेलमेट ऑनलाइन ऑर्डर कर वरना हमेशा के लिए ऑफलाइन हो सकता है।
5: तो फिर सर
4: हेले
5: सलाम
4: ये भी ऑनलाइन भर दे। हेलमेट पहने, ट्रैफिक नियमों का पालन करे, जिंदगी के सफर को सुरक्षित रखे।
6: क्या हुआ मृणाल, आज वॉक नहीं कर रहे?
7: मुझे कुछ कहना है यार। कल रात में अपने बेटे रोहन की कबर्ड में कुछ ढूंढ रहा था तो मुझे एक पैकेट मिला जिसकी मुझे उम्मीद ही नहीं थी। मुझे लगता था रोहन को अकेले रहना पसंद है, पर मुझे नहीं पता था कि पिछले कुछ महीने से रोहन ड्रग्स ले रहा है।
8: तुझे पूरा यकीन है?
7: मैं चाहता तो आप लोगों को ये बात नहीं भी बता सकता था, पर अगर मेरे दोस्त ही मदद नहीं करेंगे तो मैं अपने रोहन को इस नशे की बीमारी से कैसे बचा पाऊंगा? मुझे अपने बेटे की जिंदगी बचाने के लिए आप सबकी मदद चाहिए यार।
9: नशे की इस जंग को अगर साथ लड़ेंगे तो जरूर जीतेंगे।
6: अच्छा हुआ तूने कह दिया, हम है ना।
10: मेरा एक दोस्त नशा मुक्ति केंद्र में डॉक्टर है, मैं उससे बात करता हूँ।
11: आइए बनाए नया भारत, नशा मुक्त भारत। हर एक काम देश के नाम।
12: बेबी ये देखो, एक आदमी की 5 करोड़ की लॉटरी लगी है।
13: सही है यार।
12: अच्छा सुनो, अगर आपकी 5 करोड़ की लॉटरी लगती तो आप इतने पैसों का क्या करते?
13: मैं सबसे पहले जो तुम्हें सी फेसिंग फ्लैट पसंद है 3 करोड़ वाला, हा? वो दिलाता। उसके बाद तुम्हारी फेवरेट गाड़ी 1 करोड़ वाली, वो तुम्हें दिलाता। और फिर मैं तुम्हें 50 लाख रुपए शॉपिंग के लिए दे देता। और इसके बाद जो तुम्हारा ड्रीम है

शाला 91.2 MHz पर। मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका, हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने।

दोस्तों बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और फिर से चलते हैं एक प्यारे से गीत की तरफ।

आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं, गीत सुहाने नए पुराने, और आज के इस सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मनपसंद रेडियो कुंचन धर्मशाला और कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों आप सभी गीत सुहाने नए पुराने इस प्यारे से सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपने मनपसंद रेडियो कुंचन धर्मशाला से। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और लेकर चलते हैं आप सभी को फिर से एक प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक की तरफ।

दोस्तों, नए पुराने गीतों का ये सफर आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों ये है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

दोस्तों बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये अगला खूबसूरत सा गीत। आप सभी इसी तरह से एंजॉय करते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने पन की।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
1: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: कैसे?
4: कर्तव्य।
3: सड़क सुरक्षा का सबसे पहला और सबसे जरूरी पार्ट है कर्तव्य। ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने साथ साथ दूसरों के बारे में भी सोचें। अरे हाँ भाई साहब, अगर सड़क के बीचों बीच इस तरह से ट्रक छोड़ेंगे और चले जाएंगे तो पीछे से स्पीड में आ रही गाड़ी जो है ठोक देगी ना आपको। ये हमारा कर्तव्य है कि हम इस निर्धारित पार्किंग स्पॉट में ही गाड़ी को लगाएं, और अगर किसी कारण बीच सड़क में आपकी गाड़ी खराब हो जाती है तो हमेशा पार्किंग लाइट ऑन करें और वार्निंग ट्रायंगल गाड़ी से थोड़ी दूर जाकर के लग दें, ताकि आने वाला जो ट्रैफिक है उसे पता चले कि सामने गाड़ी रुकी हुई है।
5: समझ गए सर।
3: तो याद रखना, कैसे कर्तव्य निभाएंगे तभी तो दूसरों से अपेक्षा रख पाएंगे।

भक्ति हमें संकटों से लड़ना सिखाती है और हमारे वीर शहीदों का बलिदान हमें इस देश की मिट्टी से मोहब्बत करना सिखाता है। महादेव की जटाओं से बहती गंगा सी पवित्र है हमारी आजादी, जिसे बनाए रखना हम सब का संकल्प है। तो आइए सावन के इस पावन उमंग में महादेव को नमन करते हुए अपनी स्वतंत्रता का जश्न मनाएं। हाथों में थामे तिरंगा और गर्व से कहें, हम आजाद हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। आप सभी श्रोताओं को स्वतंत्रता दिवस और सावन के पावन मास की अनंत शुभकामनाएं। सुनते रहिए अपना पसंदीदा रेडियो स्टेशन रेडियो

0: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: इतने बड़े कमाल की बात कही है कि भीड़ में खोना जरूरी नहीं है और ना ही गुरूर में जीना जरूरी है। जरूरी है तो बस एक चीज, अपने विचारों के साथ सही रहना। हर किसी के साथ मेल बिठाना समझदारी नहीं है, कभी कभी दूर रहना भी मन को शांति देता है। हमारी जिंदगी और आसान तब लगने लगती है जब हम अपनी जिंदगी में सही लोगों को, अच्छे लोगों को पहचानना सीख जाते हैं, है ना?
4: कहाँ चले?
5: वही सब
4: हमको मंडी जाना है। ऐसे क्या देख रही है? अरे दहेज में स्कूटर आया है, ये बात पे इतराना जरूरी नहीं है, हमारा काम जरूरी है। अरे चार क्लास का पढ़ लिए, भाव खा रही हो? अंदर जाओ।
6: भाव कहाँ खा रहे? भाव तो दिए
4: है,
6: दहेज दिए है, मतलब भाव दिए, खरीद लिया है आपके बेटे को। इज्जत से पूछेगा तो मिलेगा यूज करना, स्कूटर भी। और बेटा,
7: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क को, अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
8: बीबी एक बात बताओ, शादी से पहले जो मैं आपसे बातें किया करता था, अब उनमें से कौन सी बात आपको सच लगती है?
9: वही जो आप किया करते थे।
8: कौन सी?
9: कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ।

0: नमस्कार सभी को। 91.2 मेगाहर्ट्स रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ एक बार फिर से हाजिर हो गए हैं हम करने आप सभी से बातचीत। और आज का ये कार्यक्रम बहुत विशेष रहने वाला है क्योंकि आज हम एक विशेष बात इस कार्यक्रम में करने वाले हैं। हमारे साथ दो मेहमान हैं, ये हैं इंदु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, और माया देवी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मैं ये चाहती हूं कि आप दोनों थोड़ा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अपने आप हमारे श्रोताओं को दीजिए।
1: रेडियो गुंजन सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं हूं इंदु सिद्धवाड़ी से, मैं हाउस वाइफ हूं
0: जी। और फैमिली में?
1: फैमिली में मेरे हस्बैंड हैं, मेरी मदर इन लॉ है, मेरी बेटा है, एक बेटी है
0: जी। माया जी?
2: जी, मेरा नाम माया देवी है, मैं सिद्धवाड़ी से बिलोंग करती हूँ। और मेरी फैमिली में मेरे पति हैं, दो बेटियां हैं और एक बेटा है, और मैं हाउस वाइफ हूँ।
0: तो ये दोनों गृहिणियां हैं, लेकिन मैं यहाँ पर ये कह देना चाहती हूँ कि जैसे हम हाउस वाइफ कहते हैं ना, जैसे आपने भी कहा हाउस वाइफ, आपने भी हाउस वाइफ, मैं कहूंगी कि आप लोग होम मेकर हैं। क्योंकि अगर हम बाहर नहीं जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं बाहर जाकर, लेकिन घर में हम अपने घर को भी देख रहे हैं, सजा सवार रहे हैं, तो हम अपने घर को बना रहे होते हैं। लेकिन एक विशेषता और भी है श्रोताओं, वो ये है कि ये दोनों एक ऐसी समस्या से भी जूझ रही हैं जो कि समाज में जब लोग देखते हैं ना अक्सर ऐसे लोगों को, तो थोड़ा सा नाक भौं सिकोड़ते हैं और सोचते हैं कि अगर उनके पास इस तरह की समस्या आ जाए तो उन्हें नहीं समझ में आता है कि हम कैसे टैकल करें। और ये दोनों शायद, मुझे लगता है कि ये बहुत समय से उन समस्याओं से जूझ रही हैं, और मुझे नहीं लगता कि अब इन लोगों के लिए वो समस्या रह गई है। आज हम बात करेंगे दिव्यांग जनों पर, जिसके बारे में बात बहुत कम होती है, अगर होती भी है तो उस लेवल तक नहीं होती है। और मैं अब इंदु जी से जानना चाहूंगी, क्योंकि मुझे इस बात के लिए प्रेरित, इस कार्यक्रम के लिए प्रेरित भी इन्होंने ही किया है कि इस बात पर बात की जाए। तो इंदु जी, हम बात करते हैं आपके बेटे से। आपके पास एक ऐसा बेटा है जो दिव्यांग है
1: जी,
0: और उसको संभालते हुए आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आई? शुरू से हम लेके चलेंगे, फैमिली तो अब अलग रह गई, लेकिन हम जिस मुख्य मुद्दे पर आज बात करेंगे वो यही है कि बच्चे के साथ आप जूझ रही थी। वैसे कब आपको पता चला कि इसमें ये समस्या है, मतलब और नहीं अब आगे ठीक हो पाएगा, इस तरह का, मतलब आपको क्या कब लगा?
1: तकरीबन 4 से 5 साल हो गए, जब फर्स्ट टाइम मुझे पता चला, डॉक्टर ने सजेस्ट करा कि बोलते ऐसे ऐसी दिक्कत हो सकता है, इसकी दिक्कत बढ़ भी जाए
0: जी।
1: तो मैंने जब ये इस सिचुएशन को फेस करा तो मैंने एकदम से मतलब स्ट्रेस में आ गई, मैं काफ़ी स्ट्रेस में रही। फिर तो ना नींद ना भूख कुछ भी नहीं, ऐसे बस बड़ी जिंदगी ऐसे लगने की मैं तो मतलब जिंदगी में आई क्यों, क्योंकि इंसान बाकी सब कुछ तो झेल भी लेता है लेकिन बच्चे का दुख

0: सेल्फ डेवलपमेंट कर पाते हैं बच्चे को भी। अगर हमने एक्सेप्ट नहीं करी वो चीज़ तो हमारे लिए मुश्किल है और हमारे बच्चे के लिए बड़ी फिर मुश्किल है।
1: आपको किस समय पता चला था, जब कितना उम्र का हो गया था बेटा आपका?
0: तब मैम मेरा बच्चा था 6 साल का।
1: अच्छा, तभी पता लग गया था।

0: चलते हैं रास्ते से, तो बच्चे को लेके चलना, तो बच्चा थोड़ा मतलब पहले था कि ऐसे चलने में दिक्कत थी उसको, गिर भी जाता था कभी कभार, या फिर थोड़ा उसने ऐसे लंगड़ा के चलना, या तो लोगों ने मतलब जब हम बाहर निकालना ना बच्चा भी, चलो घूमने चलते हैं हम, क्योंकि घर में कितने के बच्चे का वॉक हो जाता है
1: जी,
0: तो लोगों ने क्या करना है उसको देखना ना, तो एक टक देखते रह जाना, तो वो उस टाइम बच्चे ने उस उनकी ओर देखना और मेरी ओर देखना, तो मैं तो उसकी माँ हूँ, मैं तो समझ जाती थी बच्चा क्या कहना चाहता है और उसके दिमाग में क्या चल रहा है
1: जी।

0: भी मन की बातें है ना यहाँ पे उड़े देंगी कि क्या क्या उन्होंने फेस
1: जी
0: किया है और क्या क्या वो चाहती हैं समाज से कि समाज किस तरह से बिहेव करे, इन बच्चों को अगर देखे तो कैसे उनको बिहेव करना चाहिए। सारी बातें आज हम कार्यक्रम में करेंगे और माया जी पर भी हम आते हैं थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले हम कार्यक्रम में लेंगे एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक। तो 91.2 MHz रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं श्रोताओं। दोस्तों यहाँ पर हम सुनते हैं एक प्यारा सा गीत। आप सजेस्ट करना चाहेंगे कोई गीत?
2: वो बेटा फिल्म का है वो सुना दो, तेरी उंगली पकड़ के चला।
0: ठीक है जी, हम माया देवी जी की पसंद से सुनते हैं बेटा फिल्म का ये गीत।

0: बहुत ही अच्छा गीत आपने हमें सुझाया माया जी। और अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से एक बार फिर से हम जुड़ गए हैं इसी टॉपिक के साथ। टॉपिक हमारा आज का विषय है दिव्यांगजन, और दिव्यांगजनों से कैसे हम डील करते हैं। अगर हम जैसे अभी हमारे पास तो सब कुछ दिया हुआ है ना प्रभु ने, लेकिन जब हम सामने से कोई ऐसा व्यक्ति देखते हैं तो क्या हमारा नजरिया उनके प्रति कुछ अलग सा नहीं हो जाता है? उस समय हमें कैसे अपने आप को बिहेव करना चाहिए, खुद में कैसे हमें खुद में बदलाव लाना है उन लोगों के प्रति, इस पर भी आएंगे। माया जी आप क्या कहना चाहेंगी?
1: मैं तो यही कहना चाहूंगी कि सबसे पहले तो इन बच्चों को देख के लोगों की सोच बदलनी चाहिए, जो उनकी थिंकिंग है, जो सोच है उनकी, कि ये बच्चे कुछ नहीं कर सकते, ये आगे नहीं चल सकते, बढ़ नहीं सकते। वैसे ही पेरेंट्स जो हैं, जो माता पिता हैं, वो तो वैसे ही दुखी होते हैं, पर ये समाज जो है ना, अगर उनके सपोर्ट में खड़ा हो जाए तो उनका आधा दुख दूर हो जाएगा।
0: आपके साथ भी कोई?
1: हाँ, मेरे साथ भी ऐसी कोई घटना है। मेरा बेटा है, अभी 17 साल का हो गया कम्प्लीट, तो वो सुन नहीं पाता है, बोल भी नहीं पाता, और देखने में भी दिक्कत है। साथ में ही एक और छोटी बेटी है, उसको भी सेम टू सेम प्रॉब्लम है।
0: अच्छा।
1: मेरे पास 2 बच्चे हैं, तो 2 बच्चों के साथ मुझे कार्य करना पड़ता है, साथ में घर भी संभालना पड़ता है।
0: जी वो तो ठीक है, आपके बच्चे हैं आप ही करेंगे, लेकिन जैसे अभी आपने कहा कि समाज के जो लोग हैं वो इस तरह के का रवैया आपके साथ रखते हैं, तो कोई ऐसी घटना हुई हो जो आपके दिल पर काफी ज्यादा लग गई हो?
1: जी, घटना तो हुई थी जब मैं अपने मायके में गई थी, तो जब मैंने फर्स्ट टाइम मैं अपने बेटे को शूज लेके दिए थे, तो बहुत ही अच्छे थे वो, तो बोलने लगे कि इस जलैंगड़ को, वो पहाड़ी भाषा में बोल रहे थे कि इस जलैंगड़ को इतने अच्छे शूज क्यों डाल दिए हैं,
0: इतने महंगे क्यों खरीद दिए,
1: इतने अच्छे, हाँ इतने महंगे शूज क्यों खरीदी है इस जलैंगड़ को, ये तो कुछ कर ही नहीं सकता लाइफ में। तो आज जो है मेरे बेटे प्लस वन में पढ़ रहा है,
0: और आपको पढ़ा रही हूँ उनको, उसको, मतलब दोनों बच्चों को, ये बहुत बड़ी बात है।
1: और बेटी जो 5 क्लास में,
0: 5वीं में पढ़ रही है। ठीक है, तो उनके लिए कोई स्पेशल स्कूल है या नॉर्मल रेगुलर स्कूल में जाते हैं वो?
1: पहले रेगुलर नॉर्मल स्कूल में जाते रहे 6 क्लास तक, और बेटी जो है वो जब 2nd क्लास में थी तो नॉर्मल क्लास में थी, फिर बाद में मुझे पता चला कि इनके लिए एक स्पेशल स्कूल भी है, तो एक स्पेशल जो गर्ल स्कूल है वो है NR भापे सुंदर नगर में
0: जी,
1: वो गर्ल हॉस्टल है, और शिमला में है ढली में वो बॉय स्कूल है।
0: अच्छा, वहां पर डाली है आपने अपने बच्चे?
1: मैंने वहां पे वेलफेयर दफ्तर के थ्रू से वहां पे मैंने अपनी फाइल भेजी थी, तो दोनों बच्चों का सिलेक्ट हो गए थे वहां पे, एडमिशन ओपन हो गया था उनका। पर बट ये हुआ कि जो शिमला में ढली स्कूल है वहाँ पे हॉस्टल का रूम बेटे के लिए नहीं मिला।
0: अच्छा।
1: तो उस वजह से हम बेटे को वहाँ पे नहीं छोड़ पाए, क्योंकि बाहर का रूम लेते तो हम वो ले नहीं सकते।
0: मतलब बेटी आपकी हॉस्टल में है और बेटा आपके पास है?
1: बिल्कुल।
0: तो यहाँ पे फिर कहाँ पढ़ रहा है?
1: यहाँ पे मैम बोनकरोटा में जाता है, बॉय स्कूल में।
0: बॉय स्कूल
1: जी।
0: तो आना जाना कैसे करते हैं?
1: आना जाना ऐसा मैम की डेली मैं अप डाउन करती हूँ, मैं खुद ही लेकर जाती हूँ।
0: अच्छा।
1: लेकर आती हूँ, मैं पूरा दिन उसी के साथ में रहती हूँ, और मेरा घर का जो काम है वो शाम के टाइम में होता है मैक्सिमम, क्योंकि बेटे के साथ ही ज्यादा टाइम होता है
0: जी।
1: और बीच में कभी अगर हम स्कूल ना जाए तो हम यहाँ पे तपोवन चिन्ह में कोड करके यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है, वहाँ पे स्पेशल एजुकेटर है और स्पीच वगैरह और बहुत सारी चीजें हैं, PGO है, थेरेपीज है, तो वहीं पे मैं उनको 12 साल से जो है वो कंटिन्यू लेके जा रही हूँ, तो वहां से बहुत कुछ सीखा मेरे बच्चों ने, वहीं से आगे बढ़े हैं और वहीं से मुझे भी सीखने का बहुत मौका मिला।
0: वही मैं कहना चाह रही थी कि देखिए जब हम इन स्पेशल बच्चों के साथ डील करते हैं ना, तो हमें भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है, जैसा कि माया देवी जी ने कहा। कार्यक्रम में आगे जरूर बढ़ेंगे, एक और गीत तो हम सुनवाते हैं आपको कार्यक्रम में। अब ये बड़ा ही खूबसूरत सा गीत, तारे जमीन पर फिल्म का ये गीत सुनिए।

0: तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है, तारे जमीन पर ये जो फिल्म आई थी, इसमें भी वो जो बच्चा था वो देखने में तो बिल्कुल नॉर्मल लगता है, लेकिन सरबल पॉलिसी नामक एक प्रॉब्लम उस बच्चे को भी थी और वो उससे ग्रसित था। उसे जो वर्ड्स या फिर जो नंबर्स हैं वो याद नहीं रहते थे, लेकिन कैसे एक टीचर ने उस चीज़ को समझ करके उस समस्या का समाधान निकाला। और ठीक है, अगर वो पढ़ाई की तरफ नहीं इतना अच्छा कर पा रहा था तो उसको किसी और तरफ उन्होंने डाइवर्ट कर दिया। तो ऐसा भी होता है, और हमारे अगर नॉर्मल जो बच्चे होते हैं उनके साथ भी ऐसी समस्याएं कई बार हो जाती हैं। वो अगर माता पिता कहेंगे डॉक्टर ही बनना है या इंजीनियर ही बनना है, तो ज़रूरी नहीं है कि उनके मन में वो भाव हो कि हाँ हमें इसी तरफ हमें जाना है। कई बच्चे तो एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन कई बच्चे जो अंदर ही अंदर दबते रहते हैं, घुटते रहते हैं, और फिर वो अपनी लीला समाप्त भी कर लेते हैं कई बार, जैसा कि अभी हाल फिलहाल में हम देख भी रहे हैं। लेकिन ये जो बच्चे होते हैं ना, ये बड़े प्यारे बच्चे होते हैं, इन्हें कुछ भी सुध-बुध खुद की भी नहीं होती है, और इनके साथ अगर डील किया जाए ना तो ये बहुत ही अच्छे परिणाम हमारे सामने रखते हैं। हमने कभी सोचा भी नहीं होता है कि ये बच्चा भी ऐसा कर सकता है। तो 91.2 MHz रेडियो गुंजन धर्मशाला से आप सुन रहे हैं ये विशेष कार्यक्रम। अब हम इंदु जी से बात करते हैं। इंदु जी, जैसे कि हम अपने बच्चों को तो खुद घर में संभाल लेते हैं, है ना, अब हमारे पास दिव्यांग बच्चा है या नॉर्मल बच्चा है, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है वैसे, मुझे जहां तक लगता है, क्योंकि लोगों ने ना बाहर बातें जो हैं वो सामान्य लोगों के लिए भी करनी ही होती हैं, और अगर दिव्यांग होगा तो उसके बारे में तो ज्यादा बात होती है, ज्यादा बातें करते हैं, यानी परेशानी ज्यादा क्रिएट करते हैं। तो अब आप उसमें क्या कहना चाहती हैं?
1: मैम, तो उसी टाइम की बात है, मैं जैसे मायके गई थी, वहां से मेरे अपने ही कोई, जैसे मैं मेरे बेटे को, अब वो चलते फिरते नहीं है, बैठा रहता है, व्हील चेयर पे है वो, तो मैं ऐसे माइंड से बिल्कुल एक्टिव है वो, शायद पूरा अच्छी बात करता है, एक्टिव करी अच्छी, मतलब बात करेगा,
0: समझता है,
1: हाँ जी,
0: सब कुछ
1: समझता है, पर उसको वही चलने फिरने में दिक्कत है। तो जैसे मैं उसको फ्लैश लेके जा रही थी, तो वहां पर फ्लैश थोड़ी दूर थी घर में, तो जैसे हमने अंडरग्राउंड है पर वहां पर थोड़ी दूर थी, तो मैं उसको उठा के लेके जा रही थी, तो मेरे कोई नॉन ही, मतलब अपने ही लगे बोलने की, बोलते इंदु तुझे तो तूने तेरे भी कर्म बहुत माड़े हैं, बोलते तूने पिछले कर्म के पता नहीं कैसे किए, पिछले जन्म के कर्म की तू ये, मतलब इतना तुझे अब इस सफर से ये सब सफर कर रही है तू। तो उस टाइम थोड़ी देर के लिए मैं बिल्कुल चुप हो गई, मुझे ना उनकी बात, चलो उन्होंने अपने तरीके से सही लगा उनको, जो सही हाँ। सही बोला, लेकिन मुझे ये चीज ना पिंच कर गई, क्यों, क्योंकि देखो ना ये तो मेरा बच्चा है ना, मैं तो उसकी माँ हूँ, मेरा अंश है, मैं तो उसको देखूंगी, लेकिन अगर मैं उसकी जगह, मेरी सास होती, ये मेरे पेरेंट्स होते, ये मेरे ससुर होते, कोई भी होता, अगर मैं उनकी सेवा कर रही थी तो ये चीज किसी ने नहीं बोलनी थी।
0: सही बोला आपने
1: ना, तब तो सभी ने बोलना था ना, अब तो बड़ा अच्छा कर रही हो, तो तब नहीं किसी ने बोलना कि तेरे कर्म माड़े हैं या कुछ भी है, तब ये चीज किसी ने नहीं बोलनी थी। लेकिन ये चीज मुझे बड़ी बुरी लगी तब, क्योंकि मैं माँ हूं, तो मुझे नहीं बुरा लगता, मुझे से अगर स्पेशल मोम बनाया है तो उस भगवान ने बनाया है, तो मैं स्पेशल मोम, मेरा स्पेशल बच्चा है, तो मुझे, मैं खुश हूँ इसी चीज से, तो मैं इस चीज से बिल्कुल भी दुख नहीं होती। और मैं मतलब लोगों से भी यही बोलना चाहती हूँ कि प्लीज ऐसी घटिया बातें बिल्कुल ना करें, क्योंकि सामने वाले को कैसी लगती है ये आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते।
0: इंदु जी की इस बात से मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि इन्होंने एक बहुत ही तगड़ा जो तमाचा है वो ऐसे लोगों के ऊपर मारा है कि जो लोग इस तरह की सोच रखते हैं कि तुम्हारे कर्म कितने खराब हैं कि आपको इस तरह का जो बच्चा है वो मिला, ऐसा मुझे नहीं लगता। बल्कि हाँ, जैसा आपने कहा कि आप तो स्पेशल मॉम हैं, आपको भगवान परख रहा है और आप में कोई क्वालिटी है, इसीलिए आपको इसलिए सेवा का मौका दिया गया है ना, बहुत अच्छी बात। इसीलिए ये कार्यक्रम आज हमने रखा है, और जो ग्राउंड लेवल पे जूझ रहे हैं, कार्य कर रहे हैं ऐसे बच्चों के साथ, चाहे वो इनके अपने ही बच्चे हैं, मुझे लगता है इनके पास अगर एक दो और भी आ जाएंगे तो ये उनकी भी सेवा करने में बिल्कुल नहीं झिझकेंगे शायद, क्योंकि इन्हें पता है कि इन बच्चों के साथ कैसे डील करना है, कैसे क्या करना है। इंदु जी, कभी आपने सोचा कि बच्चे को कहीं स्कूल में डाला जाए?
1: हमसे बच्चा जाता है स्कूल।
0: अच्छा,
1: हाँ जी,
0: जाता है।
1: पहले सेंट मैरी में डाला था, फिर वो क्या हुआ, लॉकडाउन लग गया, तो वहां पर डेली पढ़ाई भी चली हुई थी, लेकिन फिर एक बार क्या होता है, मैम ने ऐसे बोला था कि आपके बच्चे में थोड़ी मुझे दिक्कत लग रही है, तब उस टाइम मेरे छोटा ही था, तो तो उसकी मतलब बात भी क्लियर नहीं करता था, तो थोड़ा इसको दिक्कत भी थी। तो मैम बोलते कि इसको ना कहीं और स्कूल में डालो, जे खुलो अगर कोई स्पेशल स्कूल है ऐसा कुछ तो। पर मैम मैंने ना खुद से दूर नहीं किया अपने बच्चे को, क्योंकि मेरा मन नहीं माना कि मैं अपने बच्चे को जो मैं अपने बच्चों की इतनी केयर कर सकती हूँ, मुझे नहीं लगता कि कहीं और मेरे बच्चे की केयर होगी,
0: हो सकती है।
1: तो मेरा इतना दिल नहीं कभी माना और ना ही मैंने कभी सोचा। ये मुझे ऐसे दाढ़ी स्कूल से भी फोन आया था, जैसे ऐसे है एक स्कूल, वहां से मुझे फोन आया था, बोलते आप अपने बच्चे को यहाँ डाल दो, आप चाहे तो हफ्ते में एक बार उसको घर भी ले जा सकते हैं। पर मैंने बिल्कुल मना कर दिया।
0: हार्मनी है उसका नाम, हार्मनी, और एक स्कूल और भी है सूर्योदय चैरिटेबल ट्रस्ट स्कूल, वहां पर भी आप देख सकते हैं। आप माया जी, आपने सूर्योदय में नहीं कोशिश की?
2: मैं गई थी वहां पे, पर उस टाइम पे मैं सबसे ज्यादा एनजीओ में ही जाती थी, जिनमें कोर्ट करके जो एनजीओ तो
0: अच्छा, अच्छा।
2: तो वहां से ज्यादा सीखा मैंने, मतलब मैं बोलती हूँ कि 100% से भी ज्यादा वहीं पे ही सीखा है मैंने भी और बच्चों ने भी। और आज मैं इस लेवल पर हूँ कि अगर मेरे सामने अगर ऐसे बच्चे आ भी जाएं तो मैं उनको हैंडल भी कर लेती हूँ, और कुछ सुझाव देना होता है तो मैं सुझाव भी दे लेती हूँ। और कम से कम इस टाइम मेरा 15 से 20 लोगों के फोन आते हैं मुझे दिन में, तो वो मुझे बोलते कि मैडम जी ये काम करना था, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। तो 12 साल का जो एक्सपीरियंस था वो मैं उनके साथ शेयर कर लेती हूँ, आगे उनको अच्छा लगता है तो वो बात भी करते हैं। और मैं वही बोलना चाहूंगी कि अगर ऐसे बच्चे हैं तो एक तो व्यवहार अच्छा रखे और साथ में सपोर्ट करें, दूसरा अगर कुछ मेरे पास में ऐसे बच्चे हैं, मैं इस चीज से गुजर चुकी हूँ, ये समय मैंने गुजर, तो मैं चाहती हूँ सबसे पहले तो इन अगर डिसेबल बच्चे होते हैं तो एक्सेप्ट करिए कि हमारा बच्चा ऐसा है, क्योंकि मैक्सिमम लोग एक्सेप्ट करने
1: नहीं
2: बहुत
1: करते।
2: देरी
1: ये बात बिल्कुल सही कही आपने,
2: बहुत देरी कर रहे हैं। और उस देरी की वजह से क्या हो रहा है कि जो बच्चे का वेश होता है 1 साल से लेकर 12 तक, वो समय हमारा जो है
1: निकल जाता है
2: और फिर बाद में हम पछताते हैं।
0: तो उसी समय में अगर कोई स्पेशल स्कूल्स देख लिए जाएं तो वहां पर हम अपने बच्चों को छोड़
2: बिल्कुल छोड़ सकते हैं, कुछ छोड़ते हैं कुछ नहीं। जैसे अब माँ की ममता है तो माँ की ममता तो नेचुरल है कि नहीं छोड़ना चाहती, पर बच्चों का भविष्य बनाने हैं तो दिल पे पत्थर तो रखना पड़ेगा। मैंने खुद रखा हुआ है, मैंने अपनी खुद की बेटी को छोड़ा हुआ है, पर ये है कि आने वाले समय में जब वो पढ़ जाएगी लिख जाएगी तो खुदा ना खास्ता मरना तो एक ना दिन ये सभी को ही है,
1: सभी को जाना।
2: पर बट ये कि मरने के बाद कल को मुझे कोई ऐसे तो नहीं बोलेगा कि बच्चों का भविष्य खराब करके गई है। तो मैं तो चाहती हूँ कि निकलो, अगर नहीं सपोर्ट कर रहा है कोई तो आइए हमारे एनजीओ में आइए, हमसे मिलिए, हम बताएंगे, हम आपके घर वालों से बात करते हैं कि निकलो और निकालो इन बच्चों को।
0: आपका एनजीओ है कोई स्पेशल कॉर्ड से ही?
2: मैं कॉर्ड
0: से जुड़े हुए हूँ। अच्छा,
2: मैं कॉर्ड से जुड़ी हुई हूँ। और अगर आपके घर पे भी अगर किसी को समझाने हैं, जैसे बुजुर्ग लोग होते नहीं समझते हैं, ये पापा है नहीं समझ रहे हैं, तो हमें बुलाए, हम आएंगे, हम समझाएंगे उनको। पर ये है कि एक चीज हो रहा है कि माता जो है ग्राम पंचायत में जो सभा होती है या जनरल उसमें बच्चे को जरूर लेके जाए, दूसरा कहीं पे भी फंक्शन होता तो वहां पे भी निकाले, शर्म ना करे कि हमारा बच्चा ऐसा है। अगर खुद ही माँ खड़ी ना होगी या बाप खड़ा नहीं होगा तो सामने वाले कुछ ना कुछ बोलते रहे।
0: अच्छा, जब आप बच्चों को लेकर जाते हैं ऐसे फंक्शन वगैरह में तो बच्चे खुश होते हैं ना?
2: बहुत ज्यादा,
0: उन्हें नहीं फर्क पड़ता कि कोई उन्हें कैसे देख रहा है, कैसे क्या कर रहा है, अब तो वो उस चीजों से परे हो जाते हैं
2: जी। पर ये है कि जब वो खुश होते तो हम भी थोड़ा खुश हो जाते कि चलो बच्चे खुश हो रहे हैं हमारे, तो हमें निकालना चाहिए इन बच्चों को बाहर घर में कैद करके नहीं रखना चाहिए।
0: तो गवर्नमेंट से आप लोगों को किस किस तरह की सुविधाएं मिली है उस पर भी हम बात करेंगे। अब फिर से एक गीत ले लेते हैं, आप बताएंगे अपनी पसंद का गीत।
1: ये तो सच है कि भगवान है।
0: ठीक है।

0: जी हाँ, ये बिल्कुल सच है कि भगवान तो है ही और प्रभु हैं, सब देख रहे हैं। और इन बच्चों के लिए जैसे माता हैं, ये भी भगवान ही हैं बच्चों की तो, परंतु उससे ऊपर भी एक शक्ति है और वही सब कुछ करवा रही है। आप मानते हैं ना इस बात को?
1: जी
0: माया देवी जी,
1: जी बिल्कुल।
0: तो जैसे आपने कहा कि बच्चों की ऐसी कंडीशन देखने के बाद आप फिर कोर्ट से जुड़ी।
1: जी मैम, मुझे बाद में जब मेरा बेटा 2.5 साल का हुआ था, उसी दौरान मुझे पता चला था कि वो सुनता नहीं है, बोलता नहीं है। तो कोर्ट के बारे में मैं नहीं जानती थी पहले, पर बट हमारे ही गांव में एक और लड़की है, वो बिल्कुल भी चलती फिरती नहीं है, बिस्तर पे है
0: जी।
1: तो उनकी जो मम्मी है वो है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, अनीता थापा करके। तो उनके वो जाते होंगे अपनी बेटी को लेकर के, तो उन्होंने बोला कि आपके बेटे को लेके चलना है, आप मेरे साथ में चलिए। तो उनके साथ में मैं जब गई और वहां पे बलवीर गुलेरिया जी हैं और अनंत जी हैं, तो वहां पे जब उन्होंने उसको आवाजें दी तो वो आवाजें नहीं सुन पा रहा था मेरा बेटा। तो मुझे 2.5 साल के करीब में पता चला कि मेरा बेटा नहीं सुन पा
0: रहा, नहीं सुनता है। अच्छा ठीक है, तो ये बातें सुन करके देखिए कहीं ना कहीं एक आशा की किरण भी जागती है कि अगर समाज में बुराई करने वाले लोग हैं, इन्हें दुत्कारने वाले लोग हैं, तो सहायता करने वाले लोग भी हैं
1: जी।
0: जिन जिन का नाम अभी आपने लिया वो सभी सहायक ही तो है ना।
1: बिल्कुल।
0: आपको कोई सहायता करने वाले मिले?
2: जी मैम, तपोवन में मैं भी जाती थी ना पहले, लेकिन अब मेरे बेटा जैसे बिल्कुल ही चल नहीं पाता है, तो मुझे तो दिक्कत हो जाती है क्योंकि वहाँ पर जो रोड की थोड़ी दिक्कत है, रोड बड़ा, वहाँ की गाड़ी बड़ी है, अगर बड़ी गाड़ी आ जाए तो मैं भी उसको बिठा के ले जा सकती हूँ, मुझे ले जाने में और जो थोड़ी दिक्कत होती है।
0: अच्छा, अब ना आप दोनों से ना ये जो श्रोता सुन भी रहे हैं वो ये भी जानना चाहेंगे कि इस समय आप स्टूडियो में आ गए हमारे, तो इस वक्त आपके बच्चे कहाँ हैं, किसके पास छोड़ करके आए हैं आप?
2: मैम मैं तो अपनी बेटी के पास छोड़ के आई हूँ क्योंकि बेटी को छुट्टियाँ पड़ी हुई हैं, तो आज उसकी मैंने स्पेशल आपने बुलाया था मुझे और मैंने सोचा था कि मैं इस बारे में बात करूंगी क्योंकि मैं लोगों से बड़ी परेशान हूँ जितनी मैं अपने बच्चे से परेशान हूँ। क्योंकि बच्चे का तो मैं खुशी खुशी देखती हूँ कि चलो जैसे भी मुझे रब ने दिया है वो गॉड गिफ्ट है मेरे लिए, तो पर मैं लोगों से परेशान थी इसलिए तो मैं ये इस प्रोग्राम में ये जरूर करना चाहती हूँ, मैं इस प्रोग्राम में जरूर पार्टिसिपेट करूंगी।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमें भी आपने एक मौका दिया है। ये जानना चाहूंगी कि बेटी आपकी जो है वो कितनी बड़ी है, उससे बड़ी है छोटी?
2: मैम बेटी बड़ी है, उससे 6 साल बड़ी है।
0: ठीक है, फिर तो अच्छी बात है। और बेटी बहुत प्यार करती है?
2: हाँ जी मैम बिल्कुल, अभी +2 में है वो।
0: अब हम उस पे आ जाते हैं बात पे कि सहायता आपको जो गवर्नमेंट से, सरकार से क्या क्या मिल रही है?
2: मैम ऐसे तो इन्होंने इसका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बना हुआ है, जैसे इनका जो बना होता है कार्ड, तो उसमें क्या होता है UDID कार्ड बना होता है, इसमें बस जो है ना, बस में जो हम कहीं भी सफर करें उसके साथ एक पर्सन फ्री होता है।
1: अच्छा, टीसी बस में जहाँ भी कहीं पे हम सफर करते हैं और जिनका 70% से ऊपर है, तो वहाँ पे क्या होता है कि एक बंदा जो होता है साथ में, चाहे वो माता है, पिता है, कोई भी है, बहन है, वो फ्री होता है साथ में। और ये होता है हिमाचल, मतलब हम आगे ऊना में चले जाते तो उससे आगे हमारा करियर लग जाता, जैसे चंडीगढ़ जाना होता है, पर हमारे यहाँ का लोकल जो
0: हिमाचल के अंदर
1: वहाँ पे ये UID कार्ड जो है वो चलता है।
0: और
2: बट इसका मैम ये है कि जैसे इनके बच्चे हैं या कोई और भी बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं, कोई भी है, डिसेबल तो कोई भी हो सकता है किसी भी उम्र में, तो उनके लिए तो ये तो फैसिलिटी उनके लिए है जो चल फिर सकते हैं ना। जैसे मेरा बेटा बिल्कुल चल नहीं सकता, हम तो हमें कहीं भी जाना हो तो गाड़ी से जाते हैं, हम तो नहीं जा सकते बस में, तो इस फैसिलिटी का तो हमें कोई फायदा ही नहीं
0: है। आपका कोई फायदा नहीं है, इस बारे में भी हम चाहते हैं कि सरकार देखे कि जैसे योजनाएं चलाई गई हैं तो इन बच्चों के बारे में भी थोड़ा सा सोचेगी जो बिल्कुल भी चल फिर नहीं पा रहे हैं। या एक निवन्या करके लड़की थी, उसकी एड हमने बहुत यहाँ से चलाई, उसके बारे में हमने बहुत बार बताया कि उसको वो भी इसी तरह की एक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से पीड़ित थी, तो ऐसे बच्चों के बारे में ज्यादा सोचना होगा हमें लगता है सरकार को। चलिए अब हम एक गीत और ले लेते हैं और फिर उसके बाद एक और सेशन के लिए रेडी रहते हैं।

0: जी श्रोताओं, तो 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप सभी जुड़े हुए हैं और मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। ये एक स्पेशल प्रोग्राम आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं जिसमें हमारे साथ इंदु जी हैं और साथ में हैं माया देवी जी, और ये दिव्यांग जनों की बात आज हम इस कार्यक्रम में कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये आती है श्रोताओं कि देखिए, बाहर के लोगों को भी हमने देख लिया, वो जैसे हैं वैसे ही रहने वाले हैं, उनके बर्ताव में मुझे नहीं लगता कि कोई बदलाव आएगा, या हो सकता है हमारे इस कार्यक्रम के बाद में थोड़ा सा वो अपने आप को चेंज भी करें जो जो ये कार्यक्रम सुनेगा, लेकिन वो जो बच्चे हैं जो इन समस्याओं से, इन चीजों से खुद ही जूझ रहे हैं, उनका मन कैसा होता होगा, ये बातें जो है वो एक माँ ही समझ सकती है। तो हम बारी बारी से दोनों से जानेंगे। माया देवी जी, पहले आप बताएं।
1: मैम, इसमें जैसे मेरा बेटा अभी जो उसने, मैं लेटी हूँ मुझे नींद में, तो मेरा बेटा ना कोशिश करेगा कि मम्मी को नहीं उठाऊंगी, मम्मी रेस्ट कर रही है।
0: अच्छा।
1: हाँ जी, तो वो सोचता है कि मम्मी को ना उठाऊं, तो जब मैं उठती हूँ ना कई बार, तो या फिर मुझे कभी पर पता चल जाता है कि उसको कुछ जरूरत है किसी चीज़ की, तो मैं पूछती हूँ कि कुछ चाहिए जरूरत, तो उसने कई बार टॉयलेट करना होता है या उसने पानी पीना होता है, तो बोलता है, मैंने बोला तो आपने बोला क्यों नहीं, बोलता आप सो रही थी तो मैंने नहीं बोला। मतलब वो अंदर से वो भी हीन भावना फील करते हैं बच्चे की, ये करके काम भी करते हैं, हमें भी देख रहे हैं, तो उनके भी दिमाग में ये सब चीज़ें आती हैं, तो वो क्योंकि वो खुद इस सिचुएशन को फेस कर रहा है, तो वो उसको कितनी दिक्कत होगी।
0: मतलब आपको, आपको बोलने का मतलब ये है कि वो शरीर से लाचार है, लेकिन दिमाग से नहीं है।
1: जी,
0: दिमाग से वो सब कुछ समझता है। ऐसे बच्चे बहुत इमोशनल होते हैं,
1: और जब मैं इसको नहाने के लिए लेके जाती हूँ, तो उसको जब फिर कपड़े चेंज करूँ, तो वो ना खुद को ऐसे कवर करता है, दूसरों के करता ही, दूसरों के सामने मैं तो उसको ऐसे करती नहीं हूँ, चेंज नहीं करवाना कुछ नहीं, लेकिन मेरे सामने कई बार ना बड़ा हो गया, जैसे अब 11 साल के हो गया, 12 उनका स्टार्ट हो गया, तो वैसे कवर करता है खुद को, तो मैं तो समझ आती हूँ। मैं आज सुबह भी देख रही, जब मैं उसको नहाने लगी थी तो ऐसे कर रहा था।

0: फिर मैंने उसको समझाया, मैं क्या बेटा मैं मम्मा हूँ आपकी, मम्मा से नहीं शर्म करनी, मैं और हम एक ही मिस में मुझ में रहो और खुद में कोई ये सब मत सोचा करो। मैं मम्मी ने मेरे साथ खुल के बात किया करो, कोई बात नहीं अब लोगों के सामने होता है ये सब, मेरे सामने नहीं ऐसा करना।
1: और माया जी आपका क्या ऐसा एक्सपीरियंस है इस बारे में?
2: मैम ये तो है कि अगर इनको कुछ सिखाएं तो ये नहीं है कि पीछे हैं, हमसे भी आगे हैं, पर ये है कि इनको एक गाइड लाइन चाहिए अच्छी वाली, और जितना हम इनको गाइड करेंगे उससे अच्छा ही इनसे रिस्पॉन्स मिलता है। और रही बेटे की बात और बेटी की बात, तो वो ये है कि वो उनके कानों से ये है और आंखों से ये है, बाकी तो सोच अच्छी है, उनकी समझ अच्छी है। तो ये कि जैसे कभी मैं बीमार हो जाती हूँ तो उनको पता होता है कि मम्मा बीमार है, या पापा मतलब कभी थोड़ा जोर से चिल्लाएं तो पता होता है उनको कि पापा मम्मा के ऊपर चिल्ला रहे हैं, तो महसूस करते हैं इन चीज़ों को। तो उनको भी वहाँ पे जब वो थोड़ा सा घर पे मनमुटाव हो जाता है तो उनको भी लगता है कि नहीं यार कुछ हो रहा है, समझते हैं इन चीज़ों को। दूसरी बात ये है कि जैसे अब बेटा है तो उसको तो मैक्सिमम खुद ही बताना पड़ता है साफ सफाई के बारे में, हर एक चीज़ के बारे में, पर बड़ा हो रखा है तो ये है कि अब बता दिया है तो वो खुद कर लेता है तो आप खुशी होती है,
1: अच्छा
2: मुझे भी खुशी होती है, उसको खुद होती है कि हाँ मम्मा अब जो मेरे लिए टाइम वेस्ट नहीं कर रही है, अपना टाइम जो है वो खुद के लिए रख रही है, तो मैं अपना काम खुद कर रहा हूँ। और बेटी है, अभी भी बेटी और बेटे को छोड़ के आई थी तो ड्राइंग की किताब देख कर आई थी, मैंने कहा मेरे हाथ इसमें जब मैं वापस आऊंगी उस टाइम तक आप ये दो पन्ने ड्राइंग की कर देना, कुछ भी करना, चाहे उसमें सेब बनाओ, कार बनाओ, फूल बनाओ, जो मर्जी बनाओ।
1: हाँ, यही मेरे दिमाग में भी आया था कि इन बच्चों को जैसे आपने कहा था कि बाहर निकालना चाहिए, लेकिन उनके एंटरटेनमेंट के लिए आप लोग क्या क्या करते हैं? आपने तो बता दिया वो बच्चे ड्राइंग वगैरह करते हैं, तो एंटरटेनमेंट के लिए आप भी कुछ करवाती हैं बच्चे से?
0: मैं बच्चे के साथ गेम्स खेलती हूँ, उसको कुछ ड्राइंग बना के ऐसे ऐसे करो तो वो भी करता रहता है, कुछ कलर भरने के लिए जैसे उसके टॉय काफी लेके दिए मैंने, क्योंकि दिन भर उसने टाइम कैसे पास करना है बहुत मुश्किल होता है उनको, और इन ऐसे बच्चों को नींद भी नहीं बड़ी कम आती है, रात को बड़ी मुश्किल से उनको, मैं कोशिश करती हूँ कि रात को जल्दी सो जाए तो सुलाती हूँ, तो सुबह दिन हम तो जैसे थक जाएंगे काम करते हैं इधर उधर भागते हैं, बहुत बेचारे एक जगह पे बैठे रहना, तो मैं कभी उसको एक रूम में लेके जाती हूँ, कभी दूसरे रूम में, चलो दूसरे रूम में लेके वहाँ पर टीवी देखता है, फिर मैं दूसरे रूम में ले आती हूँ, कभी बाहर बैठे रहते हैं हम,
1: तो क्या मोबाइल वगैरह तो नहीं देते हैं आप?
0: हम देना पड़ता है,
2: देना पड़ता है,
0: जरूरी भी है, उसमें बच्चे अच्छी अच्छी चीजें भी सीखते हैं। हाँ जी, जैसे हम पास में बैठे होते हैं उसमें पोइम्स आती हैं, एबीसी हर एक चीज आती है उसमें, कुछ भी बच्चे अच्छी चीजें सीखते हैं। ये तो हमें मतलब पेरेंट्स के ऊपर भी डिपेंड करता है ना, हम बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, क्या बता रहे हैं, तो वो भी बच्चा उसी अकॉर्डिंग वही सब देखता है सुनता है।
1: जी, तो हमारी सारी बातचीत का आज निष्कर्ष यही निकला है दोस्तों कि देखिए बाहर वालों से तो इतना ज्यादा फर्क फिर भी नहीं पड़ता, लेकिन जो माएं ऐसे बच्चों को संभाल रही होती हैं उनके अपने ही घर वाले जब गलत सलत कुछ भी कह
0: देते हैं
1: तो ज्यादा शायद दुख होता है, तो उसके बारे में आप कोई संदेश देना चाहें?
0: मैं यही बोलना चाहूंगी, आप अगर कुछ भी नहीं कर सकते हैं लेकिन एक माँ को डिमोटिवेट तो मत करो, जो वो कर रहे हैं उनको तो करने दो, और उनके बल्कि उनकी वही जैसे मैंने पहले बोला कि अगर हम किसी बुजुर्ग के कर रहे होते तो लोग हमारी कितना प्रशंसा करते, तो वही एक चीज सोचनी चाहिए कि हम भी जो हमें जो जैसा भगवान ने बनाया है हमारे बच्चों को, हम खुश हैं उसमें, हमें वैसे ही खुश रहने दीजिए, तो हम भी नहीं पीछे, हमने भी नहीं सोचा था कि ये हमारे बच्चे ऐसे हों, ये कोई भी नहीं सोचता है, लेकिन जैसा है हमें वैसे एक्सेप्ट करना चाहिए जिंदगी में।
1: आपका कोई एक्सपीरियंस ऐसा है कि आपके घर वाले साथ में हैं या?
2: मेरा तो मैम पूरे ही गांव साथ में है, जो मेरा गांव है, मैं सारे गांव वालों को धन्यवाद देना चाहूंगी, ये त्रि परिवार जो है सबसे ज्यादा रोल टेलर करके वो मशहूर है, उनको उस पूरे परिवार को जितना भी समस्त परिवार है गांव है, क्योंकि इसका धन्यवाद करने का मतलब ये है कि पूछेंगे कि क्यों कर रही है, तो इसका रीजन ये था कि जब मेरे बेटे को कान की मशीन के लिए डॉक्टरों ने बोला कि इसको कान की मशीन लगाओ, तो मेरे पास मैम मतलब मेरे जो पति हैं वो मजदूरी करते हैं, मैं घर पे रहती हूँ, तो मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं मशीन अफोर्ड कर सकूं, ले सकूं, तो जब मैंने गांव वालों से बात की, मैं गांव वालों के पास में गई, ज्यादातर अत्री जो परिवार है उनके पास, मैंने कहा भैया एक समस्या है, बोलते हैं हाँ बता तुझे क्या समस्या है, तो बोलने लगे कि मैंने बोला कि ऐसे मुझे कानों की मशीनें लेनी है पर उसका MRP जो वो 40,000 है, तो बोलते दिक्कत कहाँ आ रही है, तो मैंने कहा दिक्कत ये आ रही है कि मेरे पास पैसे नहीं, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है जो कि मैं इन मशीनों को ले सकूं, तो सब लोगों ने किसी ने 200 किसी ने 500 किसी ने 1,000 किसी मतलब मैक्सिमम मुझे सबने इकट्ठा करके 16 से 17 हजार इकट्ठा कर दिया। और दूसरा धन्यवाद देना चाहूंगी मैं निष्ठा करके एनजीओ है रकड़ रोड पे उनको, क्योंकि बाकी के जो अमाउंट था वो उन्होंने दिया था मुझे। तो इन दोनों परिवारों का और निष्ठा वालों का और पूरे गांव समस्त वासियों को मैं धन्यवाद करना चाहूंगी इस चीज के लिए। तो मेरा गांव जो है, जो मेरे गांव के लोग हैं, बहुत सपोर्टेड है, चाहे वो कपड़े हो, चाहे वो खाना पीना हो, चाहे बच्चों को लेकर कहीं जाना होता है या किसी भी चीज की समस्या पड़ती है, तो सबसे पहले मैं उन्हीं को ही इन्वॉल्व करती हूँ कि आइए और मेरी समस्या में शामिल होइए, और पूरा सपोर्ट करते हैं 100%।
1: तो देखा फिर आपने, देखा फिर आपने कि जब हम एकजुट हो जाते हैं तो फिर हम क्या नहीं कर सकते। ये तो बहुत छोटी सी बात है ना। रेडियो गुंजन धर्मशाला से ये स्पेशल कार्यक्रम आपने सुना, और आप दोनों का इंदु जी और माया देवी जी यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें बुलाया, सारी रेडियो गुंजन टीम का सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
1: और रुचिका का भी धन्यवाद जो कि कैमरा के उस पार खड़ी हैं आज, और वहां पर शशि जी रिकॉर्डिंग कर रही हैं। धन्यवाद।

0: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई समेत कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। दिन में 11 बजे जब लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया। विपक्ष के सदस्य इस संबंध में गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे थे। श्री बिरला ने विपक्षी सदस्यों से सदन के सुचारू संचालन में सहयोग करने की अपील की।
1: सदन में चर्चा हो, प्रश्नकाल हो और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होना चाहिए। ये विधेयक देश और राष्ट्र के साथ बहुत बड़े परिवर्तन लाने के विधेयक होते हैं, इस पे अच्छी चर्चा संवाद होना चाहिए। लेकिन कल बीएससी की मीटिंग में भी आग्रह किया, आज फिर आग्रह कर रहा हूँ कि जिस विषय पर आप छात्रों के विषय पर मांग कर रहे थे, सरकार संसदीय कार्य मंत्री ने कल बीएससी की बैठक में स्पष्ट रूप से कहा कि गृह मंत्री इस बात पर जवाब देने को तैयार, सदन चलना चाहिए।
0: राज्यसभा में भी ऐसी स्थिति देखने को मिली। दिन में 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर मंत्रियों ने अपने अपने मंत्रालयों के दस्तावेज सदन के पटल पर रखे। विपक्ष के हंगामे के बीच सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। केवल बीजेडी के डॉक्टर संतृप्त मिश्रा ने ही सार्वजनिक महत्व के मुद्दे उठाए। हंगामा जारी रहने के कारण सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने आज संसद परिसर में झारखंड में छात्रों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई के विरोध में मार्च निकाला। सांसदों ने आरोप लगाया कि सरकार के इस आश्वासन के बावजूद कि गृह मंत्री अमित शाह छात्र विरोध प्रदर्शनों पर प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार हैं, विपक्ष चर्चा से बच रहा है। एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक के बाद ये मार्च निकाला गया। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने विपक्ष पर जानबूझकर संसद का कामकाज बाधित करने का आरोप लगाया।
2: पेपर लीक को लेकर भी जो तमाम बातें हुई, सरकार ने हर मांग को स्वीकार किया, एक नया कड़ा कानून बनाया। गृह मंत्री जी के वक्तव्य को लेकर लगातार ये मांग करते रहे हैं और हमारी सरकार ने स्पष्ट किया है। माननीय गृह मंत्री जी सदन के अंदर अपने चर्चा भी करना चाहते हैं, अपनी बात भी रखना चाहते हैं, लेकिन ये सुनने के लिए तैयार नहीं है, चर्चा में भाग लेने के लिए तैयार नहीं है। इनका एक ही मकसद है कि सदन को बाधित करना है।
0: नई दिल्ली से भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर संसदीय कार्यवाही में बाधा डालने, चर्चाओं का रुख बदलने और दोहरा राजनीतिक रवैया अपनाने का आरोप लगाया। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में कल रांची में छात्रों के नेतृत्व में विधानसभा मार्च के दौरान झारखंड छात्र आंदोलन के नेता देवेंद्र नाथ महतो की तबीयत बिगड़ने के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। श्री महतो झारखंड विधानसभा के पास पुलिस लाठीचार्ज के दौरान घायल हो गए। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की ज्यादती और लाठीचार्ज के विरोध में आज झारखंड बंद का आह्वान किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज निर्वाचन आयोग से पश्चिम बंगाल की मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के दौरान मतदाताओं के नाम हटाए जाने से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई की। न्यायालय ने नियुक्त न्यायाधिकरणों द्वारा निपटाई गई अपीलों का विवरण देने को कहा। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की एसआईआर से संबंधित अपीलों के शीघ्र निपटारे की याचिका पर संज्ञान लिया। अगली सुनवाई 25 अगस्त को होगी। शहरी विकास विभाग के सचिव सत्येंद्र सिंह ने कहा है कि किफायती आवास व्यवस्था को योजना आधारित दृष्टिकोण से विकसित करके एक सतत व्यवस्था में बदलना होगा जो स्वामित्व और किराए सहित आवास के विकल्प प्रदान करे। नई दिल्ली में आज आयोजित किफायती आवास की पुनर्कल्पना योजना से सतत व्यवस्था तक विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन में उन्होंने ये बात कही। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 0.5% की कमी आई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 413 अंक गिरकर 78,130 पर और निफ्टी 133 अंक गिरकर 24,451 पर आ गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: कैसे?
4: कर्तव्य।
3: सड़क सुरक्षा का सबसे पहला और सबसे जरूरी पार्ट है कर्तव्य। ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने साथ साथ दूसरों के बारे में भी सोचें। अरे हाँ भाई साहब, अगर सड़क के बीचों बीच इस तरह से ट्रक छोड़ेंगे और चले जाएंगे तो पीछे से स्पीड में आ रही गाड़ी जो है ठोक देगी ना आपको। ये हमारा कर्तव्य है कि हम इस निर्धारित पार्किंग स्पॉट में ही गाड़ी को लगाएं, और अगर किसी कारण बीच सड़क में आपकी गाड़ी खराब हो जाती है तो हमेशा पार्किंग लाइट ऑन करें और वार्निंग ट्रायंगल गाड़ी से थोड़ी दूर जाकर के लग दें, ताकि आने वाला जो ट्रैफिक है उसे पता चले कि सामने गाड़ी रुकी हुई है।
5: समझ गए सर।
3: तो याद रखना, कैसे कर्तव्य निभाएंगे तभी तो दूसरों से अपेक्षा रख पाएंगे।

भक्ति हमें संकटों से लड़ना सिखाती है और हमारे वीर शहीदों का बलिदान हमें इस देश की मिट्टी से मोहब्बत करना सिखाता है। महादेव की जटाओं से बहती गंगा सी पवित्र है हमारी आजादी, जिसे बनाए रखना हम सब का संकल्प है। तो आइए सावन के इस पावन उमंग में महादेव को नमन करते हुए अपनी स्वतंत्रता का जश्न मनाएं। हाथों में थामे तिरंगा और गर्व से कहें, हम आजाद हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। आप सभी श्रोताओं को स्वतंत्रता दिवस और सावन के पावन मास की अनंत शुभकामनाएं। सुनते रहिए अपना पसंदीदा रेडियो स्टेशन रेडियो गुंजन

0: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था, उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: इतने बड़े कमाल की बात कही है कि भीड़ में खोना जरूरी नहीं है और ना ही गुरूर में जीना जरूरी है। जरूरी है तो बस एक चीज, अपने विचारों के साथ सही रहना। हर किसी के साथ मेल बिठाना समझदारी नहीं है, कभी कभी दूर रहना भी मन को शांति देता है। हमारी जिंदगी और आसान तब लगने लगती है जब हम अपनी जिंदगी में सही लोगों को, अच्छे लोगों को पहचानना सीख जाते हैं, है ना?
4: कहाँ चले
5: भैया साहब?
4: हमको मंडी जाना है। ऐसे क्या देख रही हो? अरे दहेज में स्कूटर आया है, ये बात पे इतराना जरूरी नहीं है, हमारा काम जरूरी है। अरे चार क्लास का पढ़ लिए, भाव खा रही हो? अंदर जाओ।
6: भाव कहाँ खाए, भाव तो दिए
4: हैं।
6: दहेज दिए हैं मतलब भाव दिए, खरीद लिया है आपके बेटे को। इज्जत से पूछेगा तो मिलेगा यूज करना, स्कूटर भी और बेटा।
7: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछे मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क को, अपने व्यापार को दे नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
8: बीबी एक बात बताओ, शादी से पहले जो मैं आपसे बातें किया करता था, अब उनमें से कौन सी बात आपको सच लगती है?
9: वही जो आप किया करते थे।
8: कौन सी?
9: कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ।

2 मेगाहर्ट्ज़ ते तुसी हो इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला दे नाल। मैं तुहाडी रेडियो दोस्त पिंकी ते मेरे नाल तुसी कार्यक्रम इंजॉय करना है आज पंजाबी गीतां दा कार्यक्रम। जी हां श्रोताओ, आओ सुनदे ने कार्यक्रम दा सब तो पहला पंजाबी गीत।

अगला पंजाबी गीत।

श्रोताओं, 91.2 MHz से तुसी बने हुए हो रेडियो गुंजन धरती। श्रोताओं, 91.2 MHz से तुसी बने हुए हो रेडियो गुंजन धर्मशाला दे नाल ते इंजॉय कर रहे हो पंजाबी गीतां दा कार्यक्रम।

दोस्तों मैं थोड़ी रेडियो दोस्त पिंकी ते मेरे नाल तुसी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हो पंजाबी की तादा कार्यक्रम रेडियो गुंजन धर्मशाला ते 91.2 मेगाहर्ट्ज़ ते।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
1: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: कैसे?
4: कर्तव्य।
3: सड़क सुरक्षा का सबसे पहला और सबसे जरूरी पार्ट है कर्तव्य। ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने साथ साथ दूसरों के बारे में भी सोचें। अरे हाँ भाई साहब, अगर सड़क के बीचों बीच इस तरह से ट्रक छोड़ेंगे और चले जाएंगे तो पीछे से स्पीड में आ रही गाड़ी जो है ठोक देगी ना आपको। ये हमारा कर्तव्य है कि हम इस निर्धारित पार्किंग स्पॉट में ही गाड़ी को लगाएं, और अगर किसी कारण बीच सड़क में आपकी गाड़ी खराब हो जाती है तो हमेशा पार्किंग लाइट ऑन करें और वार्निंग ट्रायंगल गाड़ी से थोड़ी दूर जाकर के लग दे, ताकि आने वाला जो ट्रैफिक है उसे पता चले कि सामने गाड़ी रुकी हुई है।
5: समझ गए सर।
3: तो याद रखना, कैसे कर्तव्य निभाएंगे तभी तो दूसरों से अपेक्षा रख पाएंगे।

भक्ति हमें संकटों से लड़ना सिखाती है और हमारे वीर शहीदों का बलिदान हमें इस देश की मिट्टी से मोहब्बत करना सिखाता है। महादेव की जटाओं से बहती गंगा सी पवित्र है हमारी आजादी, जिसे बनाए रखना हम सब का संकल्प है। तो आइए सावन के इस पावन उमंग में महादेव को नमन करते हुए अपनी स्वतंत्रता का जश्न मनाएं। हाथों में थामे तिरंगा और गर्व से कहें, हम आजाद हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। आप सभी श्रोताओं को स्वतंत्रता दिवस और सावन के पावन मास की अनंत शुभकामनाएं। सुनते रहिए अपना पसंदीदा रेडियो स्टेशन रेडियो।

0: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: इतने बड़े कमाल की बात कही है कि भीड़ में खोना जरूरी नहीं है और ना ही गुरूर में जीना जरूरी है। जरूरी है तो बस एक चीज, अपने विचारों के साथ सही रहना। हर किसी के साथ मेल बिठाना समझदारी नहीं है, कभी कभी दूर रहना भी मन को शांति देता है। हमारी जिंदगी और आसान तब लगने लगती है जब हम अपनी जिंदगी में सही लोगों को, अच्छे लोगों को पहचानना सीख जाते हैं, है ना?
4: कहाँ चले
5: भैया साहब?
4: हमको मंडी जाना है। ऐसे क्या देख रही है? अरे दहेज में स्कूटर आया है, ये बात पे इतराना जरूरी नहीं है, हमारा काम जरूरी है। अरे चार क्लास का पढ़ लिए, भाव खा रही हो? अंदर जाओ।
6: भाव कहाँ खाए, भाव तो दिए
4: हैं।
6: दहेज दिए हैं मतलब भाव दिए हैं, खरीद लिया है आपके बेटे को। इज्जत से पूछिएगा तो मिलेगा यूज करने। स्कूटर भी और बेटा,
7: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क को, अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
8: बीबी एक बात बताओ, शादी से पहले जो मैं आपसे बातें किया करता था, अब उनमें से कौन सी बात आपको सच लगती है?
9: वही जो आप किया करते थे।
8: कौन सी?
9: कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ।

कानवी देश मिलब तो मेगाहर्ट्ज़ पर ये तुहां सारें दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने मेजशी हाजिर होई यो कार्यक्रम ले करी माटी दी महक ताशुतों पहले तो तुहां सारें दा ही माटी दी महक कार्यक्रम दे सफर्च शशी दा प्यार भरा स्वागत है, प्यार भरा नमस्ते है। तुहां सारे ठीक ठाक होने न कने अपना जीना काम कार है से जरूर करा दे उन्हें ने कने अपना अपना रेडियो सेट जड़े से भी ऑन करी ले आना है, क्योंकि तुह सारे जो इंतजार रहेंदे कि कालू दिया दो बजते न कने कालू दिया तुह सारी इस कार्यक्रम दे सफर करने जुड़ते न, तो जरूर इंतजार जड़े से तुह वास्ते खत्म होंदे कने इसी कने बरखा का जड़ा माहौल है सभी बनया है कने तुह काम तो कुछ ही करा दे उन्हें न, क्योंकि बरखा जड़े से सारे कम्मा जो रोकी दी है कने थोड़ा दिया ठीक भी होंदा कि हाँ जो जड़ा समय है से रेस्ट करने जो मिली आंदा कने थोड़ा दिया अपनी फैमिली जो भी समय जड़े से यहाँ देंगे कने तो हाँ अपना अपना रेडियो सेट भी जरूर ऑन करी ले आना है या मोबाइल फोन सुना दे या रेडियो सुना दे, तो जरूर अगर नहीं किता तो जल्दी जल्दी करी लिया कने इस कार्यक्रम दे सफर करने जुड़िया। जुड़ने वास्ते जिहड़ा हंदा नंबर है सभी तुहां तक पहुँचाइंदे न, क्योंकि नंबर तुहां तक पहुँचाऊंगा ताई तो तुहां इस नंबर पर कॉल करी सकदे या टेक्स्ट मैसेज करी सकदे या व्हाट्सएप मैसेज करी सकदे। तो मुझे लगा था कि तुहां सारे नंबर जिहड़े से नोट करना शुरू होई होने न, नंबर है 701-8117091। तो इस नंबर पर तुहां कॉल करा या बाकी जड़े से मैं तुहां तक पहुँचाई तय करने जरूर अहां अपने कार्यक्रम का जड़ा आगाज है से करने एक प्यारे दे गीत करने, क्योंकि आगाज एक प्यारे दे गीत करने हुई तो कार्यक्रम का जड़ा सफ़र है से और भी प्यारा लगता है। तो जरूर अहां इस कार्यक्रम दे सफ़र जो प्यारा बनाते न इस प्यारे दे गीत कन्ने जरूर ये गीत तुहां तक हाँ जड़े से पहुँचाना ले है कने तुहां सारे भी इंतजार जड़े से जरूर करा दे उन्हें कि कालू दी यहाँ जड़ा गीत है या शुरुआत है से तुहां तक पहुँचाते न, तो जरूर इसी शुरुआत कन्ने हाँ कार्यक्रम का जड़ा आगाज है से करना है कने फिर बाकी दियाँ जड़ा गल्ला न से तुहां तक पहुँचानियाँ न।

बोला दिन रेडियो गुंजन धर्म शाला ते कने तो हाँ सारी इस वक्त कार्यक्रम सुना दिन अपनी रेडियो तो शशि कने इसी कने हाँ फिरी ते वापिस आई हूँ अपनी गलबात ऊपर कने तो हाँ सारे भी जरूर मेरी गलबात कने जुड़ी होने न कने जेड़ा गीत संगीत है उसका भी इंजॉय जड़े से लैते होने न क्योंकि तो सारे जो पता है कि गीत संगीत जड़े से अहां दी जिंदगी च बड़ी अहम भूमिका अदा करते हैं। कने आज कने दिने दी गल करी

0: भूमिका अदा करते हैं कन्याहदे जिड़ा श्रोता है न सभी समय अनुसार इस कार्यक्रम दे सफर च जुड़ते न कने अपनी पसंद का जिड़ा पहाड़ी गीत है लोक गीत है न तिना जो सुनते न पर कुथी ना कुथी अज ने दौर की अहाँ गल करिए जिड़ा पहाड़ी लोक गीत हैं या पहाड़ी जिड़ा लैंग्वेज है यहाँ की गल करिए या लोकल लैंग्वेज है अहाँ अपने आस पास दिखते न या अहाँ अपने घरे ची दिखते न तो कुथी ना कुथी बच्चों जो भी अहाँ क्या बोलते हैं न पहाड़ी भाषा से जड़े से गलबात नहीं करनी है तो हाँ सिर्फ जड़े से हिंदी या इंग्लिश से गलबात करनी है पर अपनी अगर अहाँ लोकल लैंग्वेज जो ही भूल जाते न या अपनी जड़ा लोकल लैंग्वेज है वह जो ही नहीं बोलते न तो कुथी ना कुथी अहाँ कुछ जड़ा मिस है से ज़रूर करते न तो इसी करने अहाँ दे पहले श्रोता अहाँ करने जुड़ चुके हो न कर दे तिना करने गलबात हेलो
1: हेलो
0: हेलो नमस्ते जी
1: नमस्ते मैडम जी
0: जी स्वागत है जी तुहांदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च ठीक ठाक है न
1: धन्यवाद मैडम जी ठीक ठाक मैडम जी सारे ठीक ठाक मैडम जी
0: जी हाँ बिल्कुल ठीक ठाक है जी तुहां कुथु ते बोला दे कने तुहांदा ना के है जी
1: कोठियां जलोट दी मैडम जी बोला जी सुनील कुमार जी
0: जी ता इस टाइम कोठियां जलोट दा मौसम कदे है जी
1: अच्छा मत मैडम जी मतलब राती दी बरखा लगी या कितने कितने बरखा लगी है
0: मैडम जी अच्छा ली थी कभी बरखा लगी हो
1: हां जी मैडम जी मूसलाधार बरखा लगी है
0: जी एथु दा मौसम भी यही है बरखा ही लगी वाली थी कभी
1: हां जी हम हाले ही पे ना कमानी मैडम जी
0: जी आज कुरल बैठे है ना जी
1: हां जी कुरल बैठे फिर कुरल लिया है ना
0: जी जी
1: जी
0: ता सुनील जी गल बात अहां करा देन संगीत दी ता तुहें क्या लगदा संगीत अहां दी जिंदगी च कितनी अहम भूमिका अदा करदा है
1: बड़ा जरूरी है मैडम जी
0: जी
1: जिया कोई टेंशन दे बंदा मैडम जी संगीत सुनी लेंदा ता मन कुछ होर हो जांदा मैडम जी
0: जी अच्छा गीत तुहां सुनी लेंदे न ता मन जेड़ा ऐसे थोड़ा देर चेंज हो जांदा है ना जी
1: चेंज हो जांदा मैडम जी
0: जी
1: हां जी
0: जी
1: कना बड़ा जरूरी ਬੁਲਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਡਮ ਜੀ
0: ਜੀ ਜੀ
1: ਹਾਂਜੀ ਮੈਡਮ ਜੀ
0: ਜੀ
1: ਜੀ
0: ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੁਣ ਅਸਤ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸੇ ਪਿਆ ਥਾ 9 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਥਾ ਨਾ ਜੀ ਅਸਤ
1: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਡਮ ਜੀ
0: ਵੀ ਉਠੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚਲੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਫਰੀ ਤੇ ਥੋੜੇ ਦੇ ਸੰਗਰਾਂਦੀ ਤਾਂ ਕਹਾਂ ਬੋਲੀ ਸਕਦੀ ਕਿ ਚੜ੍ਹਨੇ ਨਾ ਜੀ
1: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਡਮ ਜੀ
0: ਫਰੀ ਤੇ ਕਾਲਾ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨਾ ਜੀ
1: सुनील
0: जी आज तुहा कुंदिया गीत जेड़ा से सुनना पसंद करके
1: करनैल राणा दी आवाज ते गाना मैडम जी सुनी लियाओ माणुआ मिट्टी दे खलोने
0: जी सुनी लिया माणुआ मिट्टी दे खलोने
1: हां जी मैडम जी
0: जी जरूर ए फरमाइश तुहां तक पहुंचांदे जी जुड़ने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तुहांदा
1: धन्यवाद मैडम जी नमस्ते जी
0: जी नमस्ते जी तो श्रोताओं तुहां सारे इस वक्त कार्यक्रम सुना देना अपनी रेडियो दोष शशि कन्ने कन्ने आहंदे जेड़ा लिसनर एंड सभी यहां जो फेसबुक ते माध्यम ने भी दिखा दे न ता इंदु जी जो भी शशि दी ओर ते प्यार भरा नमस्ते है कने तो हाँ ठीक ठाक होने न कने जरूर तो हाँ इस कार्यक्रम जो सुना दे न दिखा दे भी एन उस वास्ते भी तो हाँ दा बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तशो तो इसी कने हाँ फिरी ते अपने कार्यक्रम दे सफर जो अगे बढ़ाना है कने जेड़ा फरमाइशा दा दौर है सभी तो हाँ तक पहुँचाना है क्योंकि फरमाइशां दा जिहड़ा दौर है से थमना नहीं चाहिए था, क्योंकि अगर गीत संगीत कुछ ना कुछ थमी है तो थोड़ी देर जिहड़ा गल बात है से फिक्की लगती है। गीत संगीत चलू जुड़ी आते हैं तो

0: श्रोताओं तुम सारे सुनिया ये प्यारा दिया गीत प्यारी दी फरमाइश ये फरमाइश अह तक पहुंची हुए कोठियां जलोट ते कने तिना दा ना वे सुनील जी तो जरूर सुनील जी तक अहां ये फरमाइश ये भजन पहुंचाया कने तुहां सारिया भी इंजॉय कीता। इसी कने अहां फिरी ते वापिस अपनी जेड़ा गलबात है तेह पर पहुंची हुए न कने तुहां सारे भी रेडियो सेट करने जुड़े होने न कने सुना दे होने न कने अपने जेड़ा काम कार हैं सभी जरूर करा दे होने न काम कार भी जरूरी हैं कने थोड़ा दिया जेड़ा गीत संगीत है सभी सुनना हाँ वास्ते जरूरी हैं। अगले जेड़ा श्रोता न सभी जुड़ चुके न कर दिन तिना कने गल बात। हेलो
1: हेलो नमस्कार मैम।
0: हेलो
1: हेलो नमस्कार मैडम।
0: हेलो
1: हेलो नमस्कार मैडम।
0: नमस्ते जी स्वागत है जी तुहांदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। ठीक ठाक है ना?
1: बारिश लगी है बहुत ज्यादा।
0: हेलो
1: हेलो बारिश लगी है
0: श्रोतो कॉल जेड़े से डिस्कनेक्टेड हुई तो जरूर अहां फ्री ते वापिस अपनी गलबात पर आई आंदे ना क्योंकि गलबात करना भी अहां वास्ते जरूरी है कने जेड़ा तुहंदिया फरमाइश है ना सभी जरूर तुहां तक पहुंचाना जरूरी है। तो गलबात अहां करा दे ना संगीत दी तो संगीत दी गलबात अहां ये करा दे थे कि संगीत जेड़े इसके फायदे अहां वास्ते बड़े ज़्यादा हैं। कई बार होंदा ना कि मन उदास है या मन अहां च तनाव है या कुछ ना कुछ क्योंकि जिंदगी का सफर है उतार चढ़ाव जेड़ा ना से हमेशा चले रहते तो हर कुसी दी अपनी अपनी जेड़ा पसंद है से अहां बोली सकते कि हर कुसी दी अपनी अपनी पसंद है। तो जालू अहां गीत संगीत सुनना शुरू कर दे ना तो अहां दा जेड़ा मन है सभी कुछ ना कुछ हल्का जेड़ा है से हो जाता है कने इस टाइम तुहां भी अपना जेड़ा मन है से हल्का जरूर करा दे उन्हें ना क्योंकि अपनी अपनी पसंद दे गीत जेड़ा ना से तुहां सारी इस कार्यक्रम दे सफर च सुनी सकते। सुनने वास्ते जेड़ा अहां दा नंबर है से फ्री ते तुहां तक पहुँचाइंदे न क्योंकि नंबर अहां बार बार तुहां तक इस वास्ते पहुँचाते न कि तुहां गलबात भी करी सकन कने जेड़ा तुहां दियां फरमाइश है न सभी जरूर अहां तुहां तक पहुँचाई सकन। तो नंबर फ्री ते नोट करी लिया अगर तुहां नोट नहीं कीता क्योंकि नंबर नोट करगे ताई तो तुहां इस नंबर पर कॉल कर सकते या टैक्स मैसेज कर सकते या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते। नंबर है 7018117091 तो ये नंबर तुहां तक पहुँचाई तो है कने तुहां सारी जरूर इस नंबर पर कॉल करा कने मौसम दी ओर अगर अहां अपनी नज़र दौड़ाते न तो अहां हमेशा बार बार यही बोलते न कि मौसम दे अनुसार ही यहाँ अपने जेड़ा काम मन चाहे से घूमना फिरना है चाहे से घरे दे काम मन चाहे से खेतीबाड़ी दे काम मन अगर हाँ मौसम दे अनुसार करते न या मौसम जो दिखी करी करते न क्योंकि अपना जेड़ा ख्याल है सभी रखना ज़्यादा ज़रूरी है अपना ख्याल रखी करी यहाँ बाकी जेड़ा काम मन से करी पाते न। तो ज़रूर मौसम जेड़ा से अधिकतम तापमान की गल करिए 21 डिग्री सेल्सियस ते 24 डिग्री सेल्सियस जेड़ा न्यूनतम तापमान है सै 17 डिग्री सेल्सियस ते 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने वाला है कने बरखा तो तुहां दिखी लगी हुई है कने बरखा का आनंद भी लै दे होने न कने इस कार्यक्रम का जेड़ा आनंद है सभी जरूर लै दे होने न। तो जरूर अहां फ्री ते कार्यक्रम के सफर जो अगे बढ़ाते न कने तुहां जो लेकर चलते न अगली फरमाइश की ओर सुनते नहीं सब प्यारी दिया फरमाइशा जो तुह सारी भी इंजॉय करा।
2: पति से जिद करती है मगर पति किसी ना किसी

0: कानवी दशमलव 2 MHz पर ए तोहा सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। इसी कन्ने अगले जेड़ा श्रोता न तिना कन्ने कर देना गल बात। हेलो
1: हेलो
0: हेलो हेलो, नमस्ते जी।
1: नमस्ते आंटी।
0: नमस्ते जी, स्वागत है जी तोहां दा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। ठीक ठाक है न?
1: अंजी
0: जी, तोहां कुत्थों ते बोला दे, कन्ने तोहां दा नां के है जी?
1: मेरा नाम जतिन है, कन्ने मैं बागनी ते है
0: जी। बागनी ते बोला दे।
1: अंजी
0: जी, ता जतिन जी, क्या काम कार तुहां करा दे, क्या काम कार लगाया तुहां, आज क्या करा दे?
1: मैं तो बच्चा, मैं तो काम कार नहीं लगाया, मैं तो पढ़ा
0: जी। अच्छा, पढ़ा दे ना।
1: अंजी
0: जी, ता क्या पढ़ाई करा दे जी तुहां आज?
1: संस्कृत ते दा काम करा दा
0: जी। अच्छा, संस्कृत दा जेड़ा काम मैं से करा दे जी। ता आज तुहां कुंदिया गीत जेड़ा इसे सुनना पसंद करके?
1: रंग बिरंगा जहाज
0: जी। अच्छा, रंग बिरंगा जहाज सुनना है तुहां?
1: अंजी
0: जी, जरूर तुहां दी फरमाइश तुहां तक पहुंचा दें जी। चुनने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तुहां दा।
1: अंजी
0: जी, ए है तुहां सारियां दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। तुहां सारी इस वक्त कार्यक्रम सुना देना अपनी रेडियो दो शशि कहने, तो जरूर अहां जेड़ा गलबात करा देन से करा देन संगीत दी। अहां दे जीवन च संगीत दा कितना ज़्यादा महत्व है, तो श्रोताओं संगीत दी अहां पहले भी जेड़ा थोड़ी बहुत गल ऐसे कीती है, कन्नै जेड़ा अहां दे श्रोता ने सभी अपनी पसंद दा जेड़ा गीत है, संगीत है, लोक गीत है, से जरूर इस कार्यक्रम च तिना तक अहां पहुँचा दे भी हैं, कन्नै अपनी जेड़ा फरमाइश है न सभी जरूर अहां तक रखा दे न। तो श्रोताओं, अहां दा थोड़ा जिहा मन उदास होंदा है तो अहां सोचदे न कि जेड़ा गीत संगीत है से सुनी लीए। गीत संगीत कुथी ना कुथी जेड़ा अहां दा मन उदास है उसजो थोड़ा जिहा खुशी दे माहौल च बदलींदा है, कन्नै हर कुसी दी अपनी अपनी पसंद होंदी। तो इसी कन्नै अगले जेड़ा श्रोता न तिना जो भी लैन देन कॉल पर करते हैं तिना कन्ने गल बात। हेलो
2: हेलो, नमस्ते।
0: नमस्ते जी, स्वागत है जी तुहां दा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। ठीक ठाक है न?
2: अंजी ठीक ठाक, तू बोला
0: जी? हाँ बिल्कुल ठीक ठाक है जी।
2: अच्छा
0: जी, तुहां कुत्थों दे रहने वाले ने, कन्ने तुहां दा नां की है जी?
2: मैं नोरबलिंग का अंजना
0: जी। अंजना जी, बड़े दिन बाद तुहां रेडियो गुंजन धर्मशाला जो याद कीता ना जी?
2: अंजी अंजी, कर दी पहले पर बिजी ओदे विच सेवा ता तू लगी होना कम में कने बस
0: जी। अच्छा, थोड़ी देर जेड़ा लाइफ है से बिजी दे चली गई ही ना जी?
2: अंजी अंजी
0: जी, उन तो फ्री है न कि काम ही करा दे हल्दी भी कुछ?
2: ना ना फ्री है, बरखा लगी हो बैठे हो, थोड़े चोल दे लाए बनाना, मैंने चोला बना लेंदी, कॉल भी कर लेंदी
0: जी। अच्छा, चोला बना दे तो तुहां गाना भी सुने होना इससे पहले?
2: अंजी अंजी, सुनिया सुनिया, ताए दे मैंने कीते फोन, मेरे मैं भी कर दी, मैं लगी चोला बनाना
0: जी। तो तुहां भी छज्जे दे पटाकियां ला दे ना जी?
2: पटाके ला दे जी, मैं ठंडी रख दे मौसम, बरखा बुरखा तो गाने ठंडी रखने तक
0: जी जी। आज तो बरखा का मौसम है, तो चलो जेड़ा घरे दे काम मन से अहां करी सकते ना जी?
2: अंजी अंजी
0: जी, ता अंजना जी और नोईता जी, गीत संगीत पर भी अहां गल बात करा दे, तो तुहें क्या लगदा संगीत सुनने दे क्या फायदे न?
2: फायदे हो, थोड़ा मूड फ्रेश हो जांदा, थोड़ा
0: जी जी
2: अंजी लगी रहंदा, मेरा तां बैग लगी पोंदा 5 बजे गाने भजन, किसे बाद गाने खबरा न्यूज दिया।
0: अच्छा, 5 बजे तो हाँ रेडियो सेट जेड़ा ऐसे ऑन करीन देन?
2: 5 बजे लगे लगाई जंदी मैं तो रेडियो
0: जी। तो फिर शामी कितने बजे तक सुन दे तो हाँ रेडियो?
2: शामी सुन दे आप 9:30 बजे तक।
0: 9 बजे तक सुन दे रहन दे
2: जी। अंजी अंजी,
0: ता तो खरी रौनक लगाई हुंदी तो हाँ घर है ना जी?
2: अम्मा कदर है गाने रेडियो सुन देना
0: जी जी। तो रेडियो का तो फायदा ही बड़ा है ना जी?
2: अंजी,
0: ना टाइम वेस्ट होंदा, अपने काम भी यहाँ कर लेंदे, कन्ने रेडियो भी सुनी लेंदे कन्ने कन्ने।
2: अंजी, दो काम हो जांदे, गाने सुनने आने कन्ने काम भी हो जांदा
0: जी, गाने भी कन्ने कुछ जानकारियां होंदियां सभी सुनी,
2: जानकारियां बड़ी सुन लेंदियां
0: जी जी। ता अंजना जी, आज तुहां कुंदिया गीत सुनना पसंद करगी?
2: गीत सुनाए दिया तुहां इंदू नागे दा।
0: जी, इंदू नागे दा गीत सुनना है तुहां?
2: अंजी
0: जी, जरूर। ये भजन तुहां तक पहुंचा दें जी। जुड़ने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तुहां दा।
2: ठीक है जी, थोड़ा भी धन्यवाद
0: जी। तो श्रोताओं, तुम सारे इस वक्त कार्यक्रम सुना देना अपनी रेडियो दो शशि कन्ने। इसी कन्ने हम अपने कार्यक्रम दे सफर जो अगे बढ़ाते न कने तुहां जो लेकर चलते न अगले फरमाइश की ओर। सुन दिन इस प्यारी दिया फरमाइशा जो प्यारे दे भजने जो।

तो श्रोताओं तो सारे सुनिया ये प्यारा दिया गीत प्यारी दी फरमाइश। इसी कन्या हाँ फिरी ते अगे बढ़ते हैं कन्या अगली जेड़ा फरमाइश है से तुह तक पहुँचाते हैं। थोड़ा दिया मोबाइल और दी नज़र दौड़ाते हैं क्योंकि जेड़ा श्रोता न से यहाँ जो व्हाट्सएप मैसेज भी करा दे न टेक्स्ट मैसेज भी करा दे न ते फरमाइश यहाँ तक पहुँची हुए टेक्स्ट मैसेज के थ्रू। तिना दा नाव है अंजलि जी कने से रहने वाले न योल ते तो ज़रूर तिना तक कहाँ आएगी ते फरमाइश पहुँचा दे न तो सारे भी इंजॉय करा।

तो श्रोताओं तुम सारे इस वक्त कार्यक्रम सुना देना अपनी रेडियो दो शशि कन्ने इसी कन्ने तुम सारे सुनिया ही प्यारा दिया गीत प्यारी दे फरमाइश समय दी ओर नज़र दौड़ाइए तो समय जड़े से अपनी रफ्तार लेकर चले तो समय के अनुसार अहाँ भी चलना है थोड़ा दिया अगे बढ़ना है कन्ने अगली जड़ा फरमाइश है से तुम तक पहुँचा देना क्योंकि श्रोता जड़ा न से जरूर इंतजार करा देना अगली जड़ा फरमाइश है से तुह तक पहुँचा देना।

तो श्रोताओं तो सारे कार्यक्रम सुना दे थे अपनी रेडियो दोस्त शशि करने ने इसी करने तो सारे इस कार्यक्रम का जेड़ा इंजॉय है से लै दे थे, पर इस कार्यक्रम का जेड़ा सफर है से तुह तक रेंदे 2-3 बजे तक। तो हम समय जेड़ा से अह जो बोला दे कि तुह अनुमति जेड़ा है से जरूर ले लिया, तो जरूर तुह सारी अपनी रेडियो दोस्त शशि जो दिया अनुमति कने ने सुनते रहे अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला गूंज अपनी पंडी।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
1: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: कैसे?
4: कर्तव्य।
3: सड़क सुरक्षा का सबसे पहला और सबसे जरूरी पार्ट है कर्तव्य। ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने साथ साथ दूसरों के बारे में भी सोचें। अरे हाँ भाई साहब, अगर सड़क के बीचों बीच इस तरह से ट्रक छोड़ेंगे और चले जाएंगे तो पीछे से स्पीड में आ रही गाड़ी जो है ठोक देगी ना आपको। ये हमारा कर्तव्य है कि हम इस निर्धारित पार्किंग स्पॉट में ही गाड़ी को लगाएं, और अगर किसी कारण बीच सड़क में आपकी गाड़ी खराब हो जाती है तो हमेशा पार्किंग लाइट ऑन करें और वार्निंग ट्रायंगल गाड़ी से थोड़ी दूर जाकर के लग दें, ताकि आने वाला जो ट्रैफिक है उसे पता चले कि सामने गाड़ी रुकी हुई है।
5: समझ गए सर।
3: तो याद रखना, कैसे कर्तव्य निभाएंगे तभी तो दूसरों से अपेक्षा रख पाएंगे।

गंगा से पवित्र है हमारी आजादी, जिसे बनाए रखना हम सब का संकल्प है। तो आइए सावन के इस पावन उमंग में महादेव को नमन करते हुए अपनी स्वतंत्रता का जश्न मनाएं। हाथों में थामे तिरंगा और गर्व से कहें, हम आजाद हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। आप सभी श्रोताओं को स्वतंत्रता दिवस और सावन के पावन मास की अनंत शुभकामनाएं। सुनते रहिए अपना पसंदीदा रेडियो स्टेशन रेडियो गुंजन धर्म।

0: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: इतने बड़े कमाल की बात कही है कि भीड़ में खोना जरूरी नहीं है और ना ही गुरूर में जीना जरूरी है। जरूरी है तो बस एक चीज, अपने विचारों के साथ सही रहना। हर किसी के साथ मेल बिठाना समझदारी नहीं है, कभी कभी दूर रहना भी मन को शांति देता है। हमारी जिंदगी और आसान तब लगने लगती है जब हम अपनी जिंदगी में सही लोगों को, अच्छे लोगों को पहचानना सीख जाते हैं, है ना?
4: कहाँ चले?
5: वही सब,
4: हमको मंडी जाना है। ऐसे क्या देख रही हो? अरे दहेज में स्कूटर आया है, ये बात पे इतराना जरूरी नहीं है, हमारा काम जरूरी है। अरे चार क्लास कहाँ पढ़ लिए, भाव खा रही हो? अंदर जाओ।
6: भाव कहाँ खाए, भाव तो दिए
4: हैं।
6: दहेज दिए हैं मतलब भाव दिए, खरीद लिया है आपके बेटे को। इज्जत से पूछेगा तो मिलेगा यूज करने, स्कूटर भी और बेटा।
7: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछे मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क को, अपने व्यापार को दे नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क
8: 91.2 MHz पर हम बोल रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से। श्रोताओ, कार्यक्रम है गीत सुहाने नए पुराने और आज इस कार्यक्रम में आपके साथ हूँ मैं, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

गीत सुहाने नए पुराने, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं मेरे साथ। मैं हूँ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति और आप हमें सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो, रेडियो गुंजन धर्मशाला। फ्रीक्वेंसी है 91.2 FM। गीत सुहाने नई पुरानी कार्यक्रम में आपके साथ हूँ मैं, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति।

अपने रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहानी नई पुरानी 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

गीत सुहाने नई पुरानी 91.2 MHz पर आप सुन रहे हैं ये कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज आपकी रेडियो होस्ट हूँ मैं ज्योति पठानिया।

गीत सुहाने नए पुराने, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं मेरे साथ। मैं हूँ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति और आप हमें सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो रेडियो गुंजन धर्मशाला, फ्रीक्वेंसी है 91.2 FM। ये सुहानी नई पुरानी कार्यक्रम में आपके साथ हूँ मैं, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति।

आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो रेडियो गुंजन धर्मशाला, फ्रीक्वेंसी है 91.2 FM। ये सुहाने नए पुराने कार्यक्रम में आपके साथ हूँ मैं आपकी रेडियो होस्ट ज्योति।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुड़कुड़दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
1: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: कैसे?
4: कर्तव्य।
3: सड़क सुरक्षा का सबसे पहला और सबसे जरूरी पार्ट है कर्तव्य। ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने साथ साथ दूसरों के बारे में भी सोचें। अरे हाँ भाई साहब, अगर सड़क के बीचों बीच इस तरह से ट्रक छोड़ेंगे और चले जाएंगे तो पीछे से स्पीड में आ रही गाड़ी जो है ठोक देगी ना आपको। ये हमारा कर्तव्य है कि हम इस निर्धारित पार्किंग स्पॉट में ही गाड़ी को लगाएं, और अगर किसी कारण बीच सड़क में आपकी गाड़ी खराब हो जाती है तो हमेशा पार्किंग लाइट ऑन करें और वार्निंग ट्रायंगल गाड़ी से थोड़ी दूर जाकर के लग दें, ताकि आने वाला जो ट्रैफिक है उसे पता चले कि सामने गाड़ी रुकी हुई है।
5: समझ गए सर।
3: तो याद रखना, कैसे कर्तव्य निभाएंगे तभी तो दूसरों से अपेक्षा रख पाएंगे।

भक्ति हमें संकटों से लड़ना सिखाती है और हमारे वीर शहीदों का बलिदान हमें इस देश की मिट्टी से मोहब्बत करना सिखाता है। महादेव की जटाओं से बहती गंगा सी पवित्र है हमारी आजादी, जिसे बनाए रखना हम सब का संकल्प है। तो आइए सावन के इस पावन उमंग में महादेव को नमन करते हुए अपनी स्वतंत्रता का जश्न मनाएं। हाथों में थामे तिरंगा और गर्व से कहें, हम आजाद हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। आप सभी श्रोताओं को स्वतंत्रता दिवस और सावन के पावन मास की अनंत शुभकामनाएं। सुनते रहिए अपना पसंदीदा रेडियो स्टेशन रेडियो।

0: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर।

0: www.gov.in। हर घर सूर्य घर।
1: इतने बड़े कमाल की बात कही है कि भीड़ में खोना जरूरी नहीं है और ना ही गुरूर में जीना जरूरी है। जरूरी है तो बस एक चीज, अपने विचारों के साथ सही रहना। हर किसी के साथ मेल बिठाना समझदारी नहीं है, कभी कभी दूर रहना भी मन को शांति देता है। हमारी जिंदगी और आसान तब लगने लगती है जब हम अपनी जिंदगी में सही लोगों को, अच्छे लोगों को पहचानना सीख जाते हैं, है ना?
2: कहाँ चले
3: भैया साहब?
2: हमको मंडी जाना है। ऐसे क्या देख रही हो? अरे दहेज में स्कूटर आया है, ये बात पे इतराना जरूरी नहीं है, हमारा काम जरूरी है। अरे चार क्लास का पढ़ लिए, भाव खा रही हो? अंदर जाओ।
4: भाव कहाँ खाए, भाव तो दिए
2: हैं।
4: दहेज दिए हैं मतलब भाव दिए, खरीद लिया है आपके बेटे को। इज्जत से पूछेगा तो मिलेगा, यूज करो। स्कूटर भी और बेटा,
5: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछे मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क को, अपने व्यापार को दे नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
6: बीबी एक बात बताओ, शादी से पहले जो मैं आपसे बातें किया करता था, अब उनमें से कौन सी बात आपको सच लगती है?
7: वही जो आप किया करते थे।
6: कौन सी?
7: कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ।

0: नमस्कार श्रोताओं, एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून कर रहा हो रहा हूँ। सचिन कपूर हाजिर हो चुका कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा लेकर। बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है सभी होने वाले रहा सभी श्रोतागण रहा। कैसे तो है सब, उम्मीद करनो तो सब खरे भूणे और मस्त भूणे, तंदुरुस्त भूणे हिन। मस्त रहना तंदुरुस्त रहना भी बहुत ज़रूरी है श्रोताओं लाइफ में, है ना, क्यों कि इंसान मस्त तंदुरुस्त रही करी के असो जिंदगी व्यतीत कर सकता है। दुख परेशानी मंचता इंसान के असो रोजाना टुटंदा बजदा और श्रोतों अपने आप जो बीमारी में पंदा है, बीमारी में के असो ग्रसित पंदा है। और अगर तो है रोजाना के असो श्रोतों रोजाना के असो चीज़ा कर दे हैं, यानी कि दुख बीमारी जो किया, दुख बीमारी री किनारी किया सो ध्यान ना करी करी, दुख तकलीफ री किनारी ध्यान ना करी करी किया सो खुश रहन देन तो बहुत ज़रूरी है। अक्सर बलनो शोतों खुश रहे खुश रहना, लेकिन कई बार किया सो हालात इस प्रकार रहे बनी गंदे, सिचुएशन इस प्रकार री बनी गंदी इंसान रे जीवन में कि इंसान ना चाहते भी किया सो दुखी बुझ गंदा, फ्रस्ट्रेट बुझ गंदा है। और ना चाहते भी बहुत सारी गलत आई होगी कि ना सो तस्यू फेस करना पैंती है, है ना। बल देना एक छोटी ती गलती री सजा के सो अक्सर बड़े मुड़े गंदे ज़्यादा मुड़े गंदे शोतों कस भी सिचुएशन में कि सो कोई भी सिचुएशन के सो स्थिर ना रहेंदे, ये तो प्रकृति व नियम है शोतों, है ना, कि कोई भी सिचुएशन अगर तुंदी लाइफ में आए हाँ तो सो स्थिर ना रहने हाँ। बेशक तुंदी लाइफ में बड़ी खुशी आई ना तो सो स्थिर ना रहनी, सो बदलनी जरूर ना। बेशक तुंदी लाइफ में बड़ी मुसीबत आई ना तो सो भी स्थिर ना रहनी, बेशक तुंदी लाइफ में बड़ी ज़्यादा दिक्कत आई ना तो सो भी स्थिर ना रहनी, सो भी किया सो बदलनी किया ना सो जरूर है शो तो। इस प्रकार हो गया किया सो असू भी बदलना जरूर हा, यानी कि असू भी तू सभी हो लेकर गाना हाँ शोतों इस प्यारे दे गीता री किनारी और गीता तो बात शोतों तू सो गया है जरूर शेयर कर ले साझा कर ले। आज रखना वैसे पूरा दिन के असो ई वाती थो कि असो बरखा लग रही और काफ़ी तेज तरार बरखा गया सो ई वाती थो भोए हा शोतों। चलिए जी अह कार्यक्रम में हगूँ बढ़ दहीन और कुछ एक
1: उसकी एनर्जी भरी लाइफ के लिए सिर्फ साधारण
0: कार्यक्रम मंच के श्रोतों सो वह है प्यारे दे गीत के सो तू सभी जरूर सुनन देन, है ना, आगाज कर लेन देन गीता रह श्रोतों और आगाज तो बाद फिर अन्य गीत अन्य जानकारी की सो तू सो गया है जरूर शेयर कर ले साझा कर ले। और आइया फिलहाल हुंडे ने प्यार दिया गीत तंदे सभी रे रेडियो सेट में गूंज अपने बन रहे और गूंज प्यारे प्यारे श्रोता रहे।

0: श्रोतो एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर वेडी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून करो और कार्यक्रम आरजे सचिन कपूर सो के बिल्कुल लाइव होने कर देने अपने अपने वेडियो सेट माता बहुत बहुत स्वागत अगमो के फिर सभी होने वाले रहा सभी श्रोता गण रहा कैसे तो है सब ठीक भूण है चलिए ता फिलहाल है चल दें और कुछ जानकारी रहा पिटारा किया सो जरूर खोल दें श्रोतो सभी पहले तो धर्मशाला रहा मौसम क्या बोल दे इस समय सो बुझी लेंदे हिन ता गल करिए श्रोतो ता इन द अगले श्रोता के सो असोगे कनेक्ट बुझु कर दे हिन और पूछ दें कौन बल्लू दें और कड़ी थो बल्लू कर दे हिन। नमस्कार जी।
1: नमस्कार जी।
0: नमस्ते जी। नमस्ते
1: और जी क्या हाल है? ठीक है ना?
0: बहुत बढ़िया जी। तो है बल्ले तुंदे के हाल चाल ठीक ठाक?
1: बस बढ़िया ही बरखा लग रही है।
0: अच्छा हाँ जी बरखा तो ये रात यार ही लग रही है ना जी।
1: हाँ रात ही है पूरी बरखा हो
0: जी। जी
1: वो तो ठीक है लग रही है को बारह बजे बरखा दिन आ रही है।
0: हाँ जी हाँ जी।
1: हाँ
0: पर जी रात किनी के लग रही तो सो अलिकैली बिना भाई शांत ना बोया
1: ना लग रही थोड़ दी हटी अब फिर चढ़िया बदल।
0: हाँ जी हाँ जी। अच्छा जी जनाब कौन बल्लूंदे और कड़ी थो बल्लूंदे?
1: थात्री में।
0: अच्छा ज्ञान चंद जी थात्री में बल्लूंदे।
1: हाँ जी जी।
0: और राजीव बाजी सब
1: बस ठीक है दया तुम दी सब।
0: अच्छा
1: हाँ जी
0: जी कौन दिन की थोड़े चंद दिन पहले तो ये दस दिया
1: हवाई दिया की खड़ा दिया कोई चाननी हवाई दिया चाननी था।
0: अच्छा चाननी।
1: हाँ जी हाँ जी
0: चलिए ठीक है जी आज जरूर होना ले तू सो अच्छा नहीं की
1: ठीक है जी। ठीक है धन्यवाद जी।
0: धन्यवाद जी।
1: ठीक
0: एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर है वेड़ी गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा गैन सो चल रही श्रोताओं इस समय वेदर की है सो 20 डिग्री सेल्सियस रे आसपास है ना मेरी गल करूँ तो 93% किया सोना में यहाँ श्रोताओं रहे श्रोताओं याद एक्सीडेंट वे केसेस के अनुसार हिमाचल प्रदेश में आए दिन बढ़ू कर देना है जिनकी तुस हो गया दिन साझा भी करे थी है आंकड़े तो धर्मशाला री गल करूँ श्रोताओं कांगड़ा जिला वे अपने धर्मशाला री गल करूँ तब पिछले 3 वर्ष में कुल 945 सड़क हादसे के अनुसार दर्ज हुए हैं जो सिर्फ और सिर्फ दर्ज हुए हैं और जो दर्ज न हुए सो लग है नहीं यानी कि 945 सड़क हादसे के अनुसार दर्ज हुए हैं श्रोतो जति में से 2022 में 443 हुए 2023 में 295 हुए 2024 में 226 दुर्घटनाएं शामिल हैं शतों रहे जो धर्मशाला कौन सी एजेंसी है ठेरे अंडर जो सड़क हादसे हुए ना पिछले 3 साल में 100 आंकड़े हूँ तो सोगे बयां करूँ करता हा शतों राहत रही गल है कि हिमाचल प्रदेश पुलिस कड़े नियम रे कारण के असो धर्मशाला में पूरे कांगड़ा क्षेत्र में सड़क हादसे रा ग्राफ के असो लगातार गिरावट रही और के असो इच्छु करता है अन्यथा हर घर थो अख चिराग के शतों सो बुझू करता है और बुझदा भी हा ये आऊँ सिर्फ धर्मशाला रे गल करूँ करता अगर आऊँ हिमाचल रे गल करूँ तो रोज़ाना करखन करखा गया सो वह सब जान दिन कि सड़क हादसा गया सो जरूर बुझु करदा शतों पहाड़ी रास्ते पर सुरक्षित ड्राइविंग रे प्रति मनु जो जागरूक भूना के सो बहुत ज़्यादा जरूरी है शतों सड़क सुरक्षा और पहाड़ी ड्राइविंग पर एक विस्तृत ज्ञान बुना अपने आप में किया सो बहुत अहम है शतों बहुत जरूरी है शतों है ना जी और पूरी जानकारी सड़क सुरक्षा और सुरक्षित पहाड़ी ड्राइविंग ये तो सुबह है जरूर दस ले श्रोताओं तो सब बन रहे समय आरजे सचिन कपूर सो की कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा होनू कर दें श्रोताओं तो लेके चल दें तुसु इस प्यारे दे गीतारी किनारी और फिर तथों बाद अन्य जानकारी तो होगी जरूर शेयर कर ले और साथ ही साथ जो आज का टॉपिक है इस टॉपिक जो पूरा तुसु होगी बयां कर ले श्रोताओं

फिलहाल लेके चलते तू सब भी जो चंदनी की तारी फरमाइश किया सो बल्ले अशोतों और सुनील राणा द्वारा गौराए गीत था। लेकिन चलते तू सब भी जो सभी श्रोता जो इस गीतारी किनारी और बल देने श्रोताओं की अक्सर बलो कि अगर सब कुछ मुड़ेगन जिंदगी माँ तो तमन्ना कठेरे बंदे, अगर सब कुछ ही मुड़ेगन जिंदगी माँ तो तमन्ना कठेरे बंदे, कुछ अधूरी ख्वाहिश है ता जिंदगी जीने रखी असो मजा दें दे इन श्रोताओं की, कुछ अधूरी ख्वाहिश है न सो बून है ना, सो ही तो जिंदगी हाँ जीने रहा मजा दें दें छो तो। फिलहाल लेकिन चलते तू सब भी जो इस गीतारी किनारी बने रहा रेडी गुंजन धर्मशाला सोगी, गूंज अपने पन रे और गूंज प्यारे प्यारे श्रोता रे।

शोधो एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर वेडी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून की तो ऐसे भी ट्यून कर रहा और हम सचिन कपूर रखे जो कि ये प्रैक्टिस करना पे होंगे ची है वजह फिर गुड इवनिंग धर्मशाला था बिल्कुल ततिमा भी तुसु मुंजो होना लेकिन ततिमा हिंदी अपनी मातृभाषा हिंदी में होना है। चलिए जी फिलहाल है अपनी बोली में अपने डायलैक्ट में किया सो बल्लू कर देन और बड़ा खुशी होंगी है शोधों अपने डायलैक्ट में बलना जानकारी देना मनु तक जानकारी पहुँचाना मनु जो जागरूक करना सतर्क करना है ना बहुत खुशी होंगी। बहरहाल यह गल करूँ कर दिन एक्सीडेंट रोड एक्सीडेंट रही शोधों तो आऊँ दसना चाहता तुम सभी जो कि इंदे धर्मशाला में और पूरे हिमाचल प्रदेश में के श्रोताओं सो अपनी प्राकृतिक सुंदरता वास्ते के सो इंदा धर्मशाला जाने गंदा हा इंदा हिमाचल प्रदेश के सो जाने गंदा हा श्रोताओं है ना लेकिन एक खूबसूरती पहाड़ री खूबसूरती की सो बेहद खूबसूरत पहाड़ है नेड़ी श्रोताओं लेकिन बेहद खतरनाक भी ये बुचगंद है जहने यह सड़क पर लापरवाही कर दें श्रोताओं त है ना जी आंकड़े दस दें श्रोताओं की इंदे कांगड़ा जिला में पिछले कुछ साल में के सो सैकड़ों दुर्घटनाएं क्या है सो हुई इन हादसे में इन्हें हादसे में के सो कई हंसते खेलते परिवार के न सो उजड़े गए इन श्रोताओं इसलिए आज ये समझना जरूरी है कि सड़क पर इंदी अग छोटी दे लापरवाही किया सो कस की भी जान ले भी सकती है और अपने गुवाई भी सकती है श्रोतों जी क्या है जानते हैं कि पहाड़ा पर ड्राइविंग करना मैदानी इलाके जी हाँ बिल्कुल भी नहीं है बिल्कुल डिफरेंट है ना इडियारे रास्ते तंग हिन श्रोतों तीखे मोड़ हिन और मौसम पल पल किया सो बदलिंदा रहता है। हिमाचल प्रदेश पुलिस के अनुसार लगभग 90% हादसे के न सो मानवीय गलती थो बुंदे यानी कि मनुष्य री गलती थो बुंदे मनु री गलती थो के न सो बुंदे 90% सड़क दुर्घटनाएं के न सो मनु री गलती थो बुंदी इन श्रोतों ठेरे मुख्य कारण भी हिन श्रोताओं तेज रफ्तार ओवर स्पीडिंग जैसी है बोलद मोड़ापुर की सो गड्डी पर नियंत्रण खोई देना है ना गलत ओवरटेकिंग श्रोताओं जड़ी अंधे मोड़ बनते हैं जिन्हों ब्लाइंड स्पोर्ट्स अंग्रेजी बनते हैं तड़ी मोड़ कटने आगू निकलने की होड़ मा किया सो गलत ओवरटेकिंग करनी है ना नशे में गड्डी चलाना श्रोताओं शराब पी करी या कुछ और सूखे नशे करी करी किया सो गड्डी चलाना और दूजरे वास्ते कि सो मौत रा बुलावा है और अपने वास्ते भी मौत रा बुलावा है श्रोताओं मौसम रा मिजाज किया ये बड़ा महत्वपूर्ण है श्रोताओं यह सब जान दें कि मानसून रे समय किया सो लैंडस्लाइड और कोहरा किया सो जगह जगह बुंदा था इतिया अगर है लापरवाही बढ़ती तो बिल्कुल फ्री किया सो एक्सीडेंट एक मोटा कारण की है सो बने गंदा हा इस प्रकार और भी चीज़ें हैं जो है तुसो की जरूर शेयर कर ले तो इस सब बन रहे ने समय आर जे सचिन कपूर सो के लाइव कार्यक्रम होने कर दे इंदी अपनी गप्पा चलिए जी लेकर चल दे तू सब भी श्रोताओं जो इस की तरीके नारी बने रहे जुड़े रहे असुसो की श्रोताओं और फिलहाल लेके चलते तू सब भी जो इस गीत तरीके नारी

0: शोतो एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर है रेडियो गुंजन धर्मशाला और आऊँ सचिन कपूर अजय तुसुसो की बिल्कुल मौजूद कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा मंच बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन आक मौके फिर सभी होने वाले रह सभी श्रोतागण रह कैसे तो है सब उम्मीद करनो खरे बुणे ने और खुशल मंगल बुणे इन खरा बुणा जरूरी है श्रोतो अक्सर बोलनो खुश रहना भी जरूरी है रहा चलिए कार्यक्रम जो आगू बढ़ेंदे हैं श्रोतो और कार्यक्रम मंच अजय है गल करू कर दे थी रोड सेफ्टी पर है ना तो फिलहाल इन श्रोता गणना सूखी कनेक्टेड है पुछ दिन कौन बलून दिन और कड़ी थो बलून दिन नमस्ते जी
1: नमस्ते सर जी नमस्ते जी
0: नमस्ते जी नमस्ते ठीक ठाक ना
1: हाँ जी सर जी ठीक ठाक जी तुसा ठीक ठाक सर जी
0: बिल्कुल जी यह भी ठीक ठाक ने कौन बलून दिन और कड़ी थो बलून दिन
1: सुनील कुमार बोल रहे सर जी कोठी में लौटते
0: अच्छा अच्छा और ठीक ठाक कर कर लुगरन कैलूर कमाना जी
1: कुछ नहीं सर जी प्रोग्राम ही सुना दे सर जी तो सांदे

0: चलिए धन्यवाद जी, धन्यवाद। हाँ सुनील जी, कौन देना गीत होना पसंद कर ले?
1: विजय कपूर दी आवाज़ सुनाई ने गाना सर जी, नाज वो गुरु मेरा सामिया बुढ़ा हुआ।
0: अच्छा क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही प्यारा गीत है, जरूर सुना ले तू सुहा ना जी।
1: धन्यवाद सर जी, नमस्ते जी,
0: धन्यवाद जी, धन्यवाद।
1: नमस्ते सर जी,
0: नमस्ते। FM बैंड 91.2 MHz पर हूँ सचिन कपूर, कार्यक्रम इस समय लाइव चल रहा है वीडियो सेट में, इन अगले श्रोता सुगी कनेक्टेड है। नमस्ते जी,
2: नमस्ते जी,
0: नमस्ते जी, नमस्ते,
2: नमस्ते
0: जी, कौन बोल रहे हैं? हाँ जी, अह ठीक ठाक ने जी, चलो ठीक, इन्ना कहे बोलना बुरे ना। हाँ
2: जी ठीक, चलो ठीक, क्या है जी?
0: हाँ जी, हाँ जी जी, कौन बोल रहे हैं? और कड़ी थम बोल रहे हैं?
2: ऊपर से बोल रही माया।
0: अच्छा अच्छा, हाँ जी माया जी, माया जी कौन देने की थोड़ा तुसु
2: नंगे लोट की आले सुनाई है मतलब ये नहीं।
0: अच्छा अच्छा, और घर
2: पे मैं जरा सी थोड़ी, मैं थोड़ी जी परेशान हूँ कि थोड़ी थोड़े नंबर लाए सकी।
0: अच्छा क्या परेशानी थी माया जी तुसु?
2: परेशानी अपनी बीमारी में हो रही है जी, बीच में जरा कुछ रिश्तेदार के साथ हुई है जी। करी
0: ओहो, चलिए जी, बीमारी तो बहुत बुरी बंदी ना जी, और चलो संसार,
2: चलो संसार खरी बुरी नहीं लगी संसार एक करी फिर अपनी है तो भी सानी नहीं थी तो है जब हम जरा दुआएं दे सारे दे चल दे फिर दे रहे दे तो किया सारे सारे ये करना जिंदगी है वो कटनी है ना ऑफिस वाली।
0: बिल्कुल ठीक गला दे तुम्हारे जी।
2: हाँ जी,
0: चलिए ठीक है जी। कुछ चीज़ बंदी ना इन देहाते बंदी ना तो तीनों है ठीक करी सकते हैं। अबे जो परमात्मा रे हते चीज है ना जी,
2: सही था ओ जी, भगवान ने आते सभी खरी बुरी भगवान ने लगाई है सब
0: सब। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। और जो इन दे हते चीज है बंदी सो तो चलो है इंसान ठीक करी सकता है ना जी, कुछ चीजा सुधार नेरी बंदी सो सुधार ही सकता है, तदीमा सुधार करी सकता है, अपने आप तो प्रयास करी सकता, लेकिन जो इंदे हते हाई ने जो भगवान ना रहते जन्म और मृत्यु तो भगवान ना रहते है ना जी,
2: भगवान भगवान सुधार करने वाला करे वो खरी बुरी निभाने वाला
0: निभाने वाला। एग्जैक्टली एग्जैक्टली जी, एग्जैक्टली। जी कौन देने गीत होना तुसु?
2: मैं ना लोटकियां वाला सुनना है।
0: अच्छा लोटकियां, हां
2: जी हां जी,
0: ठीक है जी, जरूर होने ले तो सोए गीत है। हां
2: जी, बड़ा बड़ा धन्यवाद जी, थोड़ा नहीं
0: धन्यवाद, धन्यवाद जी, धन्यवाद। श्रोतो FM बैंड 91.2 MHz पर वेडी गुंजन धर्मशाला तो है ट्यून कर रहा और हूँ सचिन कपूर रहा। और एरा जी के अंदर सुगरदा थोड़ा कि कुछ चीज़ा तो बुंदी ना श्रोतो जो इन दे हथे बुंदी ना जिन्या वो एह मतलब करी सकते हैं, ठीक करी सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ा बुंदी जो इन दे हथे ना बुंदी जन्म और मृत्यु इन दे हथे ने हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें जो इंसान रहे बस समझ ना बुंजी अपने आप ना बुंदी अपने आप जो बीमारी तो ग्रसित करना या अपने आप जो और ज़्यादा बीमारी पवाई लेना है ना, बहुत सारी चीज़ें अगेन सो इन दे हथे ना भी बुंदी श्रोतों। इन दे फिलहाल अगले श्रोता सूगी कनेक्टेड हैं, पूछते हैं कौन बोल रहे हैं और कड़ी थो बोल रहे हैं? नमस्ते जी, हेलो
3: हेलो, नमस्ते, राधे राधे,
0: राधे राधे, राधे राधे जी, हरे कृष्णा। कौन बोल रहे हैं और कड़ी थो बोल रहे
3: हैं?
0: अच्छा अच्छा,
3: हेलो,
0: हाँ जी हाँ जी,
3: हेलो
0: हेलो, अंजना जी आवाज सुन दे?
3: अंजी अंजी भाई सुन दे
0: जी। अंजना जी पहचान लिया है तो है नॉर्बलिंगा थों बल्लू कर देना।
3: हाँ जी
0: जी, ठीक ठाक ने नॉर्बलिंगा वाले सब तो है?
3: ठीक भाई सब ठीक ठाक।
0: अच्छा और करे करे
3: बस कर लगना है बेगुरे हंड बंदे।
0: अच्छा अच्छा
3: जी
0: चलिए ठीक है जी। अंजना जी कौन देने गीत होना और अमृत आज कुरला भी कुरता कुरला बंदे हुए राते रात रुंदा लेकिन आज था रात कना रूना लगू रहा था बैगा तक रुंदा रहे बेचारा
3: सुबह लगड़े जाए रूना ऐसे करना था बारा था मुश्किल ना बारा था मुश्किल
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल
3: वो लगड़े सारा भर कड़ी था
0: हाँ कड़ी भर हुआ
3: हाँ सावन महीना लगड़े दूर भर था।
0: हाँ जी हाँ जी चलिए अंजना जी तक कुंडने गीत हम पसंद कर ले। हाँ जी हाँ जी
3: मुझे क्या मतलब फिर बार नहीं रहा बार ना दिया।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल
3: हाँ जी
0: अंजना जी कुंडने गीत थोड़ा पसंद कर ले।
3: बनाई देती है केवल दे दादी माता का भजन बनाई दिया
0: दादी माता का भजन जी जरूर होना लेते हैं
3: जी। हाँ जी हाँ जी
0: ठीक है जी धन्यवाद
3: ठीक है भाई तुम धन्यवाद
0: धन्यवाद। तो श्रोतम एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडी गुंजन तो है ट्यून कर रहा और हूँ सचिन कपूर है श्रोतों फिलहाल फरमाइशा हैं तैयार फरमाइशा जो पूरी कर लेते हैं बने रहे जुड़े रहे सुसोगी हैं लेके चल दे तू सब भी जो श्रोतों कुछ एक फरमाइशा री कनारी जो फरमाइशा आई हिन यारी कनारी है ना

शोतो एफ एम बैंड 91.2 MHz पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून कर रहा और एक कार्यक्रम में हिंदी अपनी गप्पा गाना सो चल रही हिंद शोतो है ना जी ता बहुत बहुत स्वागत है मुके फिर सभी होने वाले रहा सभी श्रोता गण रहा कार्यक्रम जो हवा बढ़न दिन छोतो और अगली फरमाइश भी आई है सो फरमाइश भी असू जरूर पूरे करनी है ये फरमाइश जो कर लें दिन छोतो पूरी का जो कि समय रह के असो अभाव है और समय ना कसी वास्ते ना रुक और समय रे एक बड़ी मूल्यवान कीमत बल्ले सकते हैं बड़ी मूल्यवान कीमत कीमत है कि समय कभी अकजी ना रहता बदलींदा जरूर अज सुख है तो दुत्ते दुख भी होना अज दुख है तो दुत्ते सुख भी जरूर होना है।

शत एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर वेडी गुंचन धर्मशाला तो है सभी ट्यून कर रहा और कार्यक्रम सचिन कपूर सो के होनो कर दे थी हिंदी अपनी गप्पा गजो के शो तो वहाँ पे वक्त बचेगो तो सुसभी थो अलविदा लेने रहा तू सभी जो टाटा बाय बाय बलने रहा तगन तगन दे बस सही बलना चाहूँ शो तो तू सभी जो आऊँ कि माँ बाप री सेवा ज़रूर करा सच्चे मन होगी करा और माँ बाप रा ख्याल रखा परिवार वाले रा ख्याल रखा और प्रकृति रा ख्याल किया सो ज़रूर रखा शो तो है ना कसीरा भी बुरा मत करा बुरा मत बला कजो कि इंदे कर्म के ना सो असु सोग्य हिन जो भी आए करू कर देना सो इंदे कर्मा मंज ज़रूर लिखी नाला और अपने कर्मा जो किया सो हमेशा खरे रखा शो तो सच्चे रखा ताकि जहने बद अंदर है हिसाब दीने पर इन ता इंदे कर्मा में कोई ऐसी गलती ना बोआ कि असू सो जो मरने थो बाद असुआ कि नदी किया सो गरुण पुराण में दसुरा था नदी रे बारे हैं कि अगर तुंदे पाप ज़्यादा न तो सू कस प्रकार रे ना नदी मोलने और पाप घाटिन खरे गर्म तकस प्रकार रे किया सो नदी मोलने सो तहा नदी का ख्याल रखी करिए है जिंदगी जो किया सो व्यतीत करा श्रोताओं और हर कसियो खुश किए सो जरूर रखा शो तुम कसी दुखे मत कर कसी वे दिल किए सो मत दुखा इन्हें शब्द था हूँ सचिन कपूर ले लेने इजाजत नमस्ते धर्मशाला।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: कैसे?
4: कर्तव्य।
3: सड़क सुरक्षा का सबसे पहला और सबसे जरूरी पार्ट है कर्तव्य। ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने साथ साथ दूसरों के बारे में भी सोचें। अरे हाँ भाई साहब, अगर सड़क के बीचों बीच इस तरह से ट्रक छोड़ेंगे और चले जाएंगे तो पीछे से स्पीड में आ रही गाड़ी जो है ठोक देगी ना आपको। ये हमारा कर्तव्य है कि हम इस निर्धारित पार्किंग स्पॉट में ही गाड़ी को लगाएं, और अगर किसी कारण बीच सड़क में आपकी गाड़ी खराब हो जाती है तो हमेशा पार्किंग लाइट ऑन करें और वार्निंग ट्रायंगल गाड़ी से थोड़ी दूर जाकर के लग दें, ताकि आने वाला जो ट्रैफिक है उसे पता चले कि सामने गाड़ी रुकी हुई है।
5: समझ गए सर।
3: तो याद रखना, कैसे कर्तव्य निभाएंगे तभी तो दूसरों से अपेक्षा रख पाएंगे।

भक्ति हमें संकटों से लड़ना सिखाती है और हमारे वीर शहीदों का बलिदान हमें इस देश की मिट्टी से मोहब्बत करना सिखाता है। महादेव की जटाओं से बहती गंगा सी पवित्र है हमारी आजादी, जिसे बनाए रखना हम सब का संकल्प है। तो आइए सावन के इस पावन उमंग में महादेव को नमन करते हुए अपनी स्वतंत्रता का जश्न मनाएं। हाथों में थामे तिरंगा और गर्व से कहें, हम आजाद हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। आप सभी श्रोताओं को स्वतंत्रता दिवस और सावन के पावन मास की अनंत शुभकामनाएं। सुनते रहिए अपना पसंदीदा रेडियो स्टेशन रेडियो गुंजन धर्म।

0: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बनें। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: इतने बड़े कमाल की बात कही है कि भीड़ में खोना जरूरी नहीं है और ना ही गुरूर में जीना जरूरी है। जरूरी है तो बस एक चीज, अपने विचारों के साथ सही रहना। हर किसी के साथ मेल बिठाना समझदारी नहीं है, कभी कभी दूर रहना भी मन को शांति देता है। हमारी जिंदगी और आसान तब लगने लगती है जब हम अपनी जिंदगी में सही लोगों को, अच्छे लोगों को पहचानना सीख जाते हैं, है ना?
4: कहाँ चले
5: भाई? ऐसा
4: हमको मंडी जाना है। ऐसा क्या देख रही हो? अरे दहेज में स्कूटर आया है, ये बात पे इतराना जरूरी नहीं है, हमारा काम जरूरी है। अरे चार क्लास का पढ़ लिए, भाव खा रही हो? अंदर जाओ।
6: भाव कहाँ खाए, भाव तो दिए
4: है।
6: दहेज दिए है मतलब भाव दिए, खरीद लिया है आपके बेटे को। इज्जत से पूछेगा तो मिलेगा, यूज कर लो। स्कूटर भी और बेटा,
7: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछे मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क को, अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
8: बीबी एक बात बताओ, शादी से पहले जो मैं आपसे बातें किया करता था, अब उनमें से कौन सी बात आपको सच लगती है?
9: वही जो आप किया करते थे।
8: कौन सी?
9: कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ।

नमस्कार, यह है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और श्रोताओं, मैं हूँ आपकी रेडियो दो शशि और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर। गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

तो श्रोताओ, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

91.2 FM पर यह आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बिल्कुल अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो इसी के साथ अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको फिर से ले चलते हैं एक और गीत की तरफ। तो आप सभी यूं ही सुनते रहिए अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से आपको ले चलते हैं एक और गीत की तरफ।

91.2 MHz पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। गीत सुहाने नए पुराने, तो फिर से अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

तो श्रोताओ, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

91.2 FM पर यह है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बिल्कुल अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और गीत।

नमस्कार श्रोताओं, अ वेरी वार्म गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, खुश होंगे। नमस्ते नमस्कार, मेरा नाम सचिन कपूर है और गुड इवनिंग धर्मशाला कार्यक्रम को मैं होस्ट करने जा रहा हूँ। श्रोताओं, जैसे कि आप सभी जो हमारे रेगुलर श्रोता हैं वो बाखूबी जानते हैं कि ये कार्यक्रम 8 बजे तक जो है वो रहता है श्रोताओं, और इस कार्यक्रम में अनेकों जानकारियाँ जो हैं वो हम आप तक साझा करते हैं, अनेकों जानकारियाँ जो हैं वो आप तक पहुँचाते हैं। साथ ही साथ गीत संगीत का दौर जो है वो भी बिल्कुल बाखूबी चलता है श्रोताओं, और लगातार चलता है। तो चलिए जी, बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है जितने भी श्रोता हमें इस समय सुन रहे हैं, जितने भी श्रोता हमारे साथ इस समय बने हुए हैं, जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले धर्मशाला के मौसम की ओर नज़र डाल लेते हैं ना श्रोताओं। वैसे तो हम सभी जो धर्मशाला में रह रहे हैं वो सभी बाखूबी जान रहे हैं कि पिछली रात से जो है वो बारिश लगी है, और अभी करीब करीब कोई 3:30 के करीब जो है, 3:30-4 के करीब जो है वो बारिश थोड़ी हल्की जो है वो हुई है। लेकिन क्योंकि बरसात है तो आप सभी बखूबी जानते हैं कि अगर यहाँ बरसात हल्की हुई है तो योल में होगी, योल में नहीं है तो नरवाना में होगी, है ना, क्योंकि बरसात है। तो फिलहाल तो ये है कि कहीं भी इस समय शायद बरसात नहीं है, धर्मशाला की मैं बात कर रहा हूँ। और इस समय श्रोताओं 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो है वो तापमान बना हुआ है। नमी की बात करें तो नमी इस समय जो है वो 90% के आसपास बनी हुई है श्रोताओं। विजिबिलिटी जो है वो 8 किलोमीटर तक बिल्कुल है श्रोताओं। तो यह है मौसम की जानकारी जो हमने आप तक पहुँचाई है। तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, और बिल्कुल गीत संगीत के साथ भी आप सभी श्रोताओं को जो है वो ज़रूर रूबरू करवाएंगे। श्रोताओं, जैसे कि हम सभी बाखूबी जानते हैं आज 11 तारीख है और 15 अगस्त ये हफ्ता जो है, ये वीक जो है वो हम आज़ादी का जश्न जो है वो मनाते हैं श्रोताओं, है ना। तो आइए जी, आगाज़ कुछ जश्न के साथ जो है वो ज़रूर करते हैं श्रोताओं इस प्यारे से गीत के साथ। बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ।

0: शोतो एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर वेली गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और कार्यक्रम आप सभी आरजे सचिन कपूर के साथ बिल्कुल लाइव सुन रहे हैं। तो आइए जी, आगाज तो हो चुका है कार्यक्रम का इस प्यारे से गीत के साथ, देशभक्ति के इस प्यारे से गीत के साथ एक्चुअली में। तो चलिए कार्यक्रम को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। और तो आज जो हमने टॉपिक चुना है रोड एक्सीडेंट के बारे में, क्योंकि बरसात है श्रोताओं, और बरसात के दिन आए दिन जो है वो हम सभी बखूबी जानते हैं कि रोड एक्सीडेंट जो है वो ज़्यादा हो रहे हैं। और ख़ासकर धर्मशाला कांगड़ा क्षेत्र में जो है वो हाल ही में ही सड़क हादसे पर जो है वो अगर हम नज़र दौड़ाएँ श्रोताओं, तो जैसे सिद्धबाड़ी में आपने देखा, आप सभी ने सुना होगा कि सिद्धबाड़ी में जो है वो एक्सीडेंट हुआ और दोनों जिनका एक्सीडेंट हुआ वो दोनों जो हैं वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए शो। तो और ऐसे न केवल एक सिद्धबाड़ी, न जाने कितनी ही सिद्धबाड़ी ऐसी होंगी जहां पर इस तरह की दुर्घटनाएँ जो हैं वो होती हैं शो। तो है ना जी, और बिल्कुल इसमें हम ये दोष किसी को नहीं दे सकते कि शायद उसकी वजह से या उसकी वजह से। हाँ, हमें बहुत सारी चीज़ों का जो है वो खास ख्याल रखना है, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में हम ड्राइविंग कर रहे हैं श्रोताओं, तो कुछ एक खास चीज़ों का ध्यान रखना जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिससे श्रोताओं ये हादसे जो हैं वो रुक जाए। है ना जी, रोड एक्सीडेंट के हादसे जो हैं वो रुक जाएँ। बिल्कुल हम साझा करेंगे जानकारी, इसके बारे में आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले श्रोताओं, बिल्कुल लेके चलते हैं आप सभी श्रोताओं को आज के इस विचार की ओर। कोई भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा बोलने से बुद्धिमान नहीं कहलाता है। जो धीरज रखने वाला क्रोधित से राहत और निडर होता है श्रोताओं, वही बुद्धिमान जो है वो कहलाता है व्यक्ति। गौतम बुद्ध की ये लाइनें थी श्रोताओं जो हमने आप तक पहुंचाई। कार्यक्रम को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे श्रोताओं, और लेके चलते हैं आप सभी श्रोताओं को इस प्यारे से गीत की ओर। और इसके बाद श्रोताओं, बिल्कुल अब तक अन्य जानकारियाँ जो है वो भी साझा करेंगे। गीत के बोल हैं, आँख है भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो।
1: आंसू पी के भी जो मुस्कुराए

श्रोतो एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडी गुंजन धर्मशाला, आप सभी ने ट्यून किया हुआ है और मैं हूँ आपके साथ आपका अपना आरजे रेडी जो कि सचिन कपूर। बहुत बहुत स्वागत है पुनः आप सभी का, हार्दिक अभिनंदन है कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में। आई श्रोतो कार्यक्रम को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और आप सभी का स्वागत तो हो चुका है, अब आप सभी को लेके चलते हैं श्रोतों कार्यक्रम के इस पड़ाव की ओर, जानकारियों की ओर। यानी कि मेनली तो जानकारी हमें श्रोतों पहले तो यही जानना ज़रूरी है कि मैं कह रहा था ना कि बहुत सारे जो हैं 15 से 20 मिनट के बीच में भी बहुत सारे एक्सीडेंट जो हैं श्रोतों वो होते हैं। मैं बताना चाहता हूँ हाल ही में दुर्घटना, जैसे सिद्धबाड़ी में 2 बाइक सवारों की टक्कर हुई, नरघोटा कार हादसा और 3 मील के पास जो है वो ट्रक दुर्घटना के वास्तविक आंकड़ों और पहाड़ी क्षेत्रों में जो है वो सड़क सुरक्षा के गंभीर मुद्दों को शामिल किया गया है श्रोतों, और ये शामिल हुए हैं यानी कि हमने ये आप तक शामिल करवाए हैं। आप सभी जानते हैं श्रोतों कि नरघोटा में भी कार हादसा, उस घर का चिराग जो है वो बुझ गया हमेशा के लिए। 53 मील में जो है 23 माइल्स में जो है वो ट्रक दुर्घटना श्रोतों, है ना। तो हम सभी ये जानते हैं श्रोतों कि हम आज ऐसे विषय के बारे में जो है वो बात कर रहे हैं जो सीधे तौर पर हमारी अपनी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है और दूसरों की ज़िंदगी के साथ जुड़ा हुआ है। श्रोतों देवभूमि हिमाचल का कांगड़ा ज़िला और हमारी खूबसूरत पर्यटन राजधानी धर्मशाला, ये जगहें अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती हैं श्रोताओं, ऑल ओवर वर्ल्ड जो मैं कहना चाहता हूँ वो जानी जाती है धर्मशाला। लेकिन पिछले कुछ समय से यही खूबसूरती वादियाँ और यही चीज़ें जो हैं वो सड़क मौसम को देखते हुए कहीं ना कहीं दुर्घटनाएं हो रही हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे लिए चिंता का विषय है श्रोतो। वाकई में ये पहाड़ियाँ देखने में तो बहुत खूबसूरत लगती हैं, बहुत प्यारी भी हैं, लेकिन जब इन पहाड़ियों के ही तीखे मोड़ आते हैं तो वहाँ पर हम थोड़ा सा अनबैलेंस हो जाते हैं और वहाँ पर हम जिंदगी को छोड़ मौत को गले लगा लेते हैं। ऐसे ना जाने कितने ही मोड़ जो हैं वो होंगे श्रोतो, लेकिन हम सभी को जो है श्रोतो वो ध्यान जो है वो ज़रूर देना है इस बारे में श्रोतो। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ श्रोतो, अभी हाल ही में ही जो है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि लैंडस्लाइड जोन है ना, और जोन 5 में हमारे भूकंप का जोन है हमारा डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, है ना, जोन 5 में हम आते हैं। चरानखड मार्ग पर भी भूस्खलन से दुर्घटनाग्रस्त हुए श्रोतों, धर्मशाला के चरानखड मार्ग पर भी पहाड़ी से अचानक भारी पत्थर और मलबा गिरा श्रोतों, जिसकी चपेट में एक चलती मोटरसाइकिल जो है वो आ गई और 2 युवक मलबे में दबके श्रोतों। इस तरह की बहुत सारी जानकारियां हैं, ये जानकारियां हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे, बने रहेगा रेडी गुंजन की गूंज के साथ और हमारे साथ, क्योंकि चलना तो है ही हमने, है ना। तो वो चलते चलते मुझे कुछ याद आया, क्या ये गीत प्यारा सा आप तक पहुंचाना है।

शोतो एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और कार्यक्रम इस वक्त गुड इवनिंग धर्मशाला आप आरजे सचिन कपूर के साथ सुन रहे हैं बिल्कुल लाइव अपने वीडियो सेट पर। आइए जी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और कुछ एक और जानकारियों के साथ आप सभी को रूबरू करवाते हैं। प्रदेश में बारिश भूस्खलन से जो है वो कम से कम 90 से ज़्यादा सड़कें जो हैं वो अभी भी बंद पड़ी हुई हैं। जी बिल्कुल, प्रदेश में बारिश के कारण अभी भी जो है वो 90 से ज़्यादा सड़कें जो है वो बंद पड़ी हुई है। 90 से ज़्यादा सड़कों पर जो है वो वाहन की आवाजाही थमी हुई है। इन सड़कों को बहाल करने के लिए लोक निर्माण विभाग ने जो है वो मंगलवार यानी कि आज तक का लक्ष्य जो है वो निर्धारित किया था। श्रोतों जी, आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ, जी बिल्कुल आज तक का लक्ष्य जो है वो निर्धारित किया था, जबकि सोमवार को भी जो है वो प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में सड़क खोलने का काम जो है वो जारी रहा। लोक निर्माण विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के तहत सोमवार को राज्य भर में बारिश के कारण 126 सड़कों पर जो है वो वाहनों की आवाजाही थम गई थी। इनमें लोक निर्माण विभाग के शिमला जोन की 38, मंडी की 70, कांगड़ा की 13 और हमीरपुर की 5 सड़कें जो हैं वो शामिल रही। श्रोतों 3 मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड पर भी जो है वो सोमवार को वाहनों के पहिए थमे हुए थे। श्रोतों बंद रही सड़कों में अधिकतर ग्रामीण क्षेत्र की थी। श्रोतों जो सड़कें बंद रही वो ज़्यादातर ग्रामीण इलाके की थी। विभाग का कहना है कि अब प्रदेश के 90 सड़कों में से जो है वो 34 सड़कें खोल दी गई हैं। आज की बात है, अभी तक जो है वो 34 सड़कें कुल मिला के जो हैं वो खोल दी हैं श्रोतों, जबकि शेष 60 सड़कों पर जो है वो काम बिल्कुल जारी है श्रोतों। इसी तरह जानकारियों का सिलसिला जो है वो चलता रहेगा श्रोतों, आप सभी बने हुए हैं वीडियो इंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम बिल्कुल लाइव सुन रहे हैं अपने वीडियो सेट पर। लेके चलते हैं आप सभी को इस प्यारे से गीत की ओर।

शोतो एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो गुंजन धर्मशाला, आप सभी ने ट्यून किया है और मैं सचिन कपूर हूँ। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं शोतो, और इश्क है जिंदगी है, दर्द दिल की दवा, क्या बात है। चलिए, फिलहाल हम कोई दर्द नहीं देंगे, क्योंकि कहते हैं कि कर्मों का हिसाब जो है वो ज़रूर होता है। तो हम कोशिश करते हैं अपनी ओर से कि किसी को जो है वो दर्द ना दिया जाए, और किसी को जो है वो दर्द ना दे तो ही सही है ना शतों। फिलहाल हम लेके चलते हैं, दर्द उन लोगों को अभी मिल रहा है जिनके घरों में बिजलियां नहीं है शतों। 255 बिजली ट्रांसफार्म जो है वो ठप है बारिश से, 255 बिजली ट्रांसफार्म और 17 पेयजल परियोजनाएं भी प्रभावित हैं शतों। मंडी ज़िला में 245 बिजली ट्रांसफार्म बंद हैं। अकेले जोगिंदर नगर उपमंडल में 162 ट्रांसफार्म खराब पड़े हैं शतों। बरसात की वजह से पेयजल योजनाओं पर भी बारिश का असर पड़ा है शोतों। शिमला में 12 और हमीरपुर के बटसर में 5 पेयजल योजनाएं जो हैं वो ठप पड़ी हुई हैं शोतों। कालका शिमला रेल मार्ग पर 3 ट्रेन 20 अगस्त तक जो है वो रद्द है। आप सभी जानते हैं क्योंकि मॉनसून है, बारिश के मौसम और यात्रियों की कम यात्रियों का जो कम आना जाना है शोतों, है ना, कम ऑक्यूपेंसी को देखते हुए जो है वो रेलवे ने कालका शिमला रेल मार्ग पर चलने वाली कई ट्रेनों को जो है वो अस्थायी रूप से रद्द करने का निर्णय जो है वो लिया है। रेलवे की ओर से जारी सूचना के अनुसार 20 अगस्त तक जो है वो कालका शिमला रेलवे ट्रैक पर चलने वाली 3 ट्रेनें रद्द रहेंगी शतों। रद्द की गई ट्रेनों में ट्रेन नंबर 52451 कालका शिमला एक्सप्रेस, शिमला से वापस सेवा ट्रेन नंबर 52452 शिमला कालका एक्सप्रेस, और दूसरी ट्रेन नंबर 52459 कालका शिमला एक्सप्रेस, और शिमला से वापस में ट्रेन नंबर 52460 शिमला कालका एक्सप्रेस शामिल है शोतों। कालका शिमला अप मिक्स ट्रेन और शिमला कालका डाउन मिक्स ट्रेन को भी जो है वो 11 अगस्त यानी कि आज तक जो है वो आज से 10 सितंबर तक जो है वो रद्द किया गया है शोतों। तो इस प्रकार से जानकारियों का सिलसिला जो है वो यूं ही चलता रहेगा, जानकारियों का पिटारा श्रोताओं यूं ही खुलता रहेगा। आप सभी इस समय बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, और ये नाचीज इस समय कार्यक्रम को होस्ट कर रहा है। इस नाचीज का नाम सचिन कपूर है श्रोताओं। आइए कार्यक्रम को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, और गीतों का सिलसिला, गीतों का गारमा, गीतों का पिटारा यूं ही खुलता चलेगा आप सभी के वीडियो सेट पर।

तो आप सभी इंजॉय कर रहे हैं इस समय वेड़ी गुंजन धर्मशाला आरजे सचिन कपूर के साथ, और कार्यक्रम में बहुत प्यारे प्यारे से गीत और गीतों के साथ श्रोताओं जानकारियों का सिलसिला जो है वो भी बाखूबी चल रहा है इस समय वेड़ी गुंजन धर्मशाला में। तो ये कारमा यूं ही चलता रहेगा श्रोताओं, पिटारा जानकारियों का जो है वो यूं ही खुलता रहेगा और जानकारियाँ जो है वो आप तक यूं ही पहुँचती भी रहेंगी श्रोताओं। मणिमहेश में श्रद्धालुओं को मिलेगी अब बेहतर सुविधाएं। जी बिल्कुल श्रोताओं, बैठक के दौरान एसडीएम ने अधिकारियों को दिए निर्देश, तैयारियों पर जांच। मणिमहेश यात्रा 2026 के सफल, सुरक्षित एवं सुचारू संचालन को लेकर जो है वो श्रोताओं एसडीएम कार्यालय में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता एसडीएम भरमौर विकास शर्मा ने की। बैठक में यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को उपलब्ध करवाई जाने वाली विभिन्न सुविधाओं, व्यवस्थाओं और आवश्यक तैयारियों को लेकर जो है वो विस्तृत चर्चा की गई। एसडीएम भरमौर विकास शर्मा ने संबंधित विभागों को यात्रा से पूर्व सभी आवश्यक तैयारियां समयबद्ध तरीके से जो है वो पूर्ण करने के लिए निर्देश दिए। श्रोताओं, यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा एवं सुरक्षा प्रशासन की प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने मणिमहेश यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए भरमौर हेलीपैड, 84 मंदिर परिसर, भरमाणी माता मंदिर व हटसर में विद्युत व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए जो है वो निर्देश दिए। श्रोताओं, जानकारियों का पिटारा जो है वो यूं ही चलता रहेगा और आप सभी बने हुए समय आरजे सचिन कपूर के साथ लेके चलते हैं आप सभी को इस प्यारे से गीत की ओर। गीत के बोल हैं क्योंकि इतना प्यार करते हैं हम तुमसे।

शुद्ध एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये वेडी गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम गुड इवनिंग सुन रहे हैं आप। बहुत प्यारा सा गीत आप सभी ने सुना श्रोताओं, क्योंकि इतना प्यार तुमको करते हैं हम। चलिए, प्यार मोहब्बत की बातें तो होती भी रहेंगी और अक्सर होती भी हैं श्रोताओं, और प्यार मोहब्बत से ही ज़िंदगी जो है वो मुझे लगता है कि अच्छी करती है, बेहतरीन करती है। देखिए, हर रिश्ते में जो है वो प्यार मोहब्बत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है श्रोताओं। प्यार मोहब्बत से ही सभी चीज़ें जो है वो हल होती हैं श्रोताओं, है ना। हर रिश्ता जो है वो बेहतरीन तभी चल पाता है जब उस रिश्ते में वो प्यार मोहब्बत इश्क हो। फिलहाल तो लेके चलते हैं आप सभी को कार्यक्रम के अगली जानकारी की ओर, रूबरू करवाते हैं ना श्रोताओं। कांगड़ा शहर के होशियारपुर रोड स्थित एक गली में चोर ने रात को जो है वो ज्वेलरी दुकान को निशाना बनाया श्रोताओं। चोर दुकान से करीब 400 ग्राम चांदी का सामान चोरी कर फरार हो गया। पूरी वारदात दुकान में लगी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई श्रोताओं। चोरों ने पहले दुकान के शटर के दोनों ताले तोड़ने का प्रयास किया। दूसरा ताला नहीं टूटने पर एक तरफ का ताला तोड़कर शटर आधा उठाया श्रोताओं। और इसके बाद जब शटर आधा उठाया गया तो मोंकी कैप पहने एक चोर लेटकर जो है वो दुकान के अंदर दाखिल हुआ श्रोताओं। उसके साथ ही दुकान के बाहर खड़े होकर पहरा देते रहे। दुकान के अंदर घुसे चोर ने करीब 400 ग्राम चांदी का सामान चोरी कर लिया। हालांकि चोर दुकान में रखी लोहे की अलमारी को तोड़ने में सफल नहीं हो सका। सुबह अखबार बेचने वाले व्यक्ति ने दुकान के ताले टूटता हुआ देखा, जो है वो मालिक को जल्द से जल्द जो है वो सूचना दी। दुकान मालिक ने मौके पर पहुंचकर चोरी की जानकारी जो है वो पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस ने जो है वो घटनास्थल का निरीक्षण कर सीसीटीवी फुटेज सहित अन्य जो भी गतिविधियां थी उन पर भी ध्यान दिया श्रोताओं। कार्यक्रम में जानकारियों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा और आप सभी को इस खबर को आप तक पहुंचाने का जो मेरा लक्ष्य था श्रोताओं, वो ये था कि आए दिन जो है वो चोरियां होते जा रही है, चाहे वो आप नगरोटा बगवा की बात कर ले, चाहे वो आप कहीं की भी बात कर ले श्रोताओं, जो चोरियां हैं वो लगातार जो है वो होती जा रही हैं। सो आप सभी भी जो है वो घर पर भी चोरियां हो रही हैं, दुकानों पर भी चोरियां हो रही हैं श्रोताओं। तो आप सभी जो है वो ज़रूर घर पर भी रहें, है ना। दुकानों पर तो रह नहीं सकते हैं, तो सीसीटीवी कैमरे की मदद से जो है वो उन चोरों को पकड़ा जा सकता है श्रोताओं। तो घर पर जो है वो आवश्यक रहे, क्योंकि हमने देखा पीछे जैसे भी जो है वो नगरोटा में काफ़ी ज़्यादा चोरियां जो हैं वो हुई। आपने लाइव के दौरान भी सुना होगा जो 4 से 5 हिंदी अपनी गप्पा गद्याली कार्यक्रम जो आता है श्रोताओं रेडी गुंजन में, उसमें भी आपने जो कॉलर हमारे साथ हमारे श्रोता जुड़ते हैं आपने सुना होगा कि उस समय कुछ समय पहले, आई थिंक ये 15-20 दिन पहले की बात मैं आपसे साझा कर रहा हूँ, काफ़ी चोरियां जो हैं वो नगरोटा बाज़ार, नगरोटा के कुछ एक गांव में जो है वहां पर भी हुई हैं। तो सतर्क रहें, सावधान रहें और कोशिश करें कि एक व्यक्ति जो है वो घर पर ज़रूर रहे। बहरहाल आप सभी बने हुए हैं इस समय रेडी गुंजन धर्मशाला के साथ, और कहते हैं ना श्रोताओं कि जीना सिर्फ मेरे लिए, है ना। हर कोई किसी के साथ ज़रूर कहता होगा जब ये इश्क मोहब्बत की बातें चलती हैं, तो ये बात तो ज़रूर आती है कि जीना सिर्फ मेरे लिए।

0: श्रोतो 91.2 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है। 7:01 हो गए हैं श्रोतो, और अब वक्त हो गया है रेडियो गुंजन धर्मशाला में समाचारों का।
1: अमित शाह का जवाब मांग रहे हैं सदन में। अब जब सरकार तैयार है, गृह मंत्री जी पूरे घटनाओं का बहुत डिटेल में जवाब देने के तैयार है, फिर राहुल गांधी जी भाग रहे हैं। मैंने इसे सदन में कहा कि भागना नहीं है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से स्वतंत्रता दिवस को गर्व, सम्मान और धूमधाम से मनाने का आह्वान किया है। उन्होंने लोगों से विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लेने को कहा है। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत अपने घरों पर तिरंगा फहराने का भी आह्वान किया। भारत ने दोहराया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अविभाज्य और अभिन्न अंग है तथा इसे निर्विवाद वास्तविकता को कोई नहीं बदल सकता। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये बात कही।
3: भारत और चीन के बीच सीमावर्ती क्षेत्रों से जुड़े मामले में हमने हमेशा चीन के साथ चर्चाओं में यह बात पर जोर दिया है कि हम इन मुद्दों को बेहद गंभीर मानते हैं। द्विपक्षीय संबंधों के समग्र विकास के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखना बहुत आवश्यक है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर गलतफहमी और गलत आकलन से बचने और बाकी बचे हुए मुद्दों को सुलझाने के लिए स्थानीय कमांडर स्तर की बैठकें और अन्य तंत्रों सहित मौजूदा कूटनीतिक माध्यमों का उपयोग जारी रखा जाएगा।
2: श्री जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का हनन हुआ है। इस बीच पाकिस्तान सरकार प्रायोजित आतंक को दुनिया के सामने लाने के लिए पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 13 अगस्त से वैश्विक स्तर पर विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। अवामी एक्शन कमेटी ने अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित करने के लिए दुनिया भर के कश्मीरियों से रैलियां आयोजित करने का आह्वान किया है। अमरीकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को अपने चंद्र बेस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। ये आमंत्रण आर्टेमिस समझौते के अंतर्गत दोनों देशों की साझेदारी को और मजबूत करता है। दोनों देशों ने समझौते के अंतर्गत वैज्ञानिक आंकड़े साझा करने पर सहयोग के लिए चर्चा को आगे बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। वैश्विक रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग्स ने भारत की सोवरेन रेटिंग BBB पर यथावत रखी है। एजेंसी ने कहा कि यह भारत की प्रबल विकास संभावनाओं और सशक्त बाह्य वित्तीय बुनियादी स्थिति को दर्शाता है। फिच ने भारत के लिए स्थिर दृष्टिकोण भी बनाए रखा है और कहा है कि पाकिस्तान की पश्चिम एशिया संकट से उत्पन्न ऊर्जा संकट की चुनौतियों के बावजूद भारत की घरेलू अर्थव्यवस्था बेहतर स्थिति में बनी हुई है। एजेंसी ने अनुमान व्यक्त किया है कि अगले वर्ष मार्च में समाप्त होने वाले वित्त वर्ष में GDP वृद्धि 6.4% रहेगी। झारखंड में JPSC और JSSC परीक्षा विवाद को लेकर विद्यार्थियों का आंदोलन 18वें दिन भी जारी है। कल विधानसभा घेराव के दौरान हुए लाठीचार्ज और झड़प के बाद छात्र नेताओं ने आंदोलन और तेज करने की घोषणा की थी। लाठीचार्ज के विरोध में भाजपा का झारखंड बंद आज रांची सहित कई इलाकों में प्रभावी रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। The Parliament has passed the Tribunals Reforms Bill 2026 with the Rajya Sabha approving it today. Lok Sabha has already passed the bill. When the Upper House met at 2 p.m. after the second adjournment, Minister of State for Law and Justice Arjun Ram Meghwal moved the bill. The bill aims to improve efficiency, ensure independence, transparency and uniformity in the qualifications, appointment of service of chairpersons and members of various tribunals, as well as the administration and functioning of the tribunals. The legislation also proposes to establish a National Tribunals Commission. The Rajya Sabha was adjourned for the day after completing its business. Earlier in the day, the Upper House witnessed continuous uproar over various issues, including the alleged police action during students' protests over the NEET matter. The Lok Sabha has passed the Kerala Alteration of Name Bill 2026. The bill seeks to change the name of the state of Kerala to Keralam in the first schedule of the constitution. A resolution in this regard was passed by the Kerala Legislative Assembly in June 2024. The Lok Sabha has also passed the National Cooperative Development Corporation Amendment Bill 2026. The bill aims to further amend the National Cooperative Development Corporation Act 1962. Both the bills were passed without discussion amid a roar by opposition over several issues. After completing the business, the Lok Sabha was adjourned for the day. Union Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju accused the Congress and opposition parties of running away from a discussion on the students' protest, saying that the government is ready for a detailed discussion on the issue. Speaking to reporters at the Parliament premises, Mr. Rijiju said Home Minister Amit Shah was also ready to respond to the issues raised by the opposition, but they are not allowing the House to function. Meanwhile, Congress MP Pawan Khera alleged that the Home Minister was avoiding making a statement on the matter. India Today reiterated that Arunachal Pradesh is an inalienable and integral part of India, and nothing can change this indisputable.

शोतो एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला आप सभी सुन रहे हैं। शोतो मैं हूं आपके साथ आपका अपना नाचीज आरजे सचिन कपूर। बहुत बहुत स्वागत है पुनः आप सभी का, सभी श्रोताओं का, सभी सुनने वालों का। तो चलिए कार्यक्रम में जानकारियों का सिलसिला जो है वो यूँ ही चलता रहेगा श्रोतो, जानकारियों का पिटारा जो है वो यूँ ही खुलता रहेगा श्रोतो, है ना जी। लेके चलते हैं आप सभी को जानकारी के अगली और बिल्कुल श्रोतों। और बिजली बोर्ड के 18 कर्मी बने लाइनमैन श्रोतों। राज्य बिजली बोर्ड में सेवाएं दे रहे आईटीआई कोटे के 18 सहायक लाइनमैन को जो है वो श्रोतों प्रमोशन का तोहफा जो है वो मिला है। शिमला और मंडी ऑपरेशन सर्कल में तैनात इन कर्मचारियों को लाइनमैन के पद पर जो है वो नियुक्त किया गया है श्रोतों। संबंधित सर्कल की ओर से इस संबंध में सोमवार को आदेश जारी किए हैं। प्रमोशन के साथ इनकी तैनाती भी बोर्ड प्रबंधन की ओर से जो है वो कर दी गई है श्रोतों। लिहाजा इन कर्मियों की प्रमोशन आदेश जारी होने पर तकनीकी कर्मचारी महासंघ ने भी सरकार और प्रबंधन का आभार जताया है श्रोताओं। तो सिलसिला यूं ही चलता रहेगा जानकारियों का। पुनः ये वाली जानकारी आप तक हम पहुंचाना चाहते हैं क्योंकि बरसात का मौसम है, लैंडस्लाइड हो रही है श्रोताओं जगह जगह। हिमाचल या हिमाचल के बाहर भी अगर आप कार्यक्रम को सुन रहे हैं तो आपको बताना चाहते हैं कि काफ़ी ज़्यादा लैंडस्लाइड जो है वो हो रही है। तो सतर्क रहें, सावधान रहें, पहाड़ी वाले क्षेत्र में ज़्यादा ना जाएँ और धीमी गति से जो है वो अपनी कार को चलाएँ श्रोताओं। इस बारे में हम ज़रूर आपसे एक बार फिर से जो है वो कुछ एक जानकारियां जो है वो आप तक हम ज़रूर पहुंचाएंगे श्रोताओं। लेके चलते हैं आप सभी को इस प्यारे से गीत।

श्रोता एफ एम बैंड 91.2 MHz पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला सुन रहे हैं। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अगली जानकारी का पिटारा जो है वो खोलते हैं। श्रोताओं, जिला कांगड़ा में वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण एवं उन्हें सक्रिय और सम्मानजनक जीवन के अवसर उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से राज्य कार्य योजना SAPS RC के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 की कार्य योजना पर बैठक आयोजित की गई। श्रोतों, बैठक की अध्यक्षता अतिरिक्त उपायुक्त कांगड़ा विनय कुमार ने की। श्रोतों, बैठक में अटल बायो अभ्युत योजना के अंतर्गत कांगड़ा जिला को स्वीकृत 10.5 लाख रुपए की राशि से विभिन्न गतिविधियां आयोजित करने पर विस्तार से चर्चा की गई। श्रोतों, कार्य योजना में वरिष्ठ नागरिकों के लिए उत्पादक गतिविधियां, जागरूकता कार्यक्रमों और अंतर पीढ़ी संवाद, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिविर, डिजिटल एवं वित्तीय साक्षरता तथा पौधारोपण जैसी गतिविधियां शामिल हैं। श्रोतों, अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि वरिष्ठ नागरिक समाज का अहम हिस्सा है, यानी कि जो बुजुर्ग हैं श्रोताओं, वो हमारे समाज का बहुत अहम हिस्सा है। समाज को उनके अनुभवों से सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए।

ये उन्होंने कहा है कि सरकार वृद्धजनों को इस डिजिटल युग में उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अनेक ऐसे कार्यक्रम चला रही है जिससे वह समाज को अपने अनुभवों का लाभ दे सके। श्रोतों, कार्यक्रम में जानकारियों का पिटारा यूं ही चलता रहेगा। श्रोतों, आप सभी बने हुए समय आरजे सचिन कपूर के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला। पास वो आने लगे जरा जरा, कौन वो कौन, आपके वो

श्रोता एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर वेडी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और कार्यक्रम इस समय गुड इवनिंग धर्मशाला जो है वो चल रहा है। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और कुछ एक और जानकारियों के साथ आप सभी श्रोताओं को रूबरू करवाते हैं। श्रोताओं सबसे अहम बात और पहली बात कि स्वास्थ्य सेवाओं में जो है वो असाधारण योगदान के लिए डॉक्टर उमेश भारती जी का जो है उनको पद्मश्री दिए जाने पर बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जी बिल्कुल श्रोताओं, और डॉक्टर उमेश भारती CMO इनकी चीफ मेडिकल ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा हैं और पद्मश्री दिए जाने पर उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं। श्रोताओं आप सभी समय जुड़े हैं, बने हुए हैं वेड़ी गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम चल रहा है गुड इवनिंग धर्मशाला। अगली जानकारी के साथ रूबरू करवाते हैं श्रोताओं। प्रदेश के सरकारी विद्यालयों और आंगनबाड़ियों में जो है वो 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को डायरिया जैसी बीमारियों से सुरक्षित रखने के लिए शिक्षा विभाग ने राष्ट्रीय स्तर पर डायरिया अभियान 2026 के तहत निर्धारित दिशा निर्देश को कड़ाई से लागू करने के प्रशासनिक आदेश जारी किए हैं। श्रोतों, केंद्र सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा तैयार इस विशेष अभियान का मुख्य स्वच्छ जल समुचित उपचार डायरिया से बचे हर बार तथा स्टॉप डायरिया सेव रखा गया है। श्रोतों यह अभियान का नाम रखा गया है। श्रोतों उपनिदेशक स्कूल शिक्षा कांगड़ा अजय संब्याल ने विद्यालयों के प्रधानाचार्य और मुख्य अध्यापकों को पत्र लिखा है और पत्र दिया है कि स्वास्थ्य एवं स्वच्छता मानकों का पूर्ण अनुपालन जो है वो सुनिश्चित करने को जो है उन्होंने निर्देश दिए हैं। तो आप सभी भी जो भी श्रोता इस समय इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं वो ज़रूर इस बात का ध्यान विशेष रखें कि निर्देश जो है वो जारी हुए हैं और अपने स्कूल के आसपास जो है वो बिल्कुल सफाई जो है वो ज़रूर रखें। श्रोतों जानकारियों का पिटारा यूं ही चलता रहेगा, जानकारियों का सिलसिला जो है वो यूं ही चलता रहेगा। श्रोतों आप सभी इस समय जुड़े हुए हैं आरजे सचिन कपूर के साथ और लेके चलते हैं श्रोतों हमारे एक दोस्त हैं जो इस समय कार्यक्रम को सुन रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मैं ये गीत सुनना चाहता हूँ। तो मैं अपने उन दोस्त को बताना चाहता हूँ, उनका नाम अमित है, नरवाना से वो रिश्ता रखते हैं, माफ़ करें टंग से वो रिश्ता रखते हैं। तो वो कहना उनकी खुद की गाड़ियाँ भी हैं, वो कह रहे हैं कि मेरा एक गीत जो है वो प्ले कर दीजिए। तो अमित और अमित जैसे जितने भी हमारे और श्रोता हैं, हमारे भाई हैं, उन सभी को मैं बताना चाहता हूँ कि हमारी क्यू शीट जो है वो 1 या 2 दिन पहले जो है वो डल जाती है। हमें 1 या 2 दिन पहले जो है वो अपने गीत डिसाइड करके जो है वो लिखने पड़ते हैं, है ना, और फिर उस शीट को जो है एक ग्रुप में, हमारे ग्रुप में जो है वो रेडियो के ग्रुप में डालना पड़ता है। तो वहाँ पर सारी चीज़ें जो है वो होती है ना जी। तो हम एकदम से अभी कोई भी गीत जो है, क्योंकि ये फरमाइशी कार्यक्रम, ये कॉल इन कार्यक्रम तो है नहीं। तो अमित जी 4 से 5 आपकी हम अक्सर फरमाइशें पूरी करते भी आए हैं शायद, है ना, बहुत सही। तो इस कार्यक्रम में हम आपसे थोड़ी सी क्षमा ज़रूर चाहेंगे क्योंकि आप हमारे रेगुलर श्रोता हो। बहरहाल कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और कार्यक्रम में लेके चलते हैं आप सभी श्रोताओं को इस प्यारे से गीत की ओर।

श्रोतो FM बैंड 91.2 MHz पर आप सभी ने ट्यून किया है वेडी गुंजन धर्मशाला, और मैं हूं आपके साथ आपका अपना RJ वेडी, जो कि सचिन कपूर। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं श्रोतो, और अब वक्त हो गया है वेडी गुंजन धर्मशाला में छोटे से अंतराल का। मिलते हैं श्रोतो अंतराल के बाद।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
1: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: कैसे?
4: कर्तव्य।
3: सड़क सुरक्षा का सबसे पहला और सबसे जरूरी पार्ट है कर्तव्य। ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने साथ साथ दूसरों के बारे में भी सोचें। अरे हाँ भाई साहब, अगर सड़क के बीचों बीच इस तरह से ट्रक छोड़ेंगे और चले जाएंगे तो पीछे से स्पीड में आ रही गाड़ी जो है ठोक देगी ना आपको। ये हमारा कर्तव्य है कि हम इस निर्धारित पार्किंग स्पॉट में ही गाड़ी को लगाएं, और अगर किसी कारण बीच सड़क में आपकी गाड़ी खराब हो जाती है तो हमेशा पार्किंग लाइट ऑन करें और वार्निंग ट्रायंगल गाड़ी से थोड़ी दूर जाकर के लग दें, ताकि आने वाला जो ट्रैफिक है उसे पता चले कि सामने गाड़ी रुकी हुई है।
5: समझ गए सर।
3: तो याद रखना, कैसे कर्तव्य निभाएंगे तभी तो दूसरों से अपेक्षा रख पाएंगे।

भक्ति हमें संकटों से लड़ना सिखाती है और हमारे वीर शहीदों का बलिदान हमें इस देश की मिट्टी से मोहब्बत करना सिखाता है। महादेव की जटाओं से बहती गंगा सी पवित्र है हमारी आजादी, जिसे बनाए रखना हम सब का संकल्प है। तो आइए सावन के इस पावन उमंग में महादेव को नमन करते हुए अपनी स्वतंत्रता का जश्न मनाएं। हाथों में थामे तिरंगा और गर्व से कहें, हम आजाद हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। आप सभी श्रोताओं को स्वतंत्रता दिवस और सावन के पावन मास की अनंत शुभकामनाएं। सुनते रहिए अपना पसंदीदा रेडियो स्टेशन रेडियो गुंजन।

0: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: इतने बड़े कमाल की बात कही है कि भीड़ में खोना जरूरी नहीं है और ना ही गुरूर में जीना जरूरी है। जरूरी है तो बस एक चीज, अपने विचारों के साथ सही रहना। हर किसी के साथ मेल बिठाना समझदारी नहीं है, कभी कभी दूर रहना भी मन को शांति देता है। हमारी जिंदगी और आसान तब लगने लगती है जब हम अपनी जिंदगी में सही लोगों को, अच्छे लोगों को पहचानना सीख जाते हैं, है ना?
4: कहाँ चले?
5: वही है सर,
4: हमको मंडी जाना है। ऐसे क्या देख रही हो? अरे दहेज में स्कूटर आया है, ये बात पे इतराना जरूरी नहीं है, हमारा काम जरूरी है। अरे चार क्लास का पढ़ लिए, भाव खा रही हो? अंदर जाओ।
6: भाव कहाँ खाए, भाव तो दिए
4: है?
6: दहेज दिए है मतलब भाव दिए, खरीद लिया है आपके बेटे को। इज्जत से पूछेगा तो मिलेगा यूज करने, स्कूटर भी और बेटा।
7: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क को, अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
8: बीबी एक बात बताओ, शादी से पहले जो मैं आपसे बातें किया करता था, अब उनमें से कौन सी बात आपको सच लगती है?
9: वही जो आप किया करते थे।
8: कौन सी?
9: कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ।

0: श्रोतो FM बैंड 91.2 MHz पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और मैं हूं आपके साथ आपका अपना आरजे रेडियो जॉकी सचिन कपूर। पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो श्रोतो 7:45 हो चुके हैं और अब वक्त हो चुका है रेडियो गुंजन धर्मशाला में प्रादेशिक समाचारों का।
1: पुलिस व इनफेड के बीच समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित, सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों की आजीविका को मिलेगा बल। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने शिमला जिला परिषद के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के चुनाव की तिथि जल्द स्पष्ट करने के प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश का किया स्वागत। प्रदेश के कई स्थानों पर BPL संवाद कार्यक्रम हुए आयोजित। विधानसभा अध्यक्ष ने लोगों से सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने का किया आग्रह। और प्रदेश में मॉनसून की वर्षा से जनजीवन प्रभावित, 2 राष्ट्रीय उच्च मार्गों सहित 204 सड़क मार्ग अवरुद्ध। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश में जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार होगा और कांग्रेस हाईकमान की मंजूरी मिलते ही ये विस्तार किया जाएगा। शिमला में आज पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में उन्होंने विधायक सुंदर सिंह ठाकुर को मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने के संकेत दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुंदर सिंह ठाकुर कांग्रेस की राजनीतिक मामलों की समिति की बैठक से पहले भी मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं।
2: मंडल विस्तार कार्ड्स पर है। जैसे ही हाई कमांड अभी पॉलिटिकल PSC की मीटिंग करेगा तो उसके बाद मंत्रिमंडल की रिशफलिंग है, लेकिन सुंदर सिंह जी का मंत्री परिषद की शपथ पहले भी हो सकती है। जैसे ही अप्रूवल आएगी तभी उनकी वोट हो सकती है, लेकिन जल्दी मंत्रिमंडल विस्तार होगा।
1: इससे पहले मुख्यमंत्री ने शिमला से प्रदेश के विभिन्न जिलों की अग्निशमन इकाइयों के 46 नए त्वरित प्रतिक्रिया वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार व आधुनिकीकरण पर विशेष बल दे रही है और इसके लिए 65,33,00,000 रुपए का बजट स्वीकृत किया गया है।
2: कल मैंने निर्मा में किया था, डांगी में, सब क्षेत्रों को भी हम अग्निशमन विभाग से जोड़ने का कार्य कर रहे हैं और मुझे खुशी है कि अग्निशमन विभाग बहुत तेजी से कार्य कर रहा है, जो हमने कहा था। और अभी आने वाले समय में और ज्यादा अग्निशमन विभाग की गाड़ियाँ हमारे 28 किलोमीटर के डिस्टेंस के पर सब जगह पहुँच जाएगी, ताकि जब आग लगे तो उस आग को तुरंत बुझाने का काम हम करें। नई टेक्नोलॉजी भी इसमें डाली जा रही है।
1: मुख्यमंत्री ने कहा कि MIS के तहत सेब की खरीद पर सरकार ने कोई लिमिट तय नहीं की है और बागवान 100 से अधिक सेब बोरी भी बेच सकते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने बागवानों को नोटिस जारी करने पर रोक के आदेश दे दिए हैं और किसी भी बागवान को तंग नहीं किया जाएगा।
2: जितने भी बागवान है, जो भी उनका कर डेफिसिट है उसको सरकार लेगी, चाहे वो 500 बोरी हो चाहे 200 बोरी हो, कोई कैपिंग 100 बोरी की नहीं है। अगर कुछ उसमें ग्लैरिकल मिस्टेक होगा उसको भी ठीक कर दिया जाएगा। और जो नोटिस की बात है, वो नोटिस पिछले सेब के आए हैं। मैं अभी अधिकारियों से बैठक करूंगा और नोटिस को जो SDM के माध्यम से दिया गया है उसको तुरंत प्रभाव से मैं रोकने के दिशा निर्देश अपने अधिकारियों को दूंगा कि इन्हें तंग ना किया जाए।
1: भारत तिब्बत सीमा पुलिस और किन्नौर जिला सहकारी विपणन व उपभोक्ता संघ लिमिटेड किनफेड के बीच आज शिमला में एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की उपस्थिति में हस्ताक्षरित इस MOU के तहत ITBP के जवानों के लिए गुणवत्तापूर्ण पहाड़ी भेड़ व बकरी के मांस की स्थानीय स्तर पर खरीद और आपूर्ति की जाएगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये पहल ITBP के जवानों के कल्याण के साथ साथ सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले समुदायों के बीच सतत आर्थिक संबंध स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि MOU के माध्यम से दूरदराज और सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात ITBP जवानों के लिए सुरक्षित, गुणवत्तापूर्ण और स्वच्छ तरीके से प्रसंस्कृत मांस की नियमित उपलब्धता सुनिश्चित होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे सीमावर्ती गांव में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और लोगों की आजीविका मजबूत होगी। इस दौरान राजस्व व बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी भी मौजूद रहे। प्रदेश उच्च न्यायालय में आज शिमला जिला परिषद के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के चुनाव में हुई देरी के मामले संबंधी याचिका पर सुनवाई हुई। न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की अदालत ने मामले पर सुनवाई करते हुए उपायुक्त शिमला और मुख्य सचिव के माध्यम से राज्य सरकार को नोटिस भेजा है, जिसमें अगली सुनवाई से पहले चुनाव में हो रही देरी को लेकर जवाब मांगा गया है। मामले की अगली सुनवाई 17 अगस्त को होगी। इस बीच नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने शिमला जिला परिषद के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के चुनाव में जानबूझकर की गई देरी को लेकर प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा सरकार को जल्द से जल्द तिथि स्पष्ट करने के आदेश का स्वागत किया है। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि सरकार जनादेश का अपमान करने के साथ साथ संविधान की धज्जियां ही नहीं उड़ा रही बल्कि आए दिन न्यायालय में अपनी फजीहत भी करवा रही है। जयराम ठाकुर ने कहा कि पंचायती राज और स्थानीय निकाय चुनाव में ही सुक्खू सरकार ने कोर्ट से फजीहत में दहाई का आंकड़ा पार कर लिया है। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR Shimla News को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा है कि प्रदेश सरकार ने बीपीएल परिवारों के चयन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी व प्रभावी बनाने के लिए 8 चरणों में सर्वेक्षण करवाया है ताकि पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ मिल सके। चंबा जिला के चुवाड़ी में आज चयनित बीपीएल परिवारों से संवाद के दौरान उन्होंने ये बात कही। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सरकार का उद्देश्य ऐसे परिवारों तक सहायता पहुंचाना है जो आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण आवास, शिक्षा, उपचार, पेंशन व अन्य मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। पठानिया ने पात्र लाभार्थियों से सरकार द्वारा कार्यान्वित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं से जुड़कर उनका लाभ उठाने का आग्रह भी किया। इस बीच कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने ज्वाली विधानसभा क्षेत्र के कोटला में बीपीएल लाभार्थियों के साथ संवाद किया। उन्होंने कहा कि संवाद कार्यक्रमों का उद्देश्य बीपीएल परिवारों की वास्तविक समस्याओं व आवश्यकताओं को समझना और पात्र परिवारों को उनकी जरूरत के अनुसार विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाना है। प्रदेश के अन्य स्थानों पर भी बीपीएल संवाद कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में रुक रुक कर जारी वर्षा से कई स्थानों पर जनजीवन प्रभावित हुआ है। भारी वर्षा के कारण विभिन्न स्थानों पर हुए भूस्खलन के चलते राज्य में 2 राष्ट्रीय उच्च मार्ग और 204 अन्य सड़क मार्ग यातायात के लिए अवरुद्ध हैं। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के 5 जिलों में कहीं कहीं भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे विशेष संवाददाता।
3: हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही मानसून की वर्षा से विभिन्न स्थानों पर भूस्खलन की घटनाएं सामने आ रही हैं। शिमला धर्मशाला राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर आज भराड़ी घाट के समीप चलती कार पर चट्टान गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 2 अन्य घायल हुए हैं। वहीं कुल्लू जिला के आनी उपमंडल में बराड़ में भी पहाड़ी से एक वाहन पर पत्थर गिरने के कारण 2 व्यक्ति घायल हुए हैं जिन्हें उपचार के लिए आनी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भारी बारिश के चलते जिले में ब्यास नदी सहित अन्य नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में 2 राष्ट्रीय उच्च मार्ग और 204 अन्य सड़कें यातायात के लिए अवरुद्ध हैं। इसके अलावा 45 विद्युत ट्रांसफार्मर जबकि 82 पेयजल योजनाएं भी प्रभावित हैं। इस बीच मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान कांगड़ा, चंबा, सिरमौर, मंडी और शिमला जिले के कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से नदी नालों के समीप न जाने और अनावश्यक यात्रा टालने की अपील की है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: लोक निर्माण व शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज शहर में SJPNL की निरंतर व प्रेशर युक्त पेयजल वितरण परियोजना के तहत चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने शिमला की जलापूर्ति व्यवस्था को मजबूत और अधिक विश्वसनीय बनाने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों का जायजा लिया। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने नाहन दिल्ली के बीच चलने वाली राज्य पथ परिवहन निगम की बस सेवा को बंद किए जाने पर प्रदेश सरकार की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि नाहन की जनता को मिलने वाली महत्वपूर्ण परिवहन सुविधा को बंद करना दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे आम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। बिंदल ने कहा कि सुक्खू सरकार लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने के बजाय एक के बाद एक संस्थानों और सेवाओं को बंद कर रही है।
4: बंदी की प्रदेश की कांग्रेस की सरकार का एक और तोहफा नाहन को मिला है। नाहन से दिल्ली के लिए HRTC की एक बस चलती थी। अनेक अनेक लोग सुबह उस बस से जाकर दिल्ली से काम करके शाम को वापिस अपने घर लौटते थे। उस बस की भी तालाबंदी कर दी। लगातार एक के बाद एक दंड नाहन की जनता को, सिरमौर की जनता को कांग्रेस की वर्तमान सरकार दे रही है। इसका जवाब आने वाले चुनाव में जनता कांग्रेस को देने वाली।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, प्रदेश में जल्द होगा मंत्रिमंडल विस्तार। विधायक सुंदर सिंह ठाकुर को मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने के दिए संकेत। भारत तिब्बत सीमा पुलिस व किनफेड के बीच समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित। सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों की आजीविका को मिलेगा बल। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने शिमला जिला परिषद के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के चुनाव की तिथि जल्द स्पष्ट करने के प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश का किया स्वागत। प्रदेश के कई स्थानों पर बीपीएल संवाद कार्यक्रम हुए आयोजित। विधानसभा अध्यक्ष ने लोगों से सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने का किया आग्रह। और प्रदेश में मॉनसून की वर्षा से जनजीवन प्रभावित। 2 राष्ट्रीय उच्च मार्गों सहित 204 सड़क मार्ग अवरुद्ध। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
0: FM बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया हुआ है। श्रोताओं, और मैं आरजे सचिन कपूर हूँ। तो श्रोताओं, कार्यक्रम में अब इजाज़त दे दीजिए क्योंकि समय हो चुका है आप सभी से अलविदा लेने का। जाते जाते कहूँगा, प्रकृति की सेवा ज़रूर करें, माँ बाप की सेवा ज़रूर करें, और हो सके तो अच्छे कर्म जो है वो ज़रूर करें। श्रोताओं, इन्हीं शब्दों के साथ मैं सचिन कपूर लेता हूँ इजाज़त। नमस्ते धर्मशाला।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: कैसे?
4: कर्तव्य।
3: सड़क सुरक्षा का सबसे पहला और सबसे जरूरी पार्ट है कर्तव्य। ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने साथ साथ दूसरों के बारे में भी सोचें। अरे हाँ भाई साहब, अगर सड़क के बीचों बीच इस तरह से ट्रक छोड़ेंगे और चले जाएंगे तो पीछे से स्पीड में आ रही गाड़ी जो है ठोक देगी ना आपको। ये हमारा कर्तव्य है कि हम इस निर्धारित पार्किंग स्पॉट में ही गाड़ी को लगाएं। और अगर किसी कारण बीच सड़क में आपकी गाड़ी खराब हो जाती है तो हमेशा पार्किंग लाइट ऑन करें और वार्निंग ट्रायंगल गाड़ी से थोड़ी दूर जाकर के लग दे, ताकि आने वाला जो ट्रैफिक है उसे पता चले कि सामने गाड़ी रुकी हुई है।
5: समझ गए सर।
3: तो याद रखना, कैसे कर्तव्य निभाएंगे तभी तो दूसरों से अपेक्षा रख पाएंगे।

धरती हमें संकटों से लड़ना सिखाती है और हमारे वीर शहीदों का बलिदान हमें इस देश की मिट्टी से मोहब्बत करना सिखाता है। महादेव की जगहों से बहती गंगा से पवित्र है हमारी आजादी, जिसे बनाए रखना हम सब का संकल्प है। तो आइए सावन के इस पावन उमंग में महादेव को नमन करते हुए अपनी स्वतंत्रता का जश्न मनाएं। हाथों में थामे तिरंगा और गर्व से कहें, हम आजाद हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। आप सभी श्रोताओं को स्वतंत्रता दिवस और सावन के पावन मास की अनंत शुभकामनाएं। सुनते रहिए अपना पसंदीदा रेडियो स्टेशन रेडियो गुंजन धर्मशाला।

0: वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
2: किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि भीड़ में खोना जरूरी नहीं है और ना ही गुरूर में जीना जरूरी है। जरूरी है तो बस एक चीज, अपने विचारों के साथ सही रहना। हर किसी के साथ मेल बिठाना समझदारी नहीं है, कभी कभी दूर रहना भी मन को शांति देता है। हमारी जिंदगी और आसान तब लगने लगती है जब हम अपनी जिंदगी में सही लोगों को, अच्छे लोगों को पहचानना सीख जाते हैं, है ना?
3: कहाँ चले?
4: हमको मंडी जाना है।
3: ऐसे क्या देख रही है?
4: अरे दहेज में स्कूटर आया है,
3: ये बात पे इतराना जरूरी नहीं है, हमारा काम जरूरी है।
4: अरे चार क्लास का पढ़ लिए, भाव खा रही हो? अंदर जाओ।
5: भाव कहाँ खा रही? भाव तो दिए
4: है,
5: दहेज दिए है, मतलब भाव दिए, खरीद लिया है आपके बेटे को। इज्जत से पूछेगा तो मिलेगा यूज करने, स्कूटर भी और बेटा।
6: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क, अपने व्यापार को दे नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
7: बीबी एक बात बताओ, शादी से पहले जो मैं आपसे बातें किया करता था, अब उनमें से कौन सी बात आपको सच लगती है?
8: वही जो आप किया करते थे।
7: कौन सी?
8: कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुड़कुड़दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: कैसे?
4: कर्तव्य।
3: सड़क सुरक्षा का सबसे पहला और सबसे जरूरी पार्ट है कर्तव्य। ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने साथ साथ दूसरों के बारे में भी सोचें। अरे हाँ भाई साहब, अगर सड़क के बीचों बीच इस तरह से ट्रक छोड़ेंगे और चले जाएंगे तो पीछे से स्पीड में आ रही गाड़ी जो है ठोक देगी ना आपको। ये हमारा कर्तव्य है कि हम इस निर्धारित पार्किंग स्पॉट में ही गाड़ी को लगाएं। और अगर किसी कारण बीच सड़क में आपकी गाड़ी खराब हो जाती है तो हमेशा पार्किंग लाइट ऑन करें और वार्निंग ट्रायंगल गाड़ी से थोड़ी दूर जा करके लग दें, ताकि आने वाला जो ट्रैफिक है उसे पता चले कि सामने गाड़ी रुकी हुई है।
5: समझ गए सर।
3: तो याद रखना, कैसे कर्तव्य निभाएंगे तभी तो दूसरों से अपेक्षा रख पाएंगे।

भक्ति हमें संकटों से लड़ना सिखाती है और हमारे वीर शहीदों का बलिदान हमें इस देश की मिट्टी से मोहब्बत करना सिखाता है। महादेव की जटाओं से बहती गंगा से पवित्र है हमारी आजादी, जिसे बनाए रखना हम सब का संकल्प है। तो आइए सावन के इस पावन उमंग में महादेव को नमन करते हुए अपनी स्वतंत्रता का जश्न मनाएं। हाथों में थामे तिरंगा।

0: भी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
2: इतने बड़े कमाल की बात कही है कि भीड़ में खोना जरूरी नहीं है और ना ही गुरूर में जीना जरूरी है। जरूरी है तो बस एक चीज, अपने विचारों के साथ सही रहना। हर किसी के साथ मेल बिठाना समझदारी नहीं है, कभी कभी दूर रहना भी मन को शांति देता है। हमारी जिंदगी और आसान तब लगने लगती है जब हम अपनी जिंदगी में सही लोगों को, अच्छे लोगों को पहचानना सीख जाते हैं, है ना?
3: कहाँ चले?
4: हमको मंडी जाना है।
3: ऐसे क्या देख रही है?
4: अरे दहेज में स्कूटर आया है, ये बात पे इतराना जरूरी नहीं है, हमारा काम जरूरी है। अरे चार क्लास कहाँ पढ़ लिए, भाव खा रही हो? अंदर जाओ।
5: भाव कहाँ खा रहे, भाव तो दिए
4: हैं।
5: दहेज दिए हैं मतलब भाव दिए, खरीद लिया है आपके बेटे को। इज्जत से पूछिएगा तो मिलेगा यूज करने। स्कूटर भी बेटा।
6: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
7: बीबी एक बात बताओ। शादी से पहले जो मैं आपसे बातें किया करता था, अब उनमें से कौन सी बात आपको सच लगती है?
8: वही जो आप किया करते थे।
7: कौन सी?
8: कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। जी श्रोताओं, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

आप सभी का अपना सामुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

सभी का अपना सामुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

92.2 MHz पर ये है आप सभी का अपना पसंदीदा रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

92.2 मेगाहर्ट्ज पर ये है आप सभी का अपना पसंदीदा रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने,

92.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का अपना पसंदीदा रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओ, आप सभी इस समय कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने, अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुड़कुड़दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: कैसे?
4: कर्तव्य।
3: सड़क सुरक्षा का सबसे पहला और सबसे जरूरी पार्ट है कर्तव्य। ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने साथ साथ दूसरों के बारे में भी सोचें। अरे हाँ भाई साहब, अगर सड़क के बीचों बीच इस तरह से ट्रक छोड़ेंगे और चले जाएंगे तो पीछे से स्पीड में आ रही गाड़ी जो है ठोक देगी ना आपको। ये हमारा कर्तव्य है कि हम इस निर्धारित पार्किंग स्पॉट में ही गाड़ी को लगाएं। और अगर किसी कारण बीच सड़क में आपकी गाड़ी खराब हो जाती है तो हमेशा पार्किंग लाइट ऑन करें और वार्निंग ट्रायंगल गाड़ी से थोड़ी दूर जाकर के लग दें, ताकि आने वाला जो ट्रैफिक है उसे पता चले कि सामने गाड़ी रुकी हुई है।
5: समझ गए सर।
3: तो याद रखना, कैसे कर्तव्य निभाएंगे तभी तो दूसरों से अपेक्षा रख पाएंगे।

गुरु की भक्ति हमें संकटों से लड़ना सिखाती है और हमारे वीर शहीदों का बलिदान हमें इस देश की मिट्टी से मोहब्बत करना सिखाता है। महादेव की जटाओं से बहती गंगा से पवित्र है हमारी आजादी, जिसे बनाए रखना हम सब का संकल्प है। तो आइए सावन के इस पावन उमंग में महादेव को नमन करते हुए अपनी स्वतंत्रता का जश्न मनाएं। हाथों में थामे तिरंगा और गर्व से कहें, हम आजाद हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। आप सभी श्रोताओं को स्वतंत्रता दिवस और सावन के पावन मास की अनंत शुभकामनाएं। सुनते रहिए अपना पसंदीदा रेडियो स्टेशन रेडियो गुंजन।

0: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बनें। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: इतने बड़े कमाल की बात कही है कि भीड़ में खोना जरूरी नहीं है और ना ही गुरूर में जीना जरूरी है। जरूरी है तो बस एक चीज, अपने विचारों के साथ सही रहना। हर किसी के साथ मेल बिठाना समझदारी नहीं है, कभी कभी दूर रहना भी मन को शांति देता है। हमारी जिंदगी और आसान तब लगने लगती है जब हम अपनी जिंदगी में सही लोगों को, अच्छे लोगों को पहचानना सीख जाते हैं, है ना?
4: कहाँ चले?
5: हमको मंडी जाना है।
4: अच्छा, क्या देख रही है?
5: अरे दहेज में स्कूटर आया है, ये बात पे इतराना जरूरी नहीं है, हमारा काम जरूरी है। अरे चार क्लास का पढ़ लिए, भाव खा रही हो, अंदर जाओ।
6: भाव कहाँ खा रहे हैं? भाव तो दिए
5: है,
6: दहेज दिए है मतलब भाव दिए, खरीद लिया है आपके बेटे को। इज्जत से पूछिएगा तो मिलेगा यूज करना, स्कूटर भी पर बेटा।
7: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क, अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
8: बेबी एक बात बताओ, शादी से पहले जो मैं आपसे बातें किया करता था, अब उनमें से कौन सी बात आपको सच लगती है?
9: वही जो आप किया करते थे।
8: कौन सी?
9: कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ।

0: किसी के,
1: क्या करना है देखे?
0: अरे हो रहना किसी के,
1: हम रहे तो याद करोगे, समझे
0: समझे।

गुंजन रेडियो घर घर पहुंचाए आपकी आवाज, बने आपका अपना रेडियो। हम सबका यही है प्रयास, दुनिया के किसी भी कोने में रहें आप सुन सकते हैं गुंजन रेडियो की आवाज। सो स्टे ट्यून विद रेडियो गुंजन 91.2 FM।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त शशि और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर भक्ति संगीत आराधना। तो आइए श्रोताओं करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत इस प्यारे से भजन के साथ। आप सभी यूं ही बने रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो श्रोताओं, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर ये है आप सभी का मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना।